0: भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या का पुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे गाँठ 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाँठ 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज़ करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पालसिंग करना, जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केटिंग में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पालसिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका मिट्टी का कड़ तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पालसिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पालसिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह।

0: पर
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन माताओं की, जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज्यादा पानी हो या फिर 2 बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का, यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है, यानी कि एनेमिक है, उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी PPH होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें PPH का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं, ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमजोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को PPH हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। वहीं सबसे जरूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार

और बहुत ज्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है, इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है

सिकोड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या PPS से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर PPH की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और माता का विशेष ध्यान रखें, और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और आज उन्नत कृषि में एक खास विषय हम

0: लेकर आए हैं। अदरक की जब हम बात करते हैं तो इसके सुगंध से ही, जी हाँ, हमारा घर, हमारा माहौल काफ़ी खुशबूदार हो जाता है। और जब इसे सब्जियों में या फिर आप किसी भी पकवान में डालते हैं तो वो स्वादिष्ट तो बन ही जाता है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अदरक की खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अदरक का महत्व और इसकी खेती में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं।
1: मसाला फसलों में अदरक का महत्वपूर्ण स्थान है। अदरक को पौराणिक ग्रंथों में महौषधि के नाम से सुशोभित इसलिए किया गया है क्योंकि यह अनेक बीमारियों का अचूक दवा है, परंतु बवासीर के रोगियों के लिए जहर का काम करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी भूमिगत गांठों का उपयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इस मसाला के गांठों को परकंद कहते हैं। ताजे तथा कच्चे परकंदों को अदरक तथा सूखे परकंदों को सोंठ कहा जाता है। सोंठ मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के अनेक रोगों की अचूक दवा है। भारत में अदरक की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। अदरक की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अदरक की खेती से प्रति इकाई भूमि से अन्य फसलों की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक शुद्ध आय प्राप्त होती है, फिर भी इसकी खेती का विस्तार तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अदरक उत्पादन में बीज पर बहुत अधिक खर्च होता है। 1 हेक्टेयर अदरक बोने के लिए लगभग 18 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज का दाम हम 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर जोड़ें तो लगभग 3 लाख रुपया बीज पर ही खर्च होता है 1 हेक्टेयर में। इतनी बड़ी रकम सभी किसान नहीं खर्च कर सकते हैं तथा जो किसान इसकी खेती करते भी हैं वे बहुत छोटे पैमाने पर। दूसरी समस्या है कि यह 2 फसल अवधि में तैयार होती है, अर्थात इसको तैयार होने में लगभग 8 महीना लग जाता है। तीसरी समस्या है कि इसमें परकंद विकलन रोग का बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिसके चलते फसल 85 से 95% तक लगभग नष्ट हो जाती है।
0: इसकी खेती के लिए जलवायु, खेत का चुनाव एवं तैयारी तथा खाद एवं उर्वरकों के बारे में बताएं।
1: अदरक की सफल खेती के लिए गर्म तथा नम जलवायु उपयुक्त होती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से अंकुरण तक साधारण वर्षा, पौधों की शाकीय बढ़ाव के समय नियमित एवं अधिक वर्षा तथा फसल खुदाई से 1 माह पहले मौसम सूखा रहना चाहिए। भूमि वैसा होना चाहिए जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध हो और उसमें जीवांश युक्त पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हो तथा मिट्टी बलुई दोमट हो जिसमें कि अदरक की उपज अच्छी हो सके। भारी मिट्टी में परकंदों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। रबी की इसकी खेत की तैयारी के लिए जब रबी की फसल कट जाए उसके बाद अप्रैल माह में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर कल्टीवेटर से 3-4 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल बना लें। यह एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसको खाद एवं उर्वरक अधिक मात्रा में चाहिए। साधारणतः 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सरी खाद या कंपोस्ट के अलावा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा

0: खेत जुताई के समय तथा पोटाश की शेष आधी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 50 से 60 दिन बाद निकाई गुराई के समय दें। बुआई के 80 से 90 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौधों के पंक्तियों के दोनों तरफ डालकर मिट्टी चढ़ा दें। फसल अवधि के दौरान दो बार मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लोहा, बोरन इत्यादि प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। मिट्टी की जांच करा लें ताकि यह हम जान सकें कि इसमें कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी तो नहीं है।
1: बुआई का समय, बीज, प्रकंद का साइज और बुआई के विधि के बारे में बताएं।
0: अदरक की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सही समय पर बुआई करना अति आवश्यक है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां अदरक की बुआई 15 से 31 मई के बीच अवश्य कर दें, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां इसकी बुआई वर्षा प्रारंभ होते ही कर दें। अदरक पर हुए अनुसंधान परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि अदरक का बीज प्रकंद ऐसी फसल से लेना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष रोग नहीं लगा हो। अधिक पैदावार के लिए हमेशा स्वस्थ बीज प्रकंद जिसका वजन 18 से 20 ग्राम हो तथा जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हो का चुनाव करें। बीज प्रकंदों को 3 मिनट तक 0.5% एगालोल या 30 मिनट तक 0.1% सेरेसोन के घोल में डुबोकर उपचारित कर लें। उपचारित बीज प्रकंदों की बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें।
1: इसके बाद बारी आती है निकाई गुड़ाई, सिंचाई, खुदाई, तो इसके बारे में बताएं।
0: साधारणतः अदरक की फसल में खरपतवार की संख्या एवं बढ़ाव को देखते हुए 2 से 3 निकौनी की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम निकौनी बुआई के 45 दिनों बाद, दूसरी निकौनी 60 दिनों बाद तथा तीसरी निकौनी 100 से 120 दिनों बाद करें। सिंचाई की जहाँ तक सवाल है तो प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिन बाद ही कर देनी चाहिए। सामान्यतः अदरक के वानस्पतिक वृद्धि के लिए यदि वर्षा न हो तो 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि खेत में पर्याप्त नमी बना रहे। बरसात के बाद 2-3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। जब फसल तैयार हो जाए तो इसकी खुदाई करनी पड़ती है। अदरक की फसल साधारणतः 7 से 8 महीना में तैयार हो जाती है। अदरक के प्रकंदों से अर्क निकालने के लिए अगाध खुदाई कर सकते हैं। अदरक को बुआई के 5 से 6 माह बाद कच्चा अदरक उपयोग हेतु या बाजार भाव अधिक हो तो खोदा जा सकता है। कच्चे अदरक का भंडारण एवं सोठ बनाने के लिए सदैव फसल पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
1: और अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख प्रभेदों, रोगों एवं कीटों के बारे में जानकारी दें।
0: अदरक की बहुत सारी प्रमुख प्रभेदे हैं जिसमें कि एक नदिया प्रभेद है जो कि यह पश्चिम बंगाल की वैरायटी है। उसी प्रकार एक मरान है, रियो डी जिनेरो, यह बहुत ही मशहूर वैरायटी है। यह ब्राज़ील देश का वैरायटी है परंतु हमारे यहाँ यह बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। उसी प्रकार सुप्रभा है, सुरुचि है। अब अदरक में कुछ

0: रोग लगते हैं जो कि प्रमुख हैं मृदुल या प्रकंद विगलन रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकंद सड़ने लगता है, पत्ता झुलस जाता है। दूसरा है पर्ण धर धब्बा रोग, यह भी एक बहुत प्रमुख बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए डाइथेनियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं, और यह छिड़काव 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः उसे दोहराते हैं। अदरक में ऐसे कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन इसमें एक है तना छेदक। इसके रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक दवा जो है उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक होता है रीफ रोलर, इसके शिशु जिसे कैटरपिलर कहते हैं हरा रंग का होता है। अदरक की पत्तियों को मोड़कर शिशु उसी के भीतर रहता है और भीतरी पत्ती को खाता रहता है। इसका आक्रमण अगस्त से अक्टूबर तक पाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए अभी बताए गए कीटनाशी दवा इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अतः इस प्रकार से अदरक की खेती अगर किया जा सके तो हम भरपूर आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और आशा करते हैं आज की इस वार्ता से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और

0: इम्बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
1: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
0: जी।
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
1: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी।
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी।
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें। दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी।
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें।
1: जी।
0: दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दुखद है कि प्रकृति को हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता रहती है, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ci

0: cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पे पानी होगा।
4: चलते।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों, पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बड़ा ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं
7: नहीं। अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: हवा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में

0: गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो, चलते हैं।
0: चलो।
2: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
0: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
2: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
3: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
0: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
3: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
3: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
0: आइसक्रीम।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
3: लाओ अम्मा,
1: लो।
3: घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओ आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
8: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: जी हाँ,

0: हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
1: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
2: You just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुको रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारे घर

0: अच्छा मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
1: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
2: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
1: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
2: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
2: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
2: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
3: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
4: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
3: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
3: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी, यस सर।
3: ये मैं इसके चारों ओर।
4: जी सर। उधर से।
3: हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
4: जी सर।
3: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
4: जी सर।
3: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
4: जी सर।
3: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
4: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
3: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
3: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात

0: 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
1: जी सर।
0: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर।
0: कोई शक?
1: नो सर।
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे।
0: बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके

सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: خورشید. नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और उन्नत कृषि कार्यक्रम में। आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, नैनो फर्टिलाइज़र। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, और साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है, इसका उपयोग आपको किस तरह करना चाहिए और भी इससे जुड़ी बातें। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और नैनो फर्टिलाइज़र क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: तो नैनो फर्टिलाइज़र यह बहुत सूक्ष्म कण से बनता है,

और इसके इसको बनाने के लिए एक विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसकी जो है ना जो नैनो फर्टिलाइज़र या नैनो उर्वरक जो बनता है, बनाने के बाद हम उसका जो है ना सारा पैरामीटर का स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी सोलेबिलिटी क्या है, मतलब घुलनशीलता क्या है, उसका जो है ना धारण क्षमता क्या है,

0: यहाँ जो जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, किसान भाई जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जैसे नैनो यूरिया हुआ या अभी इफको के द्वारा जो बनाया गया है नैनो यूरिया, या और सब भी बनाया गया है, और जो हमको प्रापरंगत जो पहले से भी जो हमको जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोगों ने यूज किया या किसान भाई यूज करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ खामियां दिखाई पड़ रही है। जैसे कि हम एक छोटा उदाहरण लेंगे कि यूरिया जब की बात हम करते हैं, तो यूरिया जब हम खेत में यूज करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम जो मात्रा होती है वह पौधों के उपयोग में नहीं आ पाते। मतलब हम यहाँ यह बता सकते हैं कि जो यूरिया हम यूज करते हैं तो 40-60% तक यूरिया जो है ना बेकार चला जाता है खेत में। तो जिससे क्या होती है कि इससे बहुत हानि होती है कि उसमें जो है ना हमारे जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो धारण क्षमता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद यही अधिक मात्रा में जो यूरिया यूज करते हैं वह पूरा वाटर सिस्टम में चला जाता है, जिससे कि बहुत तरह के साइंटिफिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन होते हैं, जिसमें कि पाउंड वगैरह में बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन होने से अलगी सवाल वगैरह का जो बर्बाद है बढ़ जाते हैं, और जिससे कि जो मुख्य पौधे होते हैं तालाब में उसको जो है ना उर्वरक और लाइट जो है ऊपर से आते हैं वह भी नहीं मिल पाता, अंतोगत्व उसका जो है ना डेथ होने लगता है, उसका जो है ना क्षय होने लगता है। तो इस तरह को देखते हुए कि जो अभी के परिपेक्ष में जो नैनो उर्वरक आया है तो यह इसकी जो मात्रा है बहुत कम होती है इस कंपेयर टू जो हम जो यूरिया यूज करते हैं। जैसे कि हम एक छोटा उदाहरण देंगे जिससे कि समझने में बहुत आसान होगी। जैसे कि हम एकड़ वगैरह में 100 केजी जब हम यूरिया यूज करते हैं तो यहाँ एक आधा लीटर का जो नैनो यूरिया है वह पूरा उपयोग हो सकता है। तो मतलब 100 केजी यूरिया यहाँ आधा लीटर नैनो यूरिया के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इससे जो है ना किसान भाइयों को जो ले जाने का खर्च है वह भी कम हो जाता है। दूसरी बात है कि जब इसका देखेंगे कि इसका कॉस्ट या इसमें कितने खर्च होते हैं तो उसमें भी जो है ना अगर हम कंपेयर करेंगे यूरिया से तो इसमें जो है ना जो खाद की मात्रा है बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काम करता है। तो जिससे कि इससे मात्रा जो है ना कम हो जाती है और उसी प्रोपोर्शन में उसका जो है ना मूल्य भी कम हो जाते हैं।
1: ये कैसे बनते हैं इसके बारे में बताएं।
0: यह जो है इसको बनाने का बहुत तरह के तरीके होते हैं, जैसे कि हम इनके कैप्सुलेशन करते हैं, और या तो कभी कभी क्या करते हैं कि जब नैनो पार्टिकल या सूक्ष्म कण बनाते हैं तो वह डायरेक्ट हम जो है ना नैनो उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम नैनो जिंक बनाते हैं या नैनो कॉपर बनाते हैं या नैनो आयरन बनाते हैं तो यह इसको हम जो है ना डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर हमको ध्यान देना है कि जब हम बनाते हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि अपने पास कौन कौन जो है ना बनाने की मटेरियल उपलब्ध है, मतलब कि कॉस्ट हमको देखना है कि किस किस में कम से कम कॉस्ट में यह बन पाता है। और दूसरा है कि इसको बनाने का है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन भी करते हैं तो जैसे कि हम नॉर्मल फर्टिलाइज़र लेते हैं फिर उसमें जो है ना नैनो कण का जो है ना इनकैप्सुलेशन कर देते हैं उसके ऊपर से, तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे ऊपर से इनकैप्सुलेशन करते हैं तो उसका जो है ना धारण क्षमता बढ़ जाती है, और इसके साथ ही साथ जब वह खेतों में उपयोग किया जाता है तो बहुत धीरे धीरे पौधों को उपयोग रिलीज करता है, जिससे कि पौधा उपयुक्त समय में सही नैनो उर्वरक को उपयोग में ले पाते हैं, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नहीं तो अधिकतर जो यूज करते हैं हम फर्टिलाइज़र जो नॉर्मल जो नैनो यूरिया वगैरह यूज करते हैं उसका लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस केस में हम जो है ना इसको यूज बहुत कम करते हैं ताकि इसकी क्षमता

0: उसका जो है ना इतनी अधिक होती है कि इसकी सरफेस एरिया इतनी अधिक होती है कि बहुत कम मात्रा में बहुत अधिक उसका उपयोगिता हो जाता है। तो इसलिए इसका बनाने का जो है ना सरल तरीका यह होना चाहिए कि जो अपने पास मटेरियल है, जो अपने पास उपलब्ध है, उस तरीका को अपनाएं जिससे कि आउटपुट या कास्ट जो होगा वह कम से कम हो।
1: जी, इसका उपयोग किस तरह करेंगे इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, सबसे पहले है कि हम यह सलाह देंगे किसान भाइयों को यहाँ पे कि जैसे ही आप नैनो यूरिया की बात करते हैं या नैनो जिंक की बात करते हैं, नैनो कॉपर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को यह सलाह देंगे कि किसान भाई सबसे पहले जो है ना खेत में जो क्या न्यूट्रिएंट का स्टेटस है ज़रूर एक बार जांच कराएं। कि जैसे मान लीजिए कि हम छोटा उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसान भाई के खेत में पहले से ही बहुत मात्रा में जिंक है तो फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे नैनो जिंक का उपयोग करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला उसका तरीका यह है कि किसान भाई हर तरह से देख लें, खेत में टेस्ट करा के देख लें कि कौन कौन उर्वरक की मात्रा कम है, कौन कौन उर्वरक की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस जिस उर्वरक की मात्रा कम हो उसी का, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रेट है, फॉस्फेट है या जिंक है, इसकी मात्रा अगर कम है खेत में तो हमको उसी का जो है ना कम्बिनेशन में नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात है कि उपयोग यह पर भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का जो है ना किसान भाई क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ जो है क्रॉप होते हैं ना उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उर्वरकों की, किसी में कम होता है। तो यह भी ध्यान दे के कि खेत की स्थिति क्या है, जैसे जब हम नैनो उर्वरक का उपयोग करें तो उससे पहले यह देखें कि जो है ना मतलब इससे पहले हमने किस क्रॉप को ग्रो किया था, कोई दलहनी फसल लिए थे या कोई सीरियल क्रॉप का जैसे कि राइस है या मक्का है, किस तरह का जो है ना हमने क्रॉप उसमें उपयोग किया था। तो यह सब सारे चीज़ को देखते हुए ही किसान भाई जो ज़रूरत हो उतना ही नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है। अगर किसान भाई थोड़ा भी इसका लेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इसमें बुद्धिमता यह है कि सबसे पहले खेत की जांच जरूर करा लें, उसके बाद जब नैनो उर्वरक का उपयोग करें पूरी तरह से उसमें कन्फर्म हो जाएं, पूरी तरह से जांच कर लें और पूरी तरह से उसका उपयोग करने का तरीका जान लें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम किसान भाई को सलाह देंगे कि उपयोग करने से पहले ज़रूर उसकी पूर्ववत जानकारी प्राप्त कर लें।
1: जी, उपयोग करने से पहले तो आपने बता दिया है, और क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बात है?
0: ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जैसे कि जब हम नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहें तो समय भी देखें कि किस समय हम किसान भाई उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत छोटे मात्रा में भी लेने से इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो अगर जैसे कि जनरली सवेरे या शाम में जिस समय की जो है ना हवा वगैरह कम से कम हो, उस समय अगर इसका उपयोग किया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि छोटी मात्रा है, इतना कम मात्रा है कि कहीं अगर एक बूंद भी अगर नैनो उर्वरक खेत में जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम यूरिया यूज करते हैं। तो यह सब जितने भी परिस्थितियाँ हैं उसके बाद जरूर उसके लिए अच्छे नोजल जो उपयोग करते हैं, छिड़काव जो है ना उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छिड़काव हम करेंगे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में पानी लेके छिड़काव करें, ताकि उसका जो है ना कम अगर मात्रा लेंगे तो उसकी मात्रा एक जगह ज़्यादा हो जाएगी और उसका प्रभाव हो सकता है कि विपरीत भी हो। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में पानी उसके साथ लें और पानी को प्रॉपर मिक्स कराएं। ऐसा नहीं कि किसान भाई जल्दीबाजी में कर लेते हैं, तो छोटे अमाउंट से लें पानी, फिर उसको बड़े टैंक में पानी लेके उसका पूरा छिड़काव करें।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जाना किसान भाइयों नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में, कैसे उपयोग करें, क्या कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में।

0: में अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। फ्रीक्वेंसी यही 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
1: 1, 2, 3 बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था, वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था, और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन

में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और किसान भाइयों, अभी उर्वरक बहुत ही ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर जैव उर्वरक की बात करें तो ये बहुत ही फायदेमंद है फसलों के लिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी फसलों को उगाने में वो सार्थक हो सके। तो इसी विषय को लेकर, यानी कि उर्वरक के प्रयोग विधि को लेकर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं आज डॉक्टर AK झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों और श्रोताओं को आप ये बताएं कि उर्वरक क्या है, सही मायने में इसका मतलब क्या है?
3: उर्वरक वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ज्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ यूरिया। यूरिया क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। NH2CO NH2 हम लोग रासायनिक फॉर्मूला कहते हैं, यानी एक अमाइड वाला ये रसायन है। और इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में है, यानी 40% है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट भी एक केमिकल है, एक रसायन है। और इस रसायन में आपको 20% उसमें जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट ये एक रसायन है इस रसायन में, लेकिन मजे का जो है क्या कहते हैं आपको नाइट्रोजन फास्फोरस है। नाइट्रोजन भी देखते हैं तो इसमें फास्फोरस 46% है, नाइट्रोजन भी 18% के आसपास है। तो कहने का मतलब यह एक रासायनिक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कुछ खास तरह के, मतलब एक या कुछ खास पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वह एक रासायनिक उर्वरक होता है।
2: जी, अब ये उर्वरक की बात होगी, रासायनिक उर्वरक की बात होगी, लेकिन जो जैव उर्वरक हैं वो क्या होते हैं?
3: देखिए, जैसे नाम है वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे। अभी हमने बताया है आपको कि उर्वरक ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देता है।
2: जी,
3: इसी तरह से यदि कोई जीवित पदार्थ इस काम को कर सकता है तो वो जैव उर्वरक कराएगा। अब उतना तो नहीं कर सकता है जितना ये रासायनिक उर्वरक देता है, लेकिन इसमें भी मजे की मात्रा सप्लाई करने की क्षमता होता है। अब जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम कर सके, जैसे आप राइजोबियम का ही कल्चर डालते हैं, ये क्या करता है? राइजोबियम कल्चर जो आपको देखिए तो यह गांठ बनाएगा दलहनी फसल में, और दलहनी फसल में गांठ बना करके उसको नाइट्रोजन देने का काम करेगा। इसी तरह से मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, वहां पर भी

0: नाइट्रोजन देना है तो नाइट्रोजन देने के लिए कई दूसरे हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर है या जो स्पाइरलम है, तो ये एजोटोबैक्टर का भी वहां पर आप एक इनाकुलेशन करते हैं, जो सीड है उस सीड के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, तो या आप उसको उपचार करते हैं, तो यह उपचार करने से यह क्या होगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। इसी तरह से जैसे फास्फोरस घुलनकर है, फास्फोरस आपके मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो फास्फोरस पौधे को नहीं मिल पा रहा है। जैसे नाइट्रोजन में हमने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन ये पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमको ऐसे रूप में परिवर्तित करना है कि पौधे को मिल जाए। वही ये काम करता है। यही काम आप देखते हैं कि यूरिया की फैक्ट्री है, यूरिया की फैक्ट्री में नेफ्था नाम के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नेचुरल गैस को यूज करते हैं, और वहां पर 300-400 डिग्री टेम्परेचर यदि आप लगाते हैं तब जा करके वहां पर वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि पौधा उसको ले सके। लेकिन यही काम यदि जैव उर्वरक में देखें तो जैव उर्वरक में यह काम जो आपका मुश्किल से कितना खेत का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री यही होगा, और उसी पर वो काम करने लगता है। क्यों करने लगता है और कैसे करने लगता है? क्योंकि इस दलहनी फसल में या दूसरे फसल में आपको जो उस सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर में खास तरह के एंजाइम है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के चलते यह कम तापक्रम में ही यह प्रक्रिया करने लगती है और यह आपको नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है। यही हम फास्फोरस घुलनकर की बात कर रहे हैं कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में बहुत है लेकिन वो फास्फोरस पौधा को नहीं मिल पा रहा है, फिक्स हो गया हुआ है, स्थिरीकृत हो गया हुआ है, तो उस फास्फोरस को यह पुनः जो है क्या कहते हैं ऐसे रूप में कर दिया, यानी उसको घुला दिया, नाम है फास्फोरस घुलनकर, यानी उसको घुला दिया, तो ऐसे इस रूप में कर दिया कि उस फास्फोरस को पौधा ले सकता है। तो जैव उर्वरक में और उर्वरक में यही चीज मतलब अंतर है कि जो आपका रासायनिक पदार्थ है जो उर्वरक का काम करे यानी कुछ पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे, जैसे हमने बताया जैसे आपको यूरिया है एक ही तत्व दिया, लेकिन डीएपी में देखिए दो तत्व मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस दो मिल रहा है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहा है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों मिल रहा है, कहने का मतलब कि कुछ ही तत्व दे सकता है, एक दो तीन या कुछ गिने चुने ऐसे तत्व जो है वह आपूर्ति करता है रासायनिक उर्वरक, लेकिन है यह रसायन। लेकिन जैविक उर्वरक एक जैविक पदार्थ है जो कि इस सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करते हैं।
1: अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा, जैसे नाइट्रोजन देने वाले खाद हैं जिसको नाइट्रोजनी खाद कहते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोजन देने वाले कुछ खाद हैं तो वह जो है क्या कहते हैं उसका यूज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, तो उसको देने का अलग तरीका है। जो फॉस्फोरस वाले हैं या पोटास वाले खाद हैं उसको डालने का अलग तरीका है। वास्तव में देखिए एक सिद्धांत यहां पर है, जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व मिट्टी में, आपको इसको दो शब्द जानना पड़ेगा किसान भाइयों को, एक कहते हैं मोबाइल एक कहते हैं इमोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब जो आसानी से मिट्टी में इधर से उधर चला जाता है वो मोबाइल हुआ, जैसे नाइट्रोजन मोबाइल है, लेकिन फास्फोरस और पोटास मोबाइल नहीं है, इमोबाइल लेस मोबाइल है। तो जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी जो मोबाइल है उसको कई बार में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक ही बार में प्रयोग कर दीजिएगा तो जो पौधा अभी लिया और नहीं तो वो वहां से लॉस कर जाएगा, लीच कर जाएगा, दूसरे जगह चला गया तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन वाले खाद को आप देखते हैं कि कई बार में प्रयोग करते हैं उसको। जनरली आप देखिए धान में गेहूं में इस समय क्या अनुशंसा किया जाता है, या मक्का में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं आधी मात्रा आप डाल देते हैं, कब, जब खेत का बुआई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं। गेहूं यदि धान है तो रुपाई करते हैं, तो गेहूं है तो आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आधी मात्रा को डालना चाहिए। एक महीने के बाद गेहूं की बात यदि हम करें तो फिर एक महीने के बाद आप जो है क्या कहते हैं उसकी एक चौथाई मात्रा को डालते हैं, फिर दूसरे महीने के बाद आप एक चौथाई मात्रा को यूज करते हैं। यहां पर भी यदि आप मक्का में भी देखिए तो मक्का में भी आप आधी मात्रा उसी समय शुरू में ही प्रयोग कर देते हैं, और जब घुटने पर का हुआ उस समय जो है क्या करते हैं आप फिर 25% मात्रा प्रयोग कर देते हैं, और जब टेस्टिंग का समय आता है उसके पहले आप देखते हैं कि ये आप दूसरी मात्रा मतलब जो 25% बचा हुआ है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फास्फोरस और पोटास है यह मिट्टी में ज्यादा मोबाइल नहीं है, इसीलिए आप देखते हुएगा कि फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा है कि यह खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही डाल दीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मुश्किल से, भाई एक सीजन में कितना टाइम होगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना

0: ऑफ होगा तो वह थोड़ा सा मोबाइल होगा, तो कुल मिलाकर के जड़ के पास जैसे आसानी से पहुंच सके, और जड़ के पास यदि पहुंच गया तब जाकर के पौधा इसे ले पाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपको बुआई के समय या रोपाई के समय ही करनी चाहिए।
1: जी, अब बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसकी प्रयोग विधि क्या, इसे कैसे प्रयोग करेंगे?
0: देखिए, ऐसा है कि इसका प्रयोग का कई तरीका है। तो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में आप प्रयोग करने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप जो बीज है बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 10 किलो बीज है, उस पर आप आधा लीटर 50 ग्राम उसमें गुड़ या चीनी डाल दीजिए और उसको पानी को घोल गर्म कर दीजिए तो घुल जाएगा, जो चीनी है या गुड़ है वो घुल जाएगा। वो 10 केजी बीज पर आपने डाल दिया, अब ये चिपचिपा बन गया, आप इसके ऊपर आपने डाल दिया, उसमें 200 ग्राम का कल्चर का पैकेट है, अब तो लिक्विड कल्चर भी आने लगा है, तो सॉलिड बेस्ड कल्चर है, वो आपने डाल दिया और इसको हल्के हाथ आपने इसको मिला दिया, हल्के हाथ मिला करके जिससे उसके ऊपर एक परत बन गई, तो आप परत बन गया, इसको आपने छाया में सुखा लिया, सुखा करके डाल दिया। लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो मान लीजिए बीज उपचार करना चाहते हैं उसके लिए भी, कीड़े के लिए या फफूंद के लिए, जैसे मान लीजिए ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो राइजोबियम से भी करना चाहते हैं, पीएसबी से भी करना चाहते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड से भी करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड से भी करना चाहते हैं
1: जी,
0: तो अब वो कैसे करें, तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से यानी फफूंदनाशी यदि कोई है तो फफूंदनाशी से उपचारित कीजिए, उसके एक दो घंटे के बाद तब इंसेक्टिसाइड से आप उपचारित कीजिए, उसके बाद जो पीएसबी है फॉस्फोरस घुलनकर बीजाणु उसके कल्चर से उपचारित कीजिए, अंत में जो नाइट्रोजन वाला है नाइट्रोजन वाला से उपचारित कीजिए। तो यह FIR के सिद्धांत पर उसको उपचारित कीजिए। बहुत लोग उसमें नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, तो बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं, अब वो जो है मिट्टी में डालना चाहते हैं, तो मिट्टी में डालने के लिए उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 200 ग्राम से आपको पूरा देख रहे हैं कि 10 केजी बीज उपचारित हो जा रहा है, लेकिन वहां पर आपको प्रति एकड़ 3-3.5 केजी के आसपास आपको कल्चर डालना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और या बालू ले लीजिए, क्योंकि उतने से तो आप पूरे खेत में छिड़क नहीं पाएंगे, उसमें मिला करके उसे छिड़क दीजिए। लेकिन अब जैसे कंद वाली फसल है उसमें आप करना चाहते हैं, उसको उपचार करना चाहते हैं, तो कंद वाली उसमें एक किलोग्राम कल्चर लिए, उसको 15 लीटर पानी में जो है क्या कहते हैं 4 लीटर पानी में आपने घोल दिया, और घोल करके उसमें डुबा करके छोड़ दीजिए 15 मिनट, उसके बाद निकाल करके उसको उपचारित कर लीजिए। बहुत आदमी सीडलिंग का उपचार करते हैं, यानी जो आपका बिचड़ा है बिचड़ा का उपचार करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आप एक किलोग्राम कल्चर लीजिए 15 लीटर पानी में लेकर के घोल करके आप उसके जड़ को उसमें डुबा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अब उसके बाद उसमें से निकाल करके तब आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने बीज में बायो फर्टिलाइजर का, अपने खेत में खेती में आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, नाइट्रोजन वाली उर्वरक की बात कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो इसके यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए?
0: देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया है कि जो आपकी नाइट्रोजन वाला खाद है इसका यूज एफिशिएंसी काफी कम होता है। अभी हमने बताया भी है कि इसमें जो है जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं नाइट्रोजन वहां से बह करके निकल जा रहा है, तो अब नाइट्रोजन यदि यहां से बह करके निकल जा रहा है तो इसके लिए तो एक तो पहली बात, पहले प्रिल यूरिया चलता था, प्रिल यूरिया यानी सीधे एक सामान्य जो यूरिया था वो, अब आजकल बाजार में तो प्रिल यूरिया वाला ज्यादा चक्कर है नहीं, सरकार ने कुछ किया है कि अब नीम कोटेड यूरिया आ रहा है या सल्फर कोटेड या लेक कोटेड यूरिया आ रहा है, तो इससे क्या होता है इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है
1: जी।
0: तो उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी कि धीरे धीरे इसके नाइट्रोजन बह करके निकलेंगे, तो फसल को तो पूरे समय में जरूरत है, तो वो धीरे धीरे निकल करके आएगा तो उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो काम ये आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे धान वान की फसल में मान लीजिए आपके पास ये सब नहीं है, तो वहां मड बॉल बना करके, यानी कि आप तालाब की मिट्टी लिए और उसके बीच में यूरिया डाल करके गोला बना करके कई जगहों पर आपने छिड़क दिया, उससे भी आपका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब एक चीज आ गया हुआ है आजकल, उसको कहते हैं लीफ कलर चार्ट, तो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं वो, जैसे धान की फसल में यदि हम प्रयोग करते हैं तो 14 दिन पर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो 14 दिन के बाद से आप जब तक आप दाना नहीं भर रहा है तब तक आप उसका प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम खेत में जाके खड़ा हो जाते हैं,
1: अच्छा।
0: अब खेत में जाके खड़ा हो गया और इस ढंग से खड़ा होते हैं कि वहां पर हमारे शरीर की छाया उस पेड़ पर पड़ती रहे। वो जो लीफ कलर चार्ट है उसमें 6 छोटी छोटी पट्टी बनी हुई है, खूब गहरे हरे रंग से लेकर के हल्का पीला हरा रंग तक।

0: उससे जिससे कलर मैच हमारा पत्ती का कर रहा है, 10 पौधा हमने लिया, 10 पौधा में कोई लकड़ी गाड़ दीजिए जिसे पहचान में आ जाए कि हाँ भाई यही पौधा हमने लिया था। अब वहां पर कलर को आपने मिलान कर लिया, अब उसमें जो 4 नंबर है वो क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। यदि आपको 50% या उससे ज्यादा पौधे 4 के नीचे है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मिल रहा है, तो वहां पर आपको एक कट्टा यानी 50 kg आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर डालना है। तो उसमें होता क्या है कि जब जब उसे भूख लगी है तभी तभी आप नाइट्रोजन डालते हैं, गेहूं के लिए भी आ गया लीफ कलर चार्ट, तो अब जो है क्या कहते हैं आपको कम उसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, यूज एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। तो ये सब उसके बाद जो धान की फसल में करते हैं वहां पर हम चाहते हैं अमोनियम फॉर्म में ही हो, तो अमोनियम फॉर्म में रोकने के लिए आप उसमें एनसर्ब नाम का नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर आता है उसका प्रयोग करेंगे तो यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, धान की फसल में भी दूसरी फसल में भी आप बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं हमारे किसान भाई अब आगे से अगर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, जो निर्देश आपको दिए हैं, दिशा निर्देश दिखाए हैं, तो आशा करते हैं कि आप उस प्रकार चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से उर्वरक का प्रयोग करेंगे और आपकी फसल अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करेगी। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें।

भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत

तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बना कर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बना कर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए

एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफ़ी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज़ अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज़ का ख़तरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर, स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके
साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की। हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारी हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचे खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास

और से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए, और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है, और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब है और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे, और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम विषय लेकर आए हैं चारा फसलों की निकाई गुड़ाई एवं नाइट्रोजन का उपरिवेशन। और किसान भाई और हमारे पशुपालक भाई, हम जानते हैं कि अपने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चारा प्रबंधन की बात हमेशा सोचते हैं कि अच्छे अगर चारे मिलेंगे तो हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस के गुप्ता। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं,

0: एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, और आज बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। सर, सबसे पहले तो अभी की बात करें, हम वर्तमान की बात करें, तो किसानों के पास अभी कौन कौन सी चारा फसल उपलब्ध है?
1: थैंक यू। देखिए, पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन में हरे चारे की उपलब्धता एक आवश्यक अवयव होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पशुओं के रखरखाव एवं प्रबंधन पे लगभग 60% जो लागत है अकेले चारा और दाना में आती है। चारा आधारित पशु प्रबंधन से पशु पुष्ट रहते हैं, साथ ही अधिक उत्पादन के साथ साथ लाभ भी अधिक मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पशुओं की देखभाल, उसकी स्वस्थ रखने के लिए उसको समुचित चारे की व्यवस्था कहाँ से और कैसे करें। प्राय पशुपालक अपने जानवरों को देखते हैं हम कि भूसा, पुआल, कड़वी या जो सूखे पौधे होते हैं, चाहे धान का पुआल है, गेहूँ का भूसा है, तो इत्यादि देते हैं, तो उनको हम उचित संतुलित आहार नहीं कह सकते। पशु पोषण के लिए ये उपयुक्त है कि संतुलित आहार कैसा हो उसको एक समझने की आवश्यकता है। तो अतः पशुपालकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास उपलब्ध जो सिंचित अथवा असिंचित क्षेत्र हैं या अपने आवश्यकता अनुसार हरे चारे की आपूर्ति किस प्रकार करें। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य में अधिकांश किसान जो ऐसे किसान हैं कि जिनके पास अपनी जोत के आकार बहुत कम हैं, जिनको हम लघु और सीमांत किसान कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने भरपेट भोजन के लिए अनाज की फसलें, धान्य फसलें या और वैसी कैश क्रॉप ही ज़्यादा लेना चाहते हैं। और सामान्यतः जो किसान भाई होते हैं वो पशु तो पालते हैं लेकिन चारे की फसलों को उगाने पे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास अच्छा हरा चारा उपलब्ध भी नहीं हो पाता और ना ही उनको तकनीकी जानकारी की उपलब्धता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे किसान भाई जिनके पास अपने भूमि की संसाधन बहुत कम हैं या नहीं हैं, जो दूसरों की जमीन लीज पर लेकर के वहाँ खेती करते हैं, तो वो पशुपालक सामान्यतः अपने चारे का प्रबंधन अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो पशुपाल को ये जो हरा चारा है मुख्य रूप से ये मौसम पर आधारित चारा जनरली उगाया जाता है। जैसे खरीफ ऋतु के चारे हैं, खरीफ मौसम प्राय ये हम भी जानते हैं कि जुलाई महीने से शुरू होता है। जुलाई महीना, अब तो अगस्त का महीना चल रहा है, जो चारे की फसलें उगाते हैं उन्होंने अपने चारे का कोई भी जो उनको अपने स्थान पर जो भी चारे का बीज मिलता होगा वो उन्होंने लगा दिया होगा। वैसे मुख्य रूप से जो खरीफ मौसम में चारे की फसलें हैं उनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मकचरी, लोबिया तथा ग्वार इत्यादि ऐसी फसलें हैं जिनका चयन करके खरीफ सीजन में उनका चयन करके जो उपयुक्त प्रभेद का चयन करके अपने जो मध्यम जमीनें हैं या उच्च जमीनें हैं जिनके पास पटवन के साधन हैं तो वहाँ वो इस प्रकार की जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन प्रभेदों का चयन करके बुवाई कर सकते हैं। हालांकि एक महीना पूर्व इसका बुवाई का उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन ऐसे किसान जो देरी से बुवाई, उनको बीज का ना मिलना या और किसी ऐसी विषम परिस्थिति के चलते चारा नहीं उगा सकते हैं, तो वो अगस्त के अभी महीने में भी कुछ फसलें अगर खेत खाली है और खेत में जल जमाव नहीं है और सूखा है, तो उस परिस्थिति में भी आप जैसे बाजरा है या मक्का है या ग्वार है, इन फसलों का चयन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दूसरा मौसम आता है रबी चारा फसलें। रबी की जो बुवाई है मुख्य रूप से 15 नवंबर के बाद पूरा नवंबर भर अथवा दिसंबर माह तक भी हम कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जैसे बरसिम है, जई है, रिजका है, तो इन फसलों का चयन हम कर सकते हैं। और जो जायद की फसलें हैं जो मुख्य रूप से मार्च महीने के बाद मई और जून के महीनों में इन फसलों को हम आसानी से लगा लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फिर जैसे ज्वार है, लोबिया है, तो उनका जायद सीजन जो कि बसंत शुरू होने के बाद में हम उनका मार्च और अप्रैल के महीने में उनकी बुवाई करके चयन करके और हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पशुपालकों के लिए पशु जो मौसमी चारा

फसलें हैं उन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मौसमी चारा होते हैं, जो मौसम के बदलते परिवेश में, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वर्षा जिस महीने में होना चाहिए था वो नहीं होता है, और मानसून का आगामी समय में शिफ्ट होकर के बारिश जो है वो भी लेट हो जाती है, तो उसके चलते मौसमी जितनी भी चारा फसलें हैं या अन्य धान्य फसलें हैं वो

उनको अनेक वर्षों तक उगा करके उन चारा फसलों से हम हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको हम मुख्य रूप से बहुवर्षीय चारा फसलें कहते हैं। इन बहुवर्षीय चारा फसलों में मुख्य रूप से जैसे नेपियर घास, गिनी ग्रास और त्रिशंकर घास जिसको हम ट्राई स्पेसिफिक हाइब्रिड कहते हैं, पारा ग्रास, स्टाइलो ग्रास, नंदी ग्रास, इस तरह की कुछ ऐसी ग्रासिज होती हैं जिनका बीज ना लगा करके बरसात शुरू होने पर हम उनकी जो जड़ कतरन होती है जिसको हम रूट स्टॉक या रूटेड स्लिप के नाम से जानते हैं, तो बरसात के सीजन में जो हमारी मध्यम आकार के खेत होते हैं या उच्च स्थान पर कहीं भी और पटवन का साधन होता है तो उनको या तो हम प्लेन समतल खेत में अथवा पट्टी में जो उसका अड्डा या मैंड बना करके और उस पर करीब 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रूट स्टॉक को जिसको जड़ कतरन कहते हैं और खुरपी से गड्ढा बना करके और गांठ युक्त, कम से कम ये ध्यान रहे कि उसके एक गांठ वाले भाग को और जमीन में दबा के और अच्छी तरह उसको दबा दिया जाता है। और इसी की जो पंक्ति की बात करते हैं तो उसको 80 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में हम एक अड्डे पर, अर्थात कह सकते हैं कि दो पंक्तियों में एक अड्डे पर जो बड़ा मैंड होता है उस पे हम बहुवर्षीय घासों का चयन करके और हम रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरह रोपाई करने से, वैसे तो इसका सीजन अभी एक महीना हम लेट हो चुके हैं, लेकिन ऐसे किसान भाई जिनके खेत में अभी पर्याप्त नमी है और चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो किसान भाई अपने खेत में अड्डे बनाकर और अड्डे, एक अड्डे से दूसरा अड्डा है उसकी दूरी कम से कम 4 मीटर होना अति आवश्यक होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है कि उसमें अगर बीच में ट्रैक्टर अगर चल जाता है तो वो ट्रैक्टर चलने से उसकी जुताई, बुवाई या और भी निराई गुड़ाई, वो ट्रैक्टर कल्टीवेटर या तवेदार हैरो या डिस्क, किसी भी पावर जो इम्प्लीमेंट है उसकी सहायता से उसकी कराई जा सकती है। तो बेड पे हम बहुवर्षीय घासों का चयन कर सकते हैं और जो एक बेड से दूसरे बेड के बीच में जो हमारा खेत है उसकी निराई गुड़ाई करके हम जितने भी हमारी मौसमी चारा फसलें हैं, जैसे खरीफ सीजन में अभी हमने आपको बताया जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, ग्वार है, इत्यादि फसलों को अनुसूचित मात्रा में, और अगर हम लाइन में सीड ड्रिल के माध्यम से बुवाई कर रहे हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति से पंक्ति में हम बुवाई कर सकते हैं अथवा छिटकवा विधि से बुवाई करके, और इस विधि से लगा करके हम मौसमी चारा फसलों के साथ साथ बहुवर्षीय चारा फसलें का भी हम रोपाई करके और पूरे साल आसानी से हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक इसके नाइट्रोजन उपरिवेशन की बात है, इसमें हमको ये देखना होता है कि जो जिन ऐसे किसान भाई जिनका पूर्व में अर्थात पिछले महीने चारा की फसलें लगी हुई हैं तो वो निश्चित रूप से अब लगभग एक माह की हो गई हैं, तो ये अब उनका हम ध्यान रखें कि अगर उसमें खरपतवार ज़्यादा हैं तो उनका होइंग या कुदाली की सहायता से उन खरपतवारों को अलग कर दें, क्योंकि जनरली जो चारा फसलें हैं उनमें किसी भी शाकनाशी दवाई का इस्तेमाल करने की अनुशंसा नहीं की जाती, क्योंकि उनका जो प्रभाव है उसका वो उसका अवशेष जो वो फूड चैन से दूध में आकर के वो पशु पर उसकी दुग्ध उत्पादन पर भी वो उसकी क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है, तो इसलिए हमको अत्यधिक मात्रा में किसी भी रसायन या अन्य किसी शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस ये है कि उसको हम कुदाली या खुरपी की सहायता से निकोनी या निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को अलग कर देते हैं। साथ ही जैसे ही उसका हो जाता है, अगर पर्याप्त नमी नहीं होती है तो हम उसमें हल्का पटवन करके और 25 से 30 दिन के अंतराल पर नाइट्रोजन का 3 भाग का 1 भाग, अर्थात अगर हम किसी फसल को जैसे सामान्य तौर पर लगभग जो 1 काट वाली, चाहे वो मक्का है या मक्का के साथ साथ ज्वार है।

0: बाजरा है उसमें 80 से 100 किलोग्राम कुल नाइट्रोजन की अनुशंसा की जाती है। 100 किलोग्राम का एक तिहाई भाग अर्थात 30 किलोग्राम उसका हम बुवाई के समय और जो बाकी दो भाग बचते हैं उसका लगभग 25 से 30 दिन बुवाई के पश्चात उसका यूरिया का उपरिवेशन उसमें कर देते हैं। ध्यान रहे भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी का आवश्यक होना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कुछ ऐसी फसल हैं जिनमें जैसे ज्वार है उसमें कल्ले भी फूटते हैं तो उससे कल्ले उसमें निकल सकते हैं। साथ ही अगर रबी सीजन में हम बुवाई कर रहे हैं तो जैसे बरसीम है जई है तो उनकी टिलरिंग जो कल्ले फूटने की जो दर है वो उनमें वृद्धि होती है। साथ ही बहुवर्षीय चारा फसलें जो हैं उसमें भी हम लगभग 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपरिवेशन करते हैं। उसी का भी तीन भागों में बांट करके पहला भाग उसमें फास्फोरस जो 50 से 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट अथवा DAP के साथ मिला करके उसका रोपाई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देते हैं अथवा उसकी प्रथम कटाई जो बहुवर्षीय जितनी भी घासें हैं उनकी प्रथम रोपाई के बाद जो कटाई है वो लगभग हमारी 70 से 75 दिन बाद हम करते हैं और तत्पश्चात हम एक माह के अंतराल पर उसकी कटाई करते हैं। यह आवश्यक होता है कि बहुवर्षीय चारा घासें जो होती हैं उसकी हम कटाई के तुरंत पश्चात हम यूरिया का उपरिवेशन करें साथ ही हल्की मात्रा में सिंचाई करें जिससे कि पौधे की वृद्धि शीघ्रता से हो और हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक हरा चारा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो इसी तरह किसान भाइयों हम बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके हम मुख्य रूप से अगर हम खरीफ सीजन की जो फसलें हैं सामान्य तौर पर जुलाई महीने में बुवाई की जाती है लेकिन ऐसे किसान भाई जो अभी भी वंचित रह गए हैं और खेत आपका साधन है और नमी पर्याप्त मात्रा में है अधिक जल जमाव नहीं है तो वो भी खरीफ सीजन की फसलों का चयन करके बुवाई कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं हमारे किसान भाइयों आज आपने जाना चारा फसलों के बारे में और इसमें निकाई गुड़ाई आप कैसे करें इसके बारे में आपने जाना। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। फ्रीक्वेंसी ज़रूर याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया।

लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं, उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं, तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदले। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहाँ रहते थे, उनका एक्सेस वहाँ खत्म हो जाता है, और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो, या फिर उसके एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं, उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है, तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा, आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है, तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है। इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है, और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं, ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है, और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दें और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दें कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।
आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात

कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुँचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही, आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz यानी आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु। और उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जी हां, हम बहुत सारी बातें करते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आज ये फलों की बात करेंगे हम, और फलों में अमरूद की बात करेंगे। अमरूद हर वर्ग के लोग इसे खरीद सकते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अमरूद की सघन बागवानी और साथ ही इसके छत्रक प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। और मैं आप सभी को बता दूं, ये है कनीय वैज्ञानिक उद्यान विभाग, साथ ही मैं आपको बता दूं ये सहायक प्राध्यापक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इस डिपार्टमेंट में उद्यान विभाग में कार्यरत है। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: मैम। सबसे पहले हम हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सघन बागवानी क्या होती है और इसका महत्व कितना है, होता है।
3: देखिए, सघन बागवानी उस बागवानी को कहते हैं जो कि परंपरागत बागवानी जैसे पहले होता था, अधिक डिस्टेंस पर पौधा लगाया जाता था, 8-9 सेंटीमीटर पे अमरूद को लगाया जाता था, लेकिन उससे जैसे हम डिस्टेंस कम करते हैं, यानी कि प्रति हेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो हम लगाते हैं, मैक्सिमम पौधा को लगाने की विधि को ही हम सघन बागवानी कहते हैं। और उसका उपयोगिता है कि अगर अधिक से अधिक पौधा होगा तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक आमदनी किसान भाइयों को होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि शुरू के समय से ही लैंड का सही से यूटिलाइजेशन होने लगता है, जितना मेरा ज़मीन है सभी में अच्छी तरह से हम लोग पौधा को लगाते हैं, ज़मीन अधिक दिन तक खाली नहीं रहता है।
2: तो ये बातें हो गई है सघन बागवानी की। इसके साथ ही अगर सघन बागवानी करना हो अमरूद की, तो उसके लिए भूमि की तैयारी, साथ ही रेखांकन और पौधरोपण कब करना चाहिए?
3: देखिए, सघन बागवानी की रोपाई में भी उसी तरह से हम भूमि को तैयार करते हैं।

0: जैसे कि परंपरागत विधि से जब हम पौधा को लगाते हैं और उसके लिए जो भूमि हम तैयार करते हैं, उसी तरह से इसका भी भूमि तैयार करते हैं। जैसे कि मई अप्रैल मई में हम खेत को की जुताई करते हैं, फिर 10-15 दिन के लिए छोड़ते हैं जिससे कि उसका कीड़ा वगैरह सब मर जाए, और फिर उसमें पाटा चलाकर रेखांकन करते हैं। अब रेखांकन चूँकि ये सघन बागवानी है, तो सघन बागवानी के अनुसार से हम रेखांकन करेंगे। इसमें हम 2x3 पे कर सकते हैं, 3x3 पे कर सकते हैं, 4x2 पे कर सकते हैं। जैसे हम पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी को कम करते हैं, तो उसी को सघन बागवानी कहते हैं। तो हम कहेंगे किसान भाई को कि 4x3 में 2 में आप पौधा लगाएं अमरूद की, वो सबसे अच्छा होगा। 4 हो गया कतार से कतार की दूरी और 2 मीटर हो गया पौधा से पौधा की दूरी। अब ये हुई रेखांकन की बात। अब है पौधारोपण कैसे करें। तो पौधारोपण के लिए सबसे पहले गड्ढा बनाते हैं, लेआउट करके फिर गड्ढा बनाना है। गड्ढे में कुछ इंसेक्टिसाइड कंपोस्ट डालकर मानसून से पहले यानी जून से पहले भर देना है। अब भरने के बाद गड्ढा में कम से कम 2 सिंचाई होने के बाद ही पौधे को लगाना चाहिए। 2 सिंचाई जब हो जाता है तो जो मिट्टी है, जो कंपोस्ट डाले हैं, मिट्टी से भरे हैं, वो अच्छी तरह बैठ जाता है, तभी पौधा को लगाना चाहिए। पौधा है कि मतलब जब मानसून शुरू हो जाए जुलाई में, जून जुलाई में पौधा को लगाना चाहिए।
1: तो ये कुछ बातें हो गई हैं भूमि की तैयारी, साथ ही पौधा का रोपण आपको कब करना चाहिए, ये सारी बातें आपने जानी। और अगर अगले सवाल की ओर बढ़ें तो हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि सघन बागवानी में पौधा का जो कैनोपी होता है उसका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें मैम।
0: ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बागवानी जो कर रहे हैं सघन में कर रहे हैं। सघन की बागवानी जैसे ही हम करते हैं तो उसका कैनोपी जो है बहुत नज़दीक होता है और जल्दी सटने लगता है, एक दूसरे से सटने लगता है। तो इसका प्रबंधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सघन बागवानी में। इसके लिए पौधा से पौधा और कतार की दूरी चूँकि कम रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी छत्रक प्रबंधन किया जाए, समय पर किया जाए। इसके लिए क्या है कि 20 से 25 सेंटीमीटर तक नीचे से ज़मीन से 20 से 25 सेंटीमीटर तक कोई भी शाखा नहीं रखना चाहिए। और अगर पौधा 1 मीटर का है तो सबसे पहले 50 से 60 सेंटीमीटर तक रखकर पौधे को ऊपर से काट देना चाहिए, यानी हेड जो ऊपर है सिरा उसको तिरछा कट कर देना चाहिए। और अब बचा 50 से 60 सेंटीमीटर मेरा पौधा और बचा, उसमें से 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे से ज़मीन से उसको छोड़कर ऊपर जो मेरा 25 से 30 सेंटीमीटर बचा, उसमें से जो शाखाएं निकलती है उसमें से 4 शाखाओं को सेलेक्ट करना है, चुनना है। चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में 4 शाखा को हम लोगों को चुन लेना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए जो कि हेल्दी हो, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो। हेल्दी सूट को हमको सेलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है, उसको रख लेना है। फिर जैसे ये शाखा 40 से 50 सेंटीमीटर का हो जाए तब उसका 50% फिर काटा जाता है, यानी कि जो पहला ब्रांच निकला 4 शाखा उसका 50 सेंटीमीटर हुआ, यानी 50% हमको काटना है। तो काटने के बाद 25 सेंटीमीटर मेरा बचेगा। 25 सेंटीमीटर में फिर प्रत्येक शाखा से 2-2 शाखा को रखना है, उसमें से जो शाखा निकलेगा फिर 2-2 शाखा को रखना है। इस तरह से 4 शाखाओं से कुल 8 शाखा बनेगी। 8 शाखा बनने के बाद फिर बढ़ने देना चाहिए। और ये कटाई छटाई का कार्य दूसरे वर्ष भी जारी रखना चाहिए जब तक कि कैनोपी अच्छा से नहीं हो जाए
1: जी।
0: 2 वर्षों के बाद कैनोपी की परिधि के भीतर वाली छोटी शाखाएं सघन तथा सशक्त ढांचे का निर्माण करती है, बहुत उसमें स्ट्रांग हो जाता है, मोटाई हो जाती है। तो सही तरीके से कटाई छटाई द्वारा तैयार

0: किए गए पौधे का फैलाव 2 मीटर होना चाहिए एवं ऊंचाई 2.5 मीटर तक सीमित रखना चाहिए, और ये सीमित रखने के लिए वर्ष में 2 बार इसकी कटाई छटाई, हल्की कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जैसे कि जनवरी फरवरी में तथा मई जून में इसकी कटाई छटाई थोड़ी सी करते रहना चाहिए।
1: जी, तो ये बातें हो गई हैं कैनोपी प्रबंधन के बारे में। और मैम, सिंचाई और पोषण बहुत ज़रूरी होता है कि जितना हम सिंचाई करेंगे, कैसे सिंचाई करेंगे, कितनी मात्रा में सिंचाई कब करनी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही पोषण प्रबंधन, अगर फलों की बात करें तो इसमें पोषण प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके दौरान, यानी अगर बागवानी कर रहे हैं तो सिंचाई और पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई और बहन?
0: देखिए, नए पौधों को सप्ताह में कम से कम 1 बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, नए पौधों को, नहीं तो वो सूख जाएंगे
1: जी।
0: और अगर अच्छी फसल लेना है तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, ड्रिप सिंचाई भी किसान भाई लगा सकते हैं, 90% तक उसमें सब्सिडी रहता है। ड्रिप सिंचाई करने से क्या होगा कि उससे हम फर्टिलाइजर को भी सिंचाई के साथ दे सकते हैं, उससे पौधा में जब हमको पानी चाहिए तब आराम से पौधा को पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, तो उसका जो फल का साइज होगा और क्वालिटी होगा बहुत ही अच्छा होगा। अब रही बात पोषण प्रबंधन में, तो ये भी ज़रूरी है अच्छी पैदावार और अच्छे स्वाद के लिए, फलों के अच्छे स्वाद के लिए सही समय पर खाद का देना भी उतना ही आवश्यक है। तो अमरूद में पहला एवं दूसरा साल गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम देना चाहिए, और नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 30 ग्राम और पोटास 30 ग्राम देना चाहिए। अब नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भाग में बांटकर देना चाहिए, क्योंकि 1 बार देने से वो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है वो बर्बाद होता है, इसलिए एक मात्रा, आधा मात्रा अक्टूबर में देना चाहिए और शेष आधा मात्रा को जून में देना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास जो उर्वरक है उसको एक ही बार में देना चाहिए और वो अक्टूबर में दे देना चाहिए। गोबर की खाद जून में देना चाहिए, जून में इन उर्वरकों को तने से थोड़ी दूर छोड़कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए, और उसके बाद मिलाने के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।
1: तो ये कुछ बातें हुई पोषण प्रबंधन, साथ ही सिंचाई प्रबंधन के बारे में। और मैम, क्या इस तरीके से अगर इसकी बागवानी की जाए तो क्या उपज में फ़र्क आता है? अगर आता है तो कैसे आता है, उसकी भी जानकारी दें।
0: उपज की बात करें, सबसे लास्ट में जो उपज है, तो सघन बागवानी से उपज करीब करीब 4 से 5 गुना होता है परंपरागत खेती के अपेक्षा। इसमें उपज 4 से 5 गुना होता है। आमदनी की बात करें तो कुछ कम होता है, क्योंकि सघन बागवानी लगाने में लागत थोड़ा सा अधिक आता है, क्योंकि नंबर ऑफ पौधा, मतलब पौधा की संख्या अधिक होता है तो उसको खरीदने में भी पैसा लगता है, और सिंचाई खाद पानी में भी अधिक पैसा लगता है, तो इनपुट अधिक लगता है, लेकिन पैदावार 4 से 5 गुना तक होता है। तो हम कहते हैं 2 से 3 गुना आमदनी किसान भाई को जरूर होगा परंपरागत खेती के अपेक्षा, इससे डबल और 2 से 3 गुना आमदनी होगा।
1: जी, तो इस तरीके से अगर आप बागवानी करते हैं तो आपको 2 से 3 गुना आमदनी प्राप्त हो सकता है। तो ये जो प्रबंधन आपको बताया गया कि कैसे आपको कैनोपी का प्रबंधन करना है, पोषण प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, और साथ ही आपको किस समय पौधरोपण करना चाहिए, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान रखते हुए अगर अमरूद की सघन बागवानी करते हैं तो आपको, आपके उत्पादन में वृद्धि भी होगी, यहाँ पर आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz, और ऐसे ही कुछ कृषि की बातें हम लेकर हाजिर होते रहेंगे हर रोज़ आपके बीच। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। सामुदायिक

0: रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है

स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहे। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणु नाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार,
1: पृष्ठ संख्या 116, अध्याय 9, चिड़िया। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिड़िया।

पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जुग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। यहां इस पृष्ठ पर एक वृक्ष का चित्र है, जिसके मोटे तने के चारों ओर ऊपर नीचे बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 117। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। यहां दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक बालिका नीचे खड़े बालक को गेंद पकड़ा रही है। आसपास हरियाली है और आसमान पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। बालक के आसपास भी दो पक्षी उड़ रहे हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। आरसी प्रसाद सिंह। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है, जिसमें दो बालक उपवन में टहल रहे हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में एक चित्र है, जिसमें एक बेंच के ऊपर दो लड़कियां बैठी हुई हैं। वे एक पुस्तक से पढ़ रही हैं और आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 118। कवि से परिचय। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं, जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा। उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। यहाँ आरसी प्रसाद सिंह जी का एक रेखा चित्र दिया गया है, जिसके साथ उनका जन्म वर्ष 1911 और मृत्यु वर्ष 1996 अंकित है। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप, निर्भय विचरण। साथ ही यहां एक चित्र है, जिसमें कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दो, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है? असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, स्वार्थ और

ईर्ष्या। साथ ही यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां आपस में खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 119। तीन, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना, संचय करना। यहां साथ ही एक बालिका का सोचते हुए चित्र है। ख, अब अपने मित्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ यहां दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर बातचीत कीजिए और इन्हें इनके सही भावों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहां एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत दिए गए वाक्य इस प्रकार हैं। एक, चिड़िया की बोली। दो, सोने की कड़ियां। तीन, निर्भय विचरण। चार, मुक्ति मंत्र। पांच, दिन भर काम। दूसरे स्तंभ जिसका शीर्षक है भाव, इसके अंतर्गत कुछ भाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। एक, बंधन और लालच। दो, श्रम और संतोष। तीन, बंधन से मुक्ति। चार, स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। पांच, प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। अब आप दिए गए संदर्भों को भावों के साथ मिलान कीजिए। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक सड़क निर्माण करने वाले मजदूर का चित्र है। उसने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया हुआ है और वह बैठकर भोजन कर रहा है। उसके दाईं ओर एक फावड़ा है और बाईं ओर एक सुराही। साथ ही दो पक्षी उसके आसपास मंडरा रहे हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। ख, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। ग, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। यहीं साथ में एक चित्र दिया गया है। इसमें दो पक्षी एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 120। सोच विचार के लिए। यहां कविता की कुछ पंक्तियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कविता पढ़ने के बाद अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की यह भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। ख, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही संचय करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है? ग, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है? यहां साथ ही एक पेड़ का चित्र है जिसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर संवाद कीजिए। एक, चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? दो, चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है? तीन, चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहां बनाना चाहेंगे और क्यों? चार, यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते
तो आप चिड़िया से क्या बातें करते

कविता की रचना। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। यहाँ शब्द समूह मिलजुल कर रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इस तरह की शैली प्रायः कविता में आती है। अब आप सब मिलजुल कर यहाँ दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। संकेत, सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब आप दिए गए दोनों रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ साथ ही एक घोंसले का चित्र है जिसके भीतर दो चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं। एक चिड़िया एक बच्चे को भोजन दे रही है और दूसरी चिड़िया उसे देख रही है। पृष्ठ संख्या 121, भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। यहां शब्द गाती और शब्द सुनाती रेखांकित किए गए हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, गाती और सुनाती रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध होता है। वे शब्द जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक चिड़िया पेड़ की एक शाखा पर बैठी हुई है। पाठ से आगे, यहाँ एक चित्र है जिसमें एक पानी से भरा हुआ पात्र है जिस पर एक पक्षी झुककर पानी पी रहा है। एक पक्षी पानी के भीतर पानी से खेल रहा है, वहीं दूसरी ओर एक पक्षी पानी पी चुका है। भावों की बात। क, जब आप इस चित्र का अवलोकन करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप यहां दिए गए भावों में से शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द भी चुन सकते हैं। ये शब्द इस प्रकार हैं: प्रेम, वीरता, दया, करुणा, क्रोध, हंसी, आनंद, डर, घृणा, आश्चर्य, ममता, शांति, सुख, दुख, ईर्ष्या, गर्व, निराशा, आभार, उत्साह, चिंता, आत्मविश्वास, सहानुभूति, उदासीनता, शंका। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है दृश्य। दृश्य के अंतर्गत वाक्य इस प्रकार हैं: एक, आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। दो, शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं। तीन, कोई गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। चार, कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंक देता है। पांच, कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता है। छह, कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा है। सात, दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं। आठ, एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं, वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है। नौ, किसी स्थान पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं। दस, कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है। ग्यारह, कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है। बारह, कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है। दूसरे स्तंभ का शीर्षक है भाव। भाव के अंतर्गत आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं।

इस प्रकार आप दृश्य से संबंधित वाक्यों से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें इन रिक्त स्थानों में लिखिए। पृष्ठ संख्या 122। ख, दिए गए भावों में से आप कौन से भाव कब कब अनुभव करते हैं? भावों के नाम लिखकर उन स्थितियों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। संकेत, आत्मविश्वास। जब मैं अकेले पड़ोस की दुकान से कुछ खरीद कर ले आता हूं। आज की पहेली। कविता में आपने कई पक्षियों के नाम पढ़े। अब आपको पक्षियों से जुड़ी कुछ पहेलियां दी गई हैं। पक्षियों को पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींच कर जोड़िए। पहेलियां इस प्रकार हैं। एक, दिखने में हूं हरा हरा, कहता हूं सब खरा खरा, खाता हूं मैं मिर्ची लाल, कहते सब मुझे मिट्ठू लाल। दो, रहता है घर के आसपास, रंग है उसका काला खास, जो भी दोगे खाता है वो, झुंड में आ जाता है वो। तीन, सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत श्याम है मेरे डैन, उड़ता रहता हूं दिन रैन, खेलू पानी में तो आए चैन। चार, कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहां बनाती, काली हूं पर काक नहीं, बतलाओ मैं क्या कहलाती। पांच, संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूं शांति का पैगाम, करता हूं मैं गुटरगू, आओगे पास तो हो जाऊंगा छू। छे, पीता हूं बारिश की बूंदें, रखता हूं फिर आंखें मूंदें, देखो चकोर है मेरी साथी, बिना उसके घूमू ऊंघे ऊंघे। छे, तन मेरा सफेद, गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची, कहलाता हूं मैं जल पक्षी। इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र कबूतर का है, दूसरा चित्र खंजन का, तीसरा चित्र चातक का, चौथा चित्र कौवे का, पांचवा चित्र कोयल का, छठा चित्र हंस का और सातवां चित्र तोते का है। अब आप पहेलियों के उत्तर से इन चित्रों का मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 123। चित्र की बात। यहां इस पृष्ठ पर तीन चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों का अवलोकन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले चित्र में कुछ पक्षी शहर की इमारतों के आसपास उड़ रहे हैं। दूसरे चित्र में एक पक्षी पिंजरे के भीतर बंद है। और तीसरे चित्र में एक जंगल में एक पक्षी अपने घोंसले से झांक रहा है। इन चित्रों का अवलोकन करते हुए अब आप सोचिए कि इन पक्षियों को कहां होना चाहिए। निर्भय विचरण। यहां दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक अभयारण्य का चित्र है जिसमें एक शेर और एक भालू स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और एक बंद गाड़ी में कुछ मनुष्य उन्हें देखते हुए जा रहे हैं। दूसरे चित्र में एक चिड़ियाघर का चित्र है जिसमें शेर और बंदर और अन्य जीव जंतु पिंजरे में बंद हैं और उन्हें देखने के लिए मनुष्य आए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 124। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और इन चित्रों का अवलोकन कीजिए। इन चित्रों के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? संकेत, जैसे इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है? साथ साथ। वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदिवास, करते सब आपस में हिलमिल। एक, वन में सारे पक्षी एक साथ रह रहे हैं, हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है। दो, हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? यहां साथ ही एक वन का चित्र है जिसमें बहुत से हरे भरे पेड़ हैं और आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। उनके मन में लोभ नहीं है,
इस पंक्ति

व्यक्ति में मन का अर्थ चित्त बुद्धि है, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। अब यहां कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें भी पढ़िए। क, आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। यहां शब्द मन रेखांकित किया गया है। ख, व्यापारी ने

शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है। आइए इससे संबंधित एक और रोचक उदाहरण देखते हैं। मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल पर मंगल होगा। संकेत, इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिन, ग्रह और शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। आगे कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 125, ये शब्द इस प्रकार हैं। क, कर। ख, जल। ग, अर्थ। घ, फल। अण, आम। अब आप इन शब्दों को अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करते हुए दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। रचनात्मकता। क, खुले आसमान में पेड़ों की टहनियों, छतों और भवनों आदि पर बैठे या उड़ते पक्षी बहुत मनमोहक लगते हैं। अपनी पसंद के ऐसे कुछ दृश्यों का कोलाज बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ख, स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए। इसमें इस कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित कीजिए। हमारा पर्यावरण। मनुष्य बिना सोचे समझे जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है, जिससे पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों की एक सूची बनाइए, जिनसे पर्यावरण व हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। आप इस कार्य में शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। संकेत, जैसे ऊंचे भवनों का निर्माण। परियोजना कार्य। क, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय, आसपास और घरों में देखिए कि किन किन कार्यों में प्लास्टिक के थैले का प्रयोग किया जाता है। उन कार्यों की सूची बनाइए। अब इनमें प्रयोग किए जा रहे प्लास्टिक के थैलों के विकल्पों पर विचार कीजिए और लिखिए। संकेत, जैसे हम प्लास्टिक के थैले की जगह कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग किन किन कार्यों में कर सकते हैं। ख, सभी विद्यार्थी पर्यावरण बचाओ विषय पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करें और उसकी प्रस्तुति विद्यालय प्रांगण में करें। झरोखे से। कविता में पक्षियों के सीमाहीन गगन में उड़ने की बात कही गई है। पक्षियों का आकाश में उड़ना उद्देश्यपूर्ण है। पक्षियों की उड़ान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आगे दी गई है। इसे पढ़कर आप पक्षियों की उड़ान से जुड़े कुछ नए तथ्यों को जान पाएंगे। पृष्ठ संख्या 126, पक्षियों की प्रवास यात्राएं। पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल शरद ऋतु और शुरू जाड़ों में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। वसंत तथा गर्मियों में वे फिर वापस उत्तर में पहुंच जाते हैं। वे समय के इतने पक्के होते हैं कि इनके आने जाने के एक एक दिन की ठीक गणना की जा सकती है। हाँ, प्रतिकूल मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। कुछ प्रजातियों के पक्षी थोड़े ही दूरी पर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता है ही। कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम हो जाने के कारण। इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां पर मौसम भिन्न भिन्न और तीव्रता लिए हुए होते हैं। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं, वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई

0: अथवा मैदानों में चले आते हैं। इस प्रकार का आवागमन भारत में बहुत अधिक पाया जाता है, जहां गंगा के क्षेत्र के बराबर में ही विशाल हिमालय है। इन छोटे छोटे वीर यात्रियों को अपनी समस्त लंबी लंबी यात्राओं के बीच भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं और बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों और कभी समुद्र के ऊपर से गुजरना होता है। कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुधा वे आंधियों के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकदम नीचे पठारों में समा जाते हैं। रात को नगर का तीव्र प्रकाश इन्हें भटका देता है। कुछ पक्षी बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो खाने और आराम करने के लिए बिना रुके लगातार बहुत लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। पक्षी प्रायः दल बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस जब आकाश में वी की आकृति में उड़ते जाते हैं, तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खींचा चला जाता है। अबाबील, चकदिल, फुदकी, समुद्र तटीय पक्षी तथा जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है। उसके बाद वे धरती से हवा में उठ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। पक्षी जगत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 127। साझी समझ। आप इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम की सहायता से अन्य प्रवासी पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी एकत्रित कीजिए और प्रवासी पक्षियों पर लेख लिखिए। खोजबीन के लिए यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जीव जगत के बारे में और भी जान समझ सकते हैं। हमारा पर्यावरण, यहां एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: https://yout.be/g/capital-k-v-a-o-capital-g-t-capital-z-capital-y-1-i?Y1i? (Question mark) SI=3 capital Z 9 Z capital H capital A X capital M Z E O S N M 7 capital L। वह चिड़िया जो, यहां इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है: https://yout.be/capital-t-9-3-a-capital-u-capital-a-1-j-capital-h-k-capital-i? (Question mark) FEATURE=SHARED यहां यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी, वाचन स्वर चांद मोहम्मद, निर्माण सहयोग कुसुम दत्ता।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम।

0: देखो कुम्भासी।
1: बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
0: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में। तो आप सभी को बता दूं किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं, और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो। तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SN राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
4: थैंक यू मैडम।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं, या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं।
4: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनिक कीट, धान की बभनी, धान का केसवर, धान का लपेटक, धान का पतंगा आदि कीट प्रमुख हैं। कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशियों के संबंध में जानकारी आवश्यक है। इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है। पहला कि धान की तनाभेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है। इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना बेधक कीट का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके। पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस, जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तनाबेधक से बचाया जा सकता है। तनाबेधक के वयस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तनाबेधक कीट को अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल

0: पर 6 बार करें। तनाबेधक के आर्थिक क्षति होने पर काटा फाइडोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में काटा हाइड्रोक्लोराइड 25 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। धान का मधुआ कीट, यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। स्केट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है, जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन, प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 SL 250 ml, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: और सर, आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और आपने बताया तना बेधक के बारे में। तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको, तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है। और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावे अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका, डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट, और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं, तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है। और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
0: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का

धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25 से 30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं व्यस्क दोनों की अवस्था में फसल को दुधावस्था में दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों में एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण आघात प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट के आक्रमण हो जाता है उस खेत में धान के चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक पाया जाता है। प्रबंधन, खेत के मेड़ों को खरपतवार न उगने दें क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खरपतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में 4 प्रकाश प्रपंच जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक कीट, इस कीट के भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में उसकी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ लेती हैं और अंदर ही अंदर उसके हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां धान की पत्तियों को सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु अवलिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच इसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्लोरोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार

0: या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया, इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती है और इसके अलावे मैं बता दूँ कि इनके पंखों पर भी काली जो धारियां हैं वो पाई जाती हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खर पतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और क्योंकि उससे कीट पतंग जो हैं उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनों, नीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
3: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 FM ग्रीन पर और मैं हूं ईश्वर चंद्रा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से भी जानते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही

0: बात करेंगे कि आशा और ANM जैसी स्वास्थ्य कर्मी इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस किस तरह की फॉलोअप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टीकन भाभी।
1: आरजे ईश्वर धन्यवाद। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता था। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और एक रुपया भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: अरे टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए कि आयुष्मान PMJ में 70 वर्ष से उम्र की ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है और बगैर शर्त इसका इलाज होता है।
1: देखिए, आयुष्मान PMJY में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों कि इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है।
1: आरजे ईश्वर, आयुष्मान PMJY में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर, घुटना बदलवाना हो, कुल्हा रिप्लेस करना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। और जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास बात तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान PMJY में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए भी अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे ईश्वर, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं। यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती है। बस माता या पिता अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
0: तो टीकन भाभी, अब अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल है, क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है?
1: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाई, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जांच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान PMJY में शामिल है। अस्पताल का बेड, ICU या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खान पान सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि PMJY योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: वाह, बहुत बढ़िया टीकन भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक बात और कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान PMJY में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या कोई छोटी मोटी जाँच। यानी इलाज के बाद भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
0: तो भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है, मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तब भी इलाज संभव हो सकता है क्या?
1: अरे हाँ आरजे ईश्वर, बिल्कुल, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान

0: कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं और वहाँ बीमार पड़ गए। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करवा सकता है।
1: बिल्कुल। तो टिकन भाभी, एक और बात मेरे भेजे में आ रही है कि सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो क्या आयुष्मान PMJAY में भी उनकी कोई भूमिका होती है?
0: देखिए, आशा और ANM की आयुष्मान PMJAY में खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती है जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है, उसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा दीदी घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान PMJAY योजना के बारे में समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इसे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में यही लोग समझाती हैं और लोगों को बताती हैं इनके महत्व के बारे में। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियाँ एक हफ्ते के अंदर किसी भी मरीज से मिलने जरूर पहुंच जाती है, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी है, विजिट की जो तारीख बताई गई है, सब चेक करती है और मरीज को ठीक से समझाती है सब कुछ। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी तो और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी आशा दीदी ही करती है। इनका काम यही खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती है, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिखकर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
0: हाँ RJ ईश्वर, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी बहुत आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 14555 यानी कि 14555, किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो है, www.pmjy.gov.in। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम इस सूची में है या नहीं है और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैट बॉट भी है जिसमें बस आप अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर की जाती है, आपके कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
1: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। तो टिकन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान PMJAY का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
0: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है ना, ये सबसे बढ़िया ऐप है इसके लिए। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुन लें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुन लें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुन लें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन कैसे करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये मैप आपको बता देता है। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
1: हाँ, तो भागलपुर से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है, वो भी अपने आसपास के कौन से अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड हैं, कौन से अस्पताल तक उनको सुविधा मिल सकती है, किस इलाज का कहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इलाज संभव है, ये सब कुछ इन्हीं विधि द्वारा आप देख सकते हैं। तो टिकन भाभी, एक और बात कि आयुष्मान PMJAY तो बड़ी अच्छी योजना है, जैसा कि आपने इसकी पूरी व्याख्यान की, आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या?
0: हाँ, इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर दी। सबसे पहले तो जो परिवार महंगे इलाज के डर से

0: अस्पताल जाने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में जाकर आराम से इलाज करवा रहे हैं।
1: सही बात भाभी, गांव में तो लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे और आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल चाहे मेदांता हो, पारस हो, पटना तक जाकर के इलाज करवा रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने आरजे ईश्वर, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका सालों से इलाज अटका था, अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आराम से इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान PMJY ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करवा सकता है।
1: तो दोस्तों, आयुष्मान PMJAY योजना ने वाकई लाखों परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज के नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर शान से सर्जरी करवा रहे हैं। और तो और, जिन अस्पतालों को देखकर जी घबराता था कि ये होटल है या हॉस्पिटल, आज उन्हीं बड़े अस्पताल में आप वहां पर सीना तान कर जाते हैं और अपना PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड निकालकर इलाज कराते हैं। तो श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से

16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहे। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां।

पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में न छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर न जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश न होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी, अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पका कर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

नमस्कार किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रोकने का फैसला किया और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्म का चयन करें जिसकी दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादातर किसान करते हैं कि जिसमें दर ज़्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है

0: वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
1: किसान भाइयों नमस्कार, जैसे कि आपने सुना अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य कृषि भूमि की बात है तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को अगर आपके पास अच्छा बीज है तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा हमें डिसाइड हो जाएगा। कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो खेती की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उन पे वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए बहुत सारी किस्में हैं जो संस्तुत हैं और वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं। तो हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए किस बात करेंगे। अगर हम देखें तो धान के केस में उनकी पकने की अवधि को लेके और जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसके प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हम लोग स्पेशली धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको, इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और ज़मीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-140 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ज़िले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इनकी बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं, उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30-35 क्विंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा आगात किस्म में ऊपरी ज़मीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है।

और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है, और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक खास बात है, सहभागी

0: इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए, और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हों, क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया, इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट, ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35 से 40 क्विंटल इसकी उपज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोरदीप एक किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसका इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-15 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती, तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं। ये भी 110-15 दिन की किस्म है और लगभग 40 क्विंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है, इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम अगात श्रेणी में आती हैं, तो मध्यम अगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप ज़रूर लगाएं, ये नई किस्म है। क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको ज़रूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में हैं जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को ज़रूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है, जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की, खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को ज़रूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है, सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 क्विंटल आसानी से मिल जाती है, 120-125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
1: तो ये थे किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 से के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्में, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग से ही हैं। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी

है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स जरूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें।
डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां

0: भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है, और कई बार ऐसे लोग मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट,
1: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने

0: करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली की ओर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं, यानी उन्नत कृषि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ खेती बाड़ी की बातें होंगी, जिससे कि आज के हमारे जो युवागण हैं वो भी जुड़ें और वो भी समझें खेती से क्या क्या आप संभावनाएँ आपके लिए लाई जा सकती हैं और कैसे आप खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इससे जुड़े आप जान सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे, और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर एके झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जल कुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जल कुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
6: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब, गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके
5: जी
6: केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
5: जी।
6: वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट, ये होता है।
5: यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है?
6: देखिए, वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फॉस्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% होगा, यानी आधा परसेंट, और यदि हम पोटास इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था, क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज्यादा मात्रा लगती थी।
5: बिल्कुल।
6: तो यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में, तो क्या जल कुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा?
6: देखिए, एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग फसल जलाते भी हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है, ये हमारे यहाँ खास करके यदि देखें तो यह एक प्रॉब्लमेटिक वीड की तरह है।
5: अच्छा।
6: समस्या पैदा करने वाला ये खरपतवार है जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। तो यदि हम यह बात देखें कि जो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है, यदि हम सिर्फ बिहार की बात देखते हैं तो बिहार में लगभग आपको 9.12 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि वेट

0: एंड है, और वहां पर जो ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी जो है वह एक प्रॉब्लमेटिक वीड है। तो इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में तो एक तो ये बात है कि ये फायदेमंद है। दूसरी बात यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में, जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें पोषक मान ज्यादा है। और कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या पोषक मान लाता नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो बर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाए तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्या ग्रस्त हमारे पास ये है जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर जैसे मान लीजिए 2 भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और 3 भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि 2 भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और 3 भाग गोबर का प्रयोग करें तो उससे जो बनने वाला बर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए जिसकी संभावना बहुत बढ़िया है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जल कुंभी का प्रयोग अगर हम ज्यादा करें तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जल कुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं इसको, तो इसकी क्या संभावनाएं हैं?
0: अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जलकुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो वहां पर काफी इसका इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफी संभावना है बिहार के परिवेश में।
1: जी, तो इसकी काफी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है?
0: अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है
1: जी,
0: उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो 1.667% अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% से के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया 2 भाग जलकुंभी और 3 भाग जो आपका गोबर है इसको मिला करके बनाए तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.8% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहां पर 0.88% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटास भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं,

0: की तुलना में इसमें पोटाश भी थोड़ा सा ज्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है, तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मित्रों कि अब जो बर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है, यानी आप ऐसा ही बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटाश हो या उससे ज्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को मिला, और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है, तो इसीलिए इसका प्रयोग काफी फायदेमंद है और जरूरी भी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें।
0: अब देखिए एक किसान था सुपौल का, उस वो जो करता था वो क्या करता, एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी और 5 भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। अच्छा। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था जलकुंभी के जड़ को, और उसमें जो है क्या कहते हैं हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना परसेंट तक मिला सकते हैं, तो हमने देखा जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक यानी 2 भाग जितना पुआल का करते हैं यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें, गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है तो ढेर विधि में ही कीजिए। अच्छा। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उससे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4 से 6 फीट के बीच में ही रखिए।
1: अच्छा।
0: उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है सेड है उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे बर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए, हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15-25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15-25% के बीच में नमी रहनी चाहिए, जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं, तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है, तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है, तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप बर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका प्रयोग बर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा, इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा, तो बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी, और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं।

जी, तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जल कुंभी का प्रयोग आप करते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद है और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में। तो अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz यानी FM ग्रीन। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और

से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हां श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी,
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच

0: कुछ हमारी चिंता रहती है, तभी तो वह ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें। दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें।
1: जी
0: दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दुखद है कि प्रकृति को हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता रहती है उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओ कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बड़ा ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?

0: पंखा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा चलते हैं।
2: चलो
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले।

0: ले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
2: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
1: लो।
2: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते

0: और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की होती हुई भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
1: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
2: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
3: The Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
4: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
2: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो रही हो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ भाई, रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब, दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।

0: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
1: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
0: सर, हम एक चरवाया है।
1: आगे बताओ।
0: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
1: क्या देखा तुमने?
0: शब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
1: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: शब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: शब, मेरा गाँव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही।

0: सुनो
1: सविधर
0: जी। यस सर।
1: ये मैं इसके चारों ओर।
0: जी सर। उधर से। हाँ जी।
1: तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
0: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
0: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
0: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर। यहां से पहाड़ की दाई ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर।
1: कोई शक?
0: नो नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
0: सर, सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
1: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
1: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक सर।
1: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक खाद गोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
1: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
1: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
0: धीरे धीरे।
1: बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: Fire!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये का?

0: कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए बाग लगाने के बारे में। अभी बहुत सारे किसान भाई बहन नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे होंगे या नए बाग लगाने के प्रोसेस में होंगे। ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार, सर उद्यान फल विभाग से और सर असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: सर, सबसे पहला सवाल कि बाग को लगाने का उचित समय क्या है?
3: मैडम, फलदार वृक्ष का जब हम बाग लगाने की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो समय होता है, सबसे उचित समय जुलाई अगस्त का महीना होता है। लेकिन जुलाई अगस्त का महीना इसलिए होता है कि उस समय रुक रुक कर वर्षा होती रहती है और आकाश में बादलों की वजह से दिन में तेज धूप से पौधे बच जाते हैं, साथ ही तेजी से उसमें व्यवस्थित भी हो जाते हैं। इसलिए जुलाई अगस्त का महीना अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए हमें बाग लगाने की तैयारी हमें अप्रैल मई से ही शुरू कर देनी पड़ती है।
2: अच्छा, और सर अगर बाग लगा रहे हो तो उस समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है?
3: हाँ मैडम, अगर मैं बाग लगाने की बात करूँ तो उस पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं, चूँकि फल वृक्ष जो होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, एक बार जब लगाया जाता है तो वो 50-60 साल तक वो से हम फल प्राप्त करते हैं। तो शुरू में अगर कोई गलतियां होती है तो वो हमें सब दिन उसको भुगतना पड़ता है। तो कोई गलती ऐसा हम ना करें जो आगे चल के हमें कठिनाई का सामना करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है, कुछ विभिन्न बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, जैसे कि स्थान का चुनाव। अगर हम बाग लगा रहे हैं तो किस स्थान पर बाग हमको लगाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। फल एवं उनकी जातियों का चुनाव, किस तरह का बाग हमें लगाना चाहिए, किस एरिया में। मान लीजिए कि अगर हम भागलपुर रीजन की बात करें तो अगर यहाँ आम है, अमरूद है, लीची है, ये सब लगाएं। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा क्रॉप लगाएं जो यहाँ पर नहीं, ठंडे प्रदेश में होता है, सेब की, नारंगी की हम अगर करना चाहें तो उतना प्रॉफिटेबल या उतना कॉमर्शियलाइज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस फल का बाग लगाना चाहिए, दूसरा किस जाति का, किस प्रभेद का लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ भागलपुर में जरदालू यहाँ का जो है सो मेन फसल है, अगर हम जरदालू लगाते हैं तो यहाँ पर हमें, या मालदा ये सब अगर हम लगाते हैं तो यहाँ हमें क्या होता है कि इसका डिमांड है। लेकिन अगर यही हम अगर लगाने का हम दशहरी की बात करें तो दशहरी का डिमांड यूपी में ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो वहाँ हमारा उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए किस क्रॉप को लगाएं और किस जाति का लगाएं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि भूमि

की तैयारी, हमारी जमीन कैसी है, उस फल बाग के लायक उसको हम सही ढंग से तैयार करना चाहिए। फिर उसका भूमि का रेखांकन हम करते हैं कि किस तरह से लेआउट करें ताकि जो हम बगीचा लगाएंगे तो प्लांट से प्लांट की दूरी हो या जो भी हमारा रो कतार से कतार की दूरी हो वो ऐसे लाइन में हो जो हमारा बाद में हम इसमें इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन जो भी करते हैं, अंतर्वर्ती खेती करते हैं या उसमें जो भी हम खरपतवार जुताई कुराई करते हैं उसमें आसानी हो, उसके लिए रेखांकन करके ही लगाना चाहिए। प्लस गड्ढा खोदना, गर्मी में अप्रैल और मई के माह में गड्ढा खोदने की बात हम करते हैं और गड्ढा खोदने के बाद जब हम उसकी भराई करते हैं तो वो जो गड्ढा होता है उसमें जिस समय की बहुत तेज धूप, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ 15 अप्रैल से मई के माह तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उस समय अगर हम गड्ढा करके और 20-25 दिन तक अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो उसके गड्ढे के चारों तरफ जितने भी कीड़े मकोड़े या जितने भी जो बीज होते हैं उसके खरपतवार के बीज गिर के पड़े रहते हैं उनको जैसे ही नमी मिलता है वो जैसे उग आते हैं और वो फिर हमारे मेन क्रॉप को वो क्षति पहुंचाते हैं। तो सीड भी हो गया और कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, मिट्टी से जो भी संक्रमित होने वाले जीवाणु हैं वो सब उस धूप में नष्ट हो जाते हैं जब 20-25 दिन हम खुले छोड़ देते हैं। तो गड्ढा करके 20-25 दिन छोड़ना चाहिए। गड्ढा करने का तरीका है कि उसको हम आधा, अगर मान लीजिए कि आम की बात हम करें, आम का बात करते हैं तो उसके लिए गड्ढे का जो माप होता है वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, यानी 1 घन मीटर का गड्ढा करना चाहिए। तो 1 घन मीटर का गड्ढा जब करते हैं तो उसकी आधी मिट्टी को एक साइड दे लें और उसकी जो नीचे वाली आधी मिट्टी है उसको दूसरे साइड हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले लेआउट करते हैं। लेआउट करने का कई तरीका है, जैसे वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, षडभुजाकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, और जहाँ पर कि जमीन थोड़ी ऊंची नीची होती है तो वहाँ पर हम लोग कंटूर सिस्टम में हम लोग प्लांट को लगाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बना के उसमें हम लोग लगाते हैं। तो जो विधि हमारा जिस जगह के लिए उपयुक्त है उस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। खास करके वर्गाकार विधि बहुत ही आसान विधि है और कमर्शियलाइजेशन समझिए ज़्यादातर इसी विधि का ही हम लोग करते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। प्लस उसमें जो देख रेख, बाग का देख रेख भी आसान होता है। प्लस उसमें जो हम लोग खरपतवार नियंत्रण हो या जुताई करना हो तो चूंकि कतार से कतार और पौधे से पौधे को वर्गाकार विधि में रहता है तो उसमें भी आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट करके और गड्ढा की खुदाई करते हैं और गड्ढा की खुदाई करने के बाद तब फिर हम लोग उसको, जब वर्षा होने का रहता है तो वर्षा होने से पहले 20-25 दिन छोड़ने के बाद वर्षा होने से पहले उस गड्ढे को हम लोग भराई करते हैं। तो गड्ढे की भराई करने में हम लोग जो उपयोग करते हैं उसमें कुछ फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम लोग कंपोस्ट का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट जितना आप उसमें लगाएंगे उतना ही आपका जो है सो गड्ढा अच्छा रहेगा, जो पौधे का विकास अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग करीब एक गड्ढे में प्रति गड्ढे हम लोग करीब करीब 30-40 kg कंपोस्ट हम लोग एक गड्ढे में डालते हैं। तो ऊपरी जो मिट्टी हमने साइड में रखी है उस ऊपरी मिट्टी में ही हम लोग कंपोस्ट मिलाते हैं, उसमें कुछ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों चीज़ का जो है सो सम्मिश्रण, जैसे यूरिया बहुत कम देना चाहिए, बल्कि यूरिया अगर हम शुरू के डोज में नहीं भी देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर दें तो 250 ग्राम यूरिया दे दें, 500 ग्राम SSP दे दें, 250 ग्राम MOP और नीम की खल्ली अगर उपलब्ध है तो 1/2 kg कम से कम नीम की खल्ली, आम में अगर हो तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1 kg तक भी दे सकते हैं। ये जो है सो सारे चीज़ को मिला के हम गड्ढे की भराई करते हैं और गड्ढे की भराई करने पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको पारागोला साइड में, जैसे कि मुट्ठी जो बांधते हैं तो ये जो मुट्ठी जो ऊपर का जो हो जाता है ऊपरी हिस्सा, तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपरी हिस्सा तक उसको भराई करना चाहिए ताकि यदि पानी पड़ता

0: है और मिट्टी अगर बैठे तो वो समतल जमीन से नीचे ना जाए, अगर समतल जमीन से नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी फंसने का चांस रहता है, और जब पानी फंसता है तो वो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके उसको पिरामिड शेप में हम लोग भराई करते हैं, और जब एक बारिश हो जाती है तो फिर वो मिट्टी बैठती है, जब मिट्टी बैठ जाएगी तब फिर हम उसको करते क्या है कि पौधे से पौधे फिर से हम फीता लेके, और जितना दूरी पर हमको पौधा लगाना है, अगर 10 मीटर पर लगाना है, 5 मीटर पर लगाना है, तो कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी लगा के, और उसको फिर हम लोग खूंटा बांध गाड़ के और बीच में खुदाई करते हैं गड्ढे के बीच में, और पौधे को हम लोग लगाते हैं। इस तरह अगर हम लगाते हैं तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एक घन मीटर इसमें जो मिट्टी की खुदाई हुई तो उसका मिट्टी बहुत जो है सो भुरभुरा हल्की हो जाती है, और पौधे हमारे जो होते हैं जो नर्सरी से हम पौधे ले जाते हैं उसका जड़ जो है सो बहुत कोमल होता है, तो जब उस जड़ को अगर सॉफ्ट मिट्टी हल्की मिट्टी मिलती है तो उसका व्यवहार भी ज़्यादा होता है, और जितना जड़ का व्यवहार ज़्यादा होता है उतना उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, खास करके किसान भाई करते क्या है कि जब बरसात का समय आया तो नर्सरी से पौधे लेके जाते हैं और गड्ढा करके और उसको लगा देते हैं। लेकिन मैं बता दूं किसान भाइयों कि अगर आप तुरंत में गड्ढा खोद के लगा रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तरीके से कि हम अप्रैल मई माह में गड्ढे करके 20-25 दिन छोड़ दें, उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि गड्ढे की भराई करनी है उस तरह से अगर लगाते हैं तो जस्ट समझिए उसमें ये फर्क होता है, जो एक माँ अगर बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो उस बच्चे का ग्रोथ, और एक वे माँ जो डब्बे का दूध पिलाती है उस दूध के विकास, उस दूध को पी के जो बच्चे का विकास होता है, तो दोनों में जो फर्क है समझिए यही फर्क यहाँ पर नजर आता है, जो हम गड्ढा करके करते हैं और जो हम तुरंत में करते हैं। तो ये है लगाने का तरीका मैंने।
1: तो सर अगर हम आम की बात करें, अमरूद की बात करें और लीची की बात अलग अलग करें, तो इसमें गड्ढों की दूरी क्या होनी चाहिए और गड्ढों की गहराई क्या होनी चाहिए?
0: हाँ मैडम, अगर हम आम की का बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि पारंपरिक विधि से अगर हम लगाना चाहते हैं तो 10 मीटर का कतार से कतार और 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, चूँकि पौधा जो है जो अपना आकार लेता है, तो ऐसा हम लोग दूरी रखते हैं कि एक दूसरे पौधे का टहनी या जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से टकराए नहीं, और धूप का अच्छा जो है सो प्रवेश हो सके, ताकि धूप का जब प्रवेश अच्छा होगा तो कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप कम होगा और फल का ग्रोथ भी अच्छा होता है, और अंदर तक अगर धूप आती है तो वहाँ पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी ऊपर से लेके नीचे तक आता है, और अगर घना हो जाता है बगीचा तो फिर हर पार्ट में पौधे के हर पार्ट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, और दूसरा कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो इसलिए आम के लिए 10 मीटर, और आजकल चूँकि जमीन का जोत घटता जा रहा है इसीलिए सघन बागवानी के रूप में अब 10 मीटर की जगह 5 मीटर पर हम लोग लगाना शुरू किए हैं। गवर्नमेंट भी अनुदान पर जो बगीचा लगाने के लिए अनुदान देती है तो उनका भी कहना है कि आप 5 मीटर पर लगाएं और उसका मैनेजमेंट करें, उसका कैनोपी मैनेजमेंट छत्रक प्रबंधन जो होता है वो अगर आप करेंगे तो 5 मीटर पर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे। अगर मैडम एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, अगर उसमें 100 पौधा लगता है 10 मीटर पर, तो 5 मीटर पर अगर हम लगाते हैं तो सीधे 400 पौधे हो जाते हैं, तो कहाँ 100 पौधे कहाँ 400 पौधे, प्लस जो ज़्यादा बड़े पौधे होते हैं अगर कटाई छटाई उसकी ना करेंगे तो उसका मैनेजमेंट भी हमको कठिन होता है, चाहे उसमें हमको कोई स्प्रे करना हो केमिकल का तो उसमें भी पौधा बड़ा होने पर हमको दिक्कत होती है, हार्वेस्टिंग करने में फल की तुराई करते हैं उसमें भी परेशानी होती है। तो इसीलिए अब हम लोग सघन बागवानी के रूप में 5 मीटर पर लगाते हैं ताकि उसका मैनेजमेंट भी आसान हो, कम हाइट रहने पर उसमें स्प्रे भी करना हो कोई चीज़ का तो हम कर सकते हैं आसानी से, उसका फल तुराई करना हार्वेस्टिंग करना तो वो भी हमारे लिए आसान होता है। और अमरूद के लिए हम लोग 5 से 6 मीटर पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखते हैं। लीची के लिए 8 मीटर कतार से कतार, पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं,

0: इसी तरह से नींबू के लिए हम लोग 6 मीटर, तो जैसा जो वृक्ष का जितना उसका बरवार होता है, जैसा उसका नेचर है, उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो हमारे यहाँ फसल होती है तो ये आम, अमरूद, लीची, नींबू, इस सब का यही है।
1: सर, अगर नर्सरी से जब फल के पौधे खरीद रहे हों तो उस वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किसान भाई नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से पौधे खरीद के लाते हैं और लगाते हैं, क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा है। आज अगर हम लगाते हैं तो ये 5 साल बाद हमको फलन देता है, तो हमको पता नहीं चलता है। 5 साल में अगर हम वेट करते हैं, उसके बाद अगर नर्सरी वाले अगर कोई गलत पौधे भी दिए हैं, अगर सही वेराइटी नहीं दे पाए हैं, तो उस जगह भी हम लोग जो है सो 5 साल के बाद अगर उनके पास कहने के लिए जाएंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी फलदार वृक्ष को खरीदें, जब भी नर्सरी खरीदें, तो किसी सरकारी या विश्वसनीय पौधशाला से, नर्सरी से ही खरीदें, ताकि उसकी एक विश्वसनीयता बनी रहे। अदरवाइज 5 साल हम उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद अगर फल छोटा हो गया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसकी गारंटी होनी चाहिए। दूसरा है कि पौधे जब खरीदते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो और कीट व्याधि मुक्त हो। अगर नर्सरी में ही पौधा अगर कीट व्याधि से प्रकोप से रहेगा तो फिर अगर हम बाग में ले जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको परेशानी होगी। तो कीट व्याधि से मुक्त हो और स्वस्थ पौधा हो, उसको हम लोग लेते हैं। तीसरा ध्यान देना चाहिए कि कलमी पौधे, आम का अगर कलमी पौधे लेते हैं तो उसमें हम लोग कलम बांधते बीजू के पौधे पर सायन लेके उसको हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग का जो पॉइंट होता है, कलम बंद जहाँ पर जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव के ऊपर तथा नीचे तना समान मोटाई का अगर रहता है तो उसका ग्रोथ जो है सो अच्छे से होता है, उसमें डैमेज होने का चांसेस कम रहता है। तो वो जुड़ाव पर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जुड़ाव हमारा बहुत सटीक जुड़ाव हो और ऊपर नीचे का मोर और लेस जो है सो मोटाई जो है सो थिकनेस बराबर हो। चौथा बात ध्यान में रखना चाहिए कि पौधा बहुत ज़्यादा आयु का नहीं होना चाहिए। प्राइवेट नर्सरी में जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े बड़े पौधे रहते हैं। सवाल है कि किसान भी उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, बड़े पौधे लगाएंगे तो हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा, बकरी नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी। लेकिन एक गमले में, एक पॉट में जो हमने उसका जड़ को रोक के रखा है और पौधा हमारा बड़ा हो गया, और पौधे का नेचर है कि जितना जड़ नीचे जाएगा उतना मैंने ऊपर भी उसका तना वगैरह का विकास होता है, तो ऊपर तो विकास हो रहा है लेकिन नीचे जड़ का जो है तो विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उस पौधे को ले जाके हम अपने बाग में लगाते हैं तो उस पौधे को जमीन में एस्टेब्लिश होने के बाद उस बड़े पौधे को जितना भोजन चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो जड़ सक्षम नहीं हो पाता है उतना न्यूट्रिशन देने में, क्योंकि उसका फीडर रूट उतना डेवलप नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका पौधा सुरक्षित तो बकरी से रहेगा लेकिन उसका ग्रोथ वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप छोटे पौधे ले जाते हैं, 1 साल के पौधे, 2 साल के पौधे लेके जाते हैं, तो उसका रूट भी, जड़ भी उसका अच्छा रहता है और उसको जब लगाते हैं तो वो जमीन में जाके उस जितना जड़ का ग्रोथ होता है उसी हिसाब से ऊपर का भी ग्रोथ होता है और पौधा हेल्दी और अच्छा कैनोपी लेते हुए और उसकी बरवार होती है। उसके बाद हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पौधशाला की क्यारी से जब पौधे को निकालते हैं तो निकालते समय उसकी मिट्टी जो पिंडी हो वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, या पॉली बैग से या गमले से जब निकाल के हम पौधे को लगाते हैं तो वो जो पिंडी होता है वो पिंड हमारा नहीं टूटना चाहिए। अगर पिंड टूटेगा और जड़ में अगर हवा लग जाएगा तो फिर वो पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पिंडी नहीं टूटना चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में भी लाने में वो डैमेज होने का चांस रहता है अगर सही ढंग से उसको नहीं निकाला गया है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। यातायात के दौरान पौधों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि मिट्टी के पिंडी ना टूटे। इन सब बातों का ध्यान में रख के अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदते हैं और अपने बाग में लगाते हैं तो वो आपका दूरदर्शिता के लिए अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा।
1: सर, ये तो बात हो गई बाग लगाने की, लेकिन बाग लगाने के बाद किस तरीके से देख रेख करना चाहिए ताकि पौधों की बढ़भाड़ सही तरीके से हो?
0: हाँ मैडम, पौधा लगा तो लेते हैं और पौधा लगाने के बाद फिर उसमें अगर हम सही तरीके से उसका प्रबंधन ना करें तो फिर हमारा पौधे का विकास उसका नहीं हो पाता है।

तो उसके लिए हमें क्या है कि जब पौधा हम लगाते हैं तो शुरू से जब एक साल का पौधा हमारा व्यवस्थित हो जाता है तो उसकी कटाई छटाई पर ध्यान देना चाहिए कि अनवांटेड अवांछित जो शाखाएं हैं उसको हमेशा हटाते रहना चाहिए, जो ज़्यादा घना हो गया उसको हटाते रहना चाहिए। चारों दिशा में अगर पॉसिबल हो तो चारों दिशा में हम चार शाखाएं ही छोड़ें ताकि उसकी दूरी जो सो आपस में टकराए नहीं एक दूसरे का, और चार शाखाएं छोड़ने के बाद फिर वहां से जब पौधे निकलते हैं मैंने शाखा निकलती है तो वहां पर फिर कटिंग करके वहां से फिर चार शाखाएं छोड़ें, उसके आगे भी फिर जब दो तीन साल तक हम लोग कटाई करके उसको अगर कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो वो पौधा हमारा अच्छा रहता है। दूसरी बात रही कि अगर पौधा व्यवस्थित हो गया है तो उसको नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में अगर सिंचाई नहीं भी करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। जाड़े के समय में हम 15 दिन पर भी सिंचाई करते हैं, 20 दिन पर भी सिंचाई करते हैं तो वो भी हमारा चल जाता है, लेकिन गर्मी के सीजन में हम कम से कम साप्ताहिक जो है सो एक सप्ताह में जरूर हम सिंचाई करें, अदरवाइज हमारा पौधा जो है सो डैमेज होगा। और नया पौधा जब लगाते हैं तो उसमें तो दो दिन तीन दिन पर भी हमको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बहुत अच्छा सिंचाई का प्रबंधन हो तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम जो होता है टपक सिंचाई विधि, जिसमें कि हम एक बार जो है सो उसका पाइपलाइन बिछा देते हैं और उसके बाद उसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो उससे हमारा जो है सो इरीगेशन बहुत अच्छे से होता है। सह है कि इसमें जो हम कीटनाशक वगैरह का उपयोग करने की बात आती है तो हमको सुपरविजन करते रहना है कि पौधा हमारा अगर कहीं पर इन्फेक्ट कर रहा है, शुरू में दीमक वगैरह का प्रकोप रहता है तो जब पौधा हम लगाते हैं तो उस समय ही क्लोरोपाइरीफॉस, आजकल थाइमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग आप करें। क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करने के बाद आप जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे और जो वैज्ञानिक के संपर्क में रहें ताकि जब जो ज़रूरत पड़े तो दवा पूछें, पहले से उतना अति करने की आवश्यकता नहीं होती है। और शुरू में जब पौधा को स्थापित करने की बात आती है तो खास करके दीमक वगैरह का ही प्रकोप होता है, बाद में जब फलन में आता है तब हमको कई तरह की बीमारी का फेस करना पड़ता है, तो ये हुआ। दूसरा है कि अगर पौधा जो एक वर्ष का पौधा है तो उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग होना चाहिए, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर हम हर साल अगर उसमें नहीं करते हैं तो उसका व्यवहार सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हर साल के लिए अलग अलग, जैसे आम का पौधा अगर हम लगाते हैं तो उसमें प्रथम साल जो कंपोस्ट है उसमें एक पौधे में जो है 10 kg कंपोस्ट 10 kg और नाइट्रोजन 100 g, फॉस्फोरस 75 g और पोटास 100 g, इस मात्रा को हम प्रत्येक पौधे के गड्ढे में हम मिलाकर और उसको हम भराई कर देते हैं और उसके बाद उसका हम सिंचाई कर देते हैं। और जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो उसी डोज को हम डबल कर देते हैं, 3 साल का पौधा हुआ तो उसी डोज को हम ट्रिपल कर देते हैं, यानी कि अगर इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम में 10 साल तक हम बढ़ते जाते हैं तो जब 10 साल का पौधा हो जाता है तो जो 10 kg हमने दिया था वो सीधा हो जाता है 1 क्विंटल, यानी कि एक पौधे में 1 क्विंटल अगर हम दें कल तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर उपलब्धता कम है तो कम से कम 50 kg तो एक पौधे में देना ही चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन, जहां 100 g हम फर्स्ट ईयर वाले को दे रहे थे तो 10 साल के पौधे में 1 kg चाहिए, 1000 g यानी कि 1 kg, और फॉस्फोरस 750 g और पोटास 1000 g। तो इस तरह से 10 साल के पौधे को देते हैं और 10 साल से बाद जो भी हो, 12 वर्ष हो 20 वर्ष हो, यानी कि उसके बाद हम लोग वही डोज को स्थिर रखते हैं और उसको देते हैं। इस तरह से अगर हम बाग का समुचित प्रबंधन अगर करेंगे कि उसका कैनोपी मैनेजमेंट, छतक प्रबंधन करेंगे, सिंचाई प्रबंधन करेंगे और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हम करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है सो पौधे का विकास अच्छा होगा और हमारा फल बगीचा जो है सो अच्छे रूप में विकसित होगा। एक बात का और ध्यान रखना है जो मैं बोलना चाह रहा था कि जब भी आपका प्लॉट हो तो प्लॉट का जो बाउंड्री होता है तो बाउंड्री से आप अगर 10 मीटर पर पौधे को लगा रहे हैं तो कम से कम बाउंड्री से 5 मीटर छोड़ के ही चारों तरफ लगाएं। काहे कि जब पौधा लगाते हैं तो उसका जो छत्रक होता है, कैनोपी होता है, डाली होता है तो दोनों साइड में बढ़ता है। तो अगर

0: हम सटा के लगाते हैं तो वो फिर दूसरे जमीन में वो चला जाएगा, तो इसीलिए उसकी आधी दूरी हम 5 मीटर छोड़ के, और अगर 5 मीटर पर लगा रहे हैं तो 2.5 मीटर छोड़ के, यानी कि चारों बाउंड्री में छोड़ के ही पौधे लगाना चाहिए।
1: अगर किसान भाई बहनों, अगर आप सर के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके बगीचों में पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में

ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां: पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंकें, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी: अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पका कर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहे।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि

0: मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए, अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
1: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
0: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए, यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
1: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
2: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
1: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है।
2: मगर यदि ये

सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा

0: परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
0: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग

0: सकते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती। और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए। पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
1: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
2: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज हम उन्नत कृषि में बात करने वाले हैं मूंग उत्पादन बढ़ाने की नूतन प्रौद्योगिकी के बारे में, और इस बारे में हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद कुमार सरापे, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: किसान भाइयों को नमस्कार।
4: सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मूंग की फसल किसानों के बीच आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, और ऐसे में मूंग की फसल से किसानों को क्या क्या फायदे हो रहे हैं?
5: जैसा कि किसान भाई, बिहार में गर्मा मौसम में मूंग उगाई जाने वाली बहुत प्रचलित एवं लोकप्रिय दलहनी फसल है, जो जैसा कि गेहूं, आलू, मक्का और सरसों की हम लोग जो कटाई कर लेते हैं उसके बाद ये बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। इन मौसमों में रबी और खरीफ की अपेक्षा यदि किसान भाई ध्यान दें तो देखेंगे कि कीट बीमारी खरपतवार आदि का प्रकोप कम होता है, तथा जैसे कि रबी मौसम में पाला ओलावृष्टि या आंधिया तथा फसल गिर जाने की वजह से प्राकृतिक आपदाओं से लोग ग्रसित रहते हैं, रबी मौसम ग्रसित होती है। इसके सापेक्ष में मूंग कम समय में तैयार होने वाली दलहनी फसल है। तो मूंग देखिएगा कि आजकल किसानों के बीच में बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, और हर किसान बंधु चाहते हैं कि हम लोग जैसे ही हम लोग रबी मौसम में रबी जो फसल है उसकी कटाई के बाद तुरंत मूंग लगा लें। और मूंग के दानों में सबसे बड़ा इसमें खूबी है कि इसमें 22 से 24% प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज विटामिन पाए जाते हैं। आजकल जो धान गेहूँ फसल के स्थान पर अब हम लोग धान गेहूं और मूंग फसल यदि लें तो मूंग की फसल अतिरिक्त लाभ देता ही है, और साथ ही साथ इसका जो फली तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका शेष जो पौधा बचा हुआ रहता है उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो इससे किसान बंधु सबसे बड़ा फायदा यह है कि मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती ही है। दूसरी ओर मूंग के जड़ों की ग्रंथियां में जो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होते हैं वे वायुमंडलीय नित्रजन स्थिर कर करके हमारी जो मृदा शक्ति है जो मिट्टी की उसको बढ़ा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि मूंग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, और यदि किसान भाई धान गेहूं फसल चक्र के टिकाऊपन को बनाए रखना चाहते हैं तो गर्मा मूंग की खेती अवश्य करें।
4: सर, गर्मा मूंग की खेती तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक परेशानी होती है कि कई बार उपज काफी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में मूंग की फसल से अधिक उपज लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई बहनों को क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, और साथ ही कौन से ऐसे अनुशंसित प्रभेद हैं जिनका चयन कर वो अच्छी

0: अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: गर्मा मूंग में एक बात बहुत ध्यान देने की बात है कि इसमें दो चीज किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तुराई के समय किसान बंधु को मजदूर नहीं मिल पाता है। दूसरी बड़ी समस्या है कि उसमें एक पीली एक बहुत रोग लगता है, पीली चित्त विषाणु रोग। ये दो कारणों के कारण किसान बंधु पहले इस मूंग की खेती से लोग किसान बंधु अलग हट चुके थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे प्रभेदों का विकास हो चुका है कि किसान बंधु जैसे पहले 2-3 तुराई करने पड़ती थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे प्रभेद विकास हो चुका है कि किसान बंधु यदि ये 9 उन्नत प्रजाति जो है, जैसा कि हम बात करेंगे, वर्षा प्रभेद है, किस्म है, जो 68 से 72 दिन में तैयार होती है और इसको लगाने का सबसे अच्छा समय 15 मार्च से 15 अप्रैल है। तो यदि किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो उनको अच्छी उपज मिले ही 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। तथा उसमें सबसे बड़ा चीज है कि जो पीली चित्त विषाणु रोग है उसके प्रति ये प्रभेद सहिष्णु है, तथा इसका जो दाना होता है वो बहुत ही चमकीला होता है। उसी तरह सीखा एक वैरायटी है जो अभी नई वैरायटी है, तो ये इसका भी उपज बहुत अच्छा है, 13 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये किसान भाई ये जो प्रभेद है, ये दोनों प्रभेद आप लगा कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी भी प्रभेद है जैसे HUM-16 जो मालवीय जल कल्याणी के नाम से है, ये 65 से 70 दिनों में तैयार होती है, ये 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। और इसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी, जैसा कि हम बोले थे कि इसमें 3 तुराई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें एक ही तुराई यदि करे किसान बंधु तो उनको उतना उपज प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह एक और वेरायटी है पंचमुख 5, ये भी किसान बंधु लगा सकते हैं। इसमें भी सिंक्रोनस मैच्योरिटी है, पलिया एक साथ पक कर तैयार होती है और पीली चित्त विषाणु रोग के लिए सहिष्णु है और किसान बंधु इसे अपनाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो प्रभेद किसान बंधु लगा सकते हैं उसमें यदि छोटे दानों में उनको चाहिए तो उसके लिए अलग प्रभेद है, जैसे PDM-139 जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है, यह 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसी तरह जैसे बड़े दानों में यदि जाना चाहते हैं तो पूसा विशाल, ये भी 10 मार्च से 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं और इसकी औसत उपज 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जिस लायक किसान बंधु जिस दाना का चाहिए उसके अनुसार वो अपना प्रजाति का चयन कर सकते हैं।
0: सर एक और सवाल कि मूंग के अधिक उपज के लिए कौन कौन से ऐसे जरूरी शस्य क्रियाएं हैं जो किसान भाई बहनों को करने चाहिए?
1: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब इसमें सबसे बड़ा है कि जब हम लोग रबी फसल की कटाई कर लें तो उसके बाद उपरांत खेतों में पलेवा नितांत आवश्यक है, क्योंकि जर्मिनेशन की समस्या बनी रहती है जब मूंग के खेत में। तो एक बार देख लेना है कि हम लोग जो जब बुआई करें तो उस समय पर्याप्त नमी आवश्यक है, तो उसके लिए यदि हो तो एक बार पलेवा कर देने पर हो जाता है कि पर्याप्त नमी आ जाती है। तो उसके बाद दूसरा बार ध्यान देने की है बीज दर, जो गर्मा मूंग के लिए जो बीज दर होना चाहिए उपयुक्त बीज दर है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो जैसे कि हम लोग बुआई करें तो उसके पहले क्या है कि एक बार जैसे कि दलहनी फसल में हम लोग कहते हैं कि FIR सिस्टम, पहले फफूदनाशक जैसे 2 से 2.5 ग्राम कोई भी बेबेस्टीन पाउडर हो उसके साथ बीजोपचार कर लीजिए, और उसके बाद या ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है उससे 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें और उसके बाद बुआई करें। और उसके बाद हो सके तो यदि कटुआ कीड़ा का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरिफॉस दवा आती है तो 6 से 8 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें, उसके बाद राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें। तो सबसे बड़ा है कि बुआई की विधि हमेशा करना चाहिए कि जैसा कि छिटकवा विधि से लोग किसान बंधु करते थे, हो सके तो अब हर गांव में सीड ड्रिल मशीन है या जीरो टिल मशीन है, तो सीड ड्रिल मशीन से जो दूरी है वो 30x10 पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आपको पौधा से पौधा की दूरी रखनी है। यदि पोषक तत्व प्रबंधन यदि करना चाहते थे किसान बंधु, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूंग में क्या है कि एक तरह से जो बैक्टीरिया रहता है वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर पौधे को पहुंचाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम जो फॉस्फोरस है वो दे देना चाहिए। और यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किसान बंधु को करना चाहिए तो यदि हम FIR में जैसे फंजीसाइड से कर लिए, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से कर लिए, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से कर देना चाहिए, तो राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम प्रति 6 पैकेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। और यदि PSB का प्रयोग भी किसान को बीच बीच में करते रहना चाहिए, तो PSB का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोग आजकल किसान ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं,

0: होता क्या है कि अनुशंसित मात्रा से ज्यादा करने के बाद वो खेत में ही पड़ा रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जैसे अनुसूचित भूमि में फॉस्फोरस की उपलब्धता घट जाती है। तो पीएसबी का प्रयोग बीजोपचार में करें अथवा 4 किलो पीएसबी को 50 किलो वर्मी जो सड़ा हुआ गोबर का हो कंपोस्ट में उसमें मिलाकर खेतों में बुआई के समय करने से बहुत ही फायदा होता है। तो ये चीज है। और यदि खरपतवार नियंत्रण यदि किसान बंधु करना चाहते हैं तो रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन जो दवा आती है 30 EC 2 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 72 घंटे बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव कर देने से खरपतवार आपका जो खेत रहेगा वो खरपतवार मुक्त हो रहेगा।
1: सर अब मैं आपसे रोग और कीटों के बारे में जानना चाहूंगी, तो मूंग में ऐसे कौन कौन से प्रमुख रोग और कीट लगते हैं और उनके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: मूंग में जैसे कि हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो प्रमुख रोगों में है वो पीला मोजेक है, मूल गलन है, पर्ण दमे, एथ्रोनोज, सरगोस्पोरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोग जो किसान बंधु अच्छी तरह से जानते हैं पीला मोजेक। जो पीला मोजेक क्या है कि जिन पत्तियों में पीला या पीला रंग के लक्षण दिखाई दे उनके देखिएगा कि आकार भी छोटा हो जाता है। ऐसे पौधों में बहुत कम और छोटी फलियां लगती है। ऐसी फलियों में बीज सुकरा और मोटा होता है और छोटा होता है। यह सफ़ेद मक्खी जो होती है उसी के द्वारा फैलता है। इसीलिए हम लोग को आवश्यक है कि हम लोग जो रोग वाहक सफ़ेद मक्खी है उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो खेत में जो ही आपको इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो एक दवा आती है इमीडा क्लोरपीट 17.8 SL 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, या इमेमेक्टिन बेंजोएट जो अभी नई रासायनिक कीटनाशक आई जो 5% जो 4 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए तो जो रोग वाहक जो सफ़ेद मक्खी है वो उससे छुटकारा पा जाएगा और ये जो रोग है वो जल्दी दूसरे पौधे में नहीं फैलेगा। तो इस छिड़काव को 15 से 20 दिन के अंतराल पर दोहराएं और कुल 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव 24 घंटे के बाद रोग रोधी पौधा आपको कहीं दिखाई दे पीला तो उसको खेत से निकाल कर मिट्टी में दबा दें या जला दें। तो पीला मोजेक रोग ग्रीष्मकालीन फसल में कम तथा वर्षा ऋतु में ज्यादा लगता है। तो रोग से बचाव हेतु जैसे कि अभी हम जो अनुशंसित किस्म बताए तो वो आजकल रोग रोधी किस्म है, तो किसान बंधु को ज्यादा इसका जो रोग रोधी किस्म है उसको लेकर खेती करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा है कि पीला मोजेक रोग पौधों को देखते ही उखाड़ कर जितना जल्दी हो नष्ट कर दें। और दूसरा रोग भी है जैसे फफोला, जैसे एंथ्रेक्नोज है तो, या सरगोस्पोरा है तो इसका उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। तो दूसरा मूंग में जो कीट की समस्या है वो उसमें सुंडियाँ लगती है। तो मूंग की फसल को नुकसान पहुँचाने वाले सुंडियाँ को जो हेलिकोर भरपाई या तंबाकू की सुंडी कहा जाता है, तो इसको यदि आप इसको दूर करना चाहते हैं तो आजकल एक फेरोमोन ट्रैप होता है उसको 5 फेरोमोन ट्रैप अपना एक हेक्टेयर के हिसाब से अपना खेत में लगा दें तो आपको देखिएगा या जो इमामेक्टिन बेंजोएट दवा होती है जैसे 4 ग्राम पर 10 लीटर पानी के में घोल कर उसको यदि आप जहाँ पर भी सुंडिया की समस्या हो तो वहाँ पर एक छिड़काव कर दें तो ये सब रोग और कीटनाशक रोग जो कीट लगती है उससे छुटकारा किसान बंधु पा सकते हैं।
1: थैंक यू सर, आपने बहुत सी उपयोगी बातें बताई। इन बातों का ध्यान रख के और जिन रोगों के बारे में आपने बताया, कीटों के बारे में आपने बताया, उनका प्रबंधन करके हमारे किसान भाई बहन अच्छी उपज पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद किसान बंधु।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब अच्छे से ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है, आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने

का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती हैं और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं, किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि

0: आप ना पैदल चले, इससे बहुत फायदा होता है। और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं। और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं। और नहीं भी नींद आ रही है तो फोन यूज नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी। और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें। और जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं। और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है। और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। Ladies first.
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन।

जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहे। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणु नाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ हॉपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसकी वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है. कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे और कुछ जैविक कीटनाशी भी है, लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका

0: 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीज में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
1: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज मंसरपुर गांव में आया हुआ हूं और मेरे साथ आज हैं ओम, जो कि इंटर में पढ़ते हैं और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित व्यक्तियों को जागरूक भी करते हैं। तो ओम, आप हमें यह बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा मिलती है।
0: जी, और पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: हम पोषण को संतुलित कर उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कमजोरी, थकान, स्वास्थ्य में नहीं होती है तकलीफ, समस्याएं।
0: अगर व्यक्ति दवाई ना खाए और पोषण अपने तरीके से ही लेना चाहे, अपने घरेलू उपाय के हिसाब से ही पोषण को लेना चाहे, तो क्या करेगा?
1: उसे अच्छी साग सब्जियां खानी चाहिए, स्वस्थ और ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उसका संतुलित आहार बना रहे।
0: पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए?
1: आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड प्राप्त करने के लिए आप अंडे, मांस मछलियाँ, डेयरी, फल सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड आपको अंडे और मांस मछलियों, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही से इत्यादि से मिल जाएगी।
0: और आपका अगर आदमी या व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती
1: है? अगर कोई व्यक्ति सही से पोषण ना ले तो उसे बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, खत्म करने की क्षमता कम हो जाएगी उस रोगों से लड़ने की, हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे।
0: आपका महिलाओं को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या क्या समस्या हो सकती है?
1: महिलाओं को सही से पोषण नहीं मिलने से एनीमिया, जैसे यानी खून की कमी, कमजोरी, थकान, बार बार संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन जैसी कई अस्वस्थ समस्याएं हो सकती है। मैं यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित कर।
0: चलिए ठीक है, बच्चों को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या परेशानियां हो सकती है?
1: बच्चों को सही से पोषण ना मिले यानी उनके पसंद की नहीं बल्कि पोषण से रिलेटेड नहीं मिले तो उन्हें बहुत सी समस्या हो सकती है, जैसे शारीरिक विकास में बाधा हो सकती है, कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, मानसिक बौद्धिक विकास में कमी, सीखने और अध्ययन केंद्रता कम हो सकती है और स्वास्थ्य समस्या और कुपोषण संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
0: जी ठीक है। लीन प्रोटीन क्या होता है?
1: लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा यानी फैट, खासकर संतृप्त वसा और कैलोरी का स्तर कम होता है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है। इसके कुछ अच्छे स्रोत में शामिल है अंडे, मछली, स्नेल्स, फालियाँ, कम वसा वाला डेयरी।
0: हमारा कृषि कॉलेज एक कार्यक्रम चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो अपनी क्यारी अपनी थाली क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते?
1: अपनी क्यारी अपनी थाली भारत में खासकर बिहार राज्य में शुरू किया गया एक सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और पोषण युक्त आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिका या छोटी क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों या घरों के पास लगाई जाती है। इन क्यारियों में मौसमी पोषण से भरपूर सब्जियां और फल उगाए जाते हैं।

0: टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज बड़ी इब्राहिमपुर ग्राम में हूँ और आज हमारे साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे प्रशांत कुमार, जो कि स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही रहना होता है इनका, और ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तो प्रशांत जी, आप हमें ये बताएंगे कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आप पब्लिक को क्या जानकारी दे सकते हैं।
5: मनुष्य द्वारा खाए गए सभी चीज़ें पोषण के रूप में काम करती हैं, जैसे दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली इत्यादि सभी पोषण के रूप में कार्य आते हैं।
4: जी, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग,
5: पोषण को हम अपने जीवन में हर एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मसूर दाल, फल सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि।
4: जी, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
5: अगर सही से पोषण आहार ना ले तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी, डायबिटीज इत्यादियों का संक्रमण बढ़ जाता है।
4: और भी कोई समस्या हो सकती है अगर सही से पोषण
5: हो सकती है? रतौंधी हो सकती है, बौनापन हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं।
4: जी, महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
5: महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
4: अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
5: बच्चे को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर उसके साथ। शारीरिक विकास में वृद्धि नहीं होगी, बच्चे बौनेपन के होंगे, खून की कमी, रतौंधी बीमारी, ये सब बहुत सारी संक्रमण और रोग प्रतिरोध की क्षमता घट जाती है सर।
4: जी, तो अगर आदमी को सही से पोषण आहार लेना है तो क्या व्यक्ति अपनी क्यारी, अपनी थाली का प्रयोग कर सकता है?
5: हाँ, बिल्कुल कर सकता है।
4: तो अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं, जो कि व्यक्ति या समुदाय सही से क्या कहता अपना पोषण ग्रहण कर सके और वह स्वस्थ रह सके।
5: देखिए, अपनी क्यारी, अपनी थाली, ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक सरकारी सामुदायिक अभियान है, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। और यह कार्यक्रम अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। इस योजना के तहत स्कूलों में या घर के आसपास आंगनवाड़ी के जितने भी अथी हैं वो सब इनकी जानकारियां दे रहे हैं। और इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है बच्चों को फल, मतलब मनुष्यों को फल सब्जियां, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज ज़्यादा कोशिश करें ये सब खाने की, जिससे लोग तंदुरुस्त रह सकें।
4: जी, तो आज आपने देखा कि प्रशांत कुमार ने पोषण के बारे में और साथ साथ अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में भी अच्छी जानकारियां दी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम और अपना कीमती ज्ञान को प्रदान किया। धन्यवाद।

खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बिल। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके खास कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो उसमें सब्जियों की खेती आय बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया होता है, लेकिन मौसम की मार, खरपतवार, रोग और कीट अक्सर मुनाफे में बड़ी बाधा बन जाते हैं। ऐसे में मल्चिंग विधि किसानों के लिए एक आधुनिक और कारगर तकनीक बनकर उभरी है। मल्चिंग क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाए, किस तरीके के मल्चिंग का चुनाव किया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर शिरीन अख्तर से। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम, आप है उद्यान सब्जी विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि मल्चिंग क्या है?
3: धन्यवाद उमा। आज की जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और सब्जियों की खेती जो है किसानों की आय बढ़ाने की बहुत अच्छा जरिया है और इसमें लेकिन बहुत सारा खरपतवार लगते हैं, रोग लगते हैं जो कि अक्सर मुनाफे को बहुत हद तक घटा देते हैं। तो मल्चिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग वो तकनीक है जिसमें खेत में मिट्टी की सतह को किसी आवरण से ढक दिया जाता है। ये आवरण जैविक भी हो सकता है, जैसे कि सूखी घास हो सकता है, पुआल हो सकता है, फसल की अवशेष हो सकता है, या अजैविक भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक मल्च लगाते हैं, काली शीट या सिल्वर शीट, ये सब लगाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी में नमी बनाए रखना, खरपतवार को रोकना और फसल को अनुकूल वातावरण देना। तो सब्जी की खेती में आय बढ़ाना हर किसान का लक्ष्य होता है, लेकिन मौसम, रोग, कीट और खरपतवार जो है अक्सर मुनाफे को बाधा डालते हैं और मल्चिंग विधि एक आधुनिक खेती की कारगर तकनीक बनकर उभरी हुई है और ये जो है खरपतवार कीटों से सब्जी फसल को बचाती है और फसल की पैदावार भी जो है 20-40% तक बढ़ा सकती है। और टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज या खरबूजा जैसे सब्जियों में मल्चिंग अपनाकर किसान कम लागत और कम सिंचाई में अधिक मुनाफा बहुत कमा सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आप बता रहे थे पैदावार बढ़ाई जा सकती है और मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदा होता है मल्चिंग का?
3: मल्च के जो फायदे हैं वो सबसे बढ़िया जो फायदा है वो मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो जैसे गर्मी होती है तो उस समय पे जो है तापमात्रा भी ज़्यादा होता है और पानी की भी कमी होती है, तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग, फसल जो है सूखने लगता है, मिट्टी सूख जाती है। तो उस समय पे सिंचाई भी ज़्यादा नहीं मिलता है, पानी का थोड़ा सा कमी भी हो जाता है। तो उस समय पे अगर हम लोग मल्च दे के रखते हैं तो मिट्टी की नमी सतह बनी रहती है और साथ साथ में जो है सब्जी फसल में खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखता है और वो फसल को बहुत सारा हानि भी पहुंचाती है। खरपतवार की वजह से रोग भी काफ़ी होता रहता है। तो खरपतवार को हम लोग अगर घटाना चाहते हैं तो उसमें जो काफ़ी सारा लागत लग जाता है, बहुत सारा लेबर इंटेंसिव हो जाता है सब्जी की खेती, उसमें रेगुलरली लेबर निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे जो है हमारा जो है फसल उगाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग अगर मल्चिंग की उपयोग करते हैं तो खरपतवार की वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर हम लोग काले रंग की पॉलिथीन मल्च

0: लगाते हैं खास करके, तो उसमें जो है खरपतवार काफ़ी घटते हैं। और तीसरा चीज़ जो है मिट्टी का जो तापमान है वो भी मल्च से नियंत्रित रहता है, खास करके अगर हम लोग इसमें पुआल वगैरह की मल्चिंग करते हैं गर्मियों के समय पे, तो उसमें जो है मिट्टी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है कम रहता है, तापमान कम रहता है। यहीं पे अगर हम लोग ठंडे में पॉलीथीन मल्च लगाते हैं, प्लास्टिक के मल्चेस लगाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। और साथ साथ में जो है जैविक मल्च अगर हम लोग लगाते हैं, घास हो सकता है, पुआल हो सकता है, या कंपोस्ट भी हो सकता है, तो वो आखिर में लास्ट में जो है मिट्टी में मिलके मिट्टी का उपजाऊ जो क्षमता है उसका भी सुधार करता है। तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब्जियों में ज़्यादातर मल्च हम लोग लगाते हैं और उससे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। और तापमान वगैरह जो है इसका जो है संतुलित रहता है। इसके अलावा जो है नमी क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो सिंचाई का भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो पानी जो है उसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसमें कम हो जाती है। और साथ साथ में जो है मिट्टी से जो पत्तियों पे कीचड़ उछल के आते हैं तो वो समस्या भी कम रहती है। और मिट्टी कहीं ना कहीं पौधे में उछल के आती है तभी जो है पौधे में फफूंद और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उसका खतरा आ जाता है। तो मल्चिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये खतरा भी टलता है, तो रोग की प्रकोप भी कम होती है। साथ साथ में जो है फल की क्वालिटी भी अच्छा होता है, क्योंकि फल डायरेक्ट ज़मीन के या मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है तो बहुत सारा फफूंद उसमें लग सकता है, उसका क्वालिटी भी खराब हो सकता है, उसमें सड़न आ सकती है। लेकिन मिट्टी से डायरेक्ट अगर वो संपर्क में नहीं रहता है, मल्च के ऊपर रहता है, तो वो जो फल रहता है कद्दू वगैरह खास करके हम लोग देखते हैं या टमाटर भी देखते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। साथ साथ में जो है कुछ प्लास्टिक मल्च जैसे सिल्वर कलर के मल्च होते हैं, तो उन मल्च से जो है अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कीड़ा भी कम होता है, सफ़ेद मक्खी वगैरह जो है या फिर माहू होता है इनका प्रकोप भी घटता है।
1: मैम अभी आप अलग अलग प्रकार के मल्च के बारे में बता रहे थे, तो कितने प्रकार के मल्च होते हैं?
0: मुख्यतः मल्च जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक है जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में पोषक तत्व देते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियां हो गया, भूसा हो गया या कंपोस्ट हो गया। और दूसरा है अजैविक या इनऑर्गेनिक जो टिकाऊ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मल्च हुआ या फिर ग्रेवल या पत्थर जो होते हैं इनका भी मल्चिंग हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक या जैविक मल्च में जो है पत्तियां घास आती है जो कि आसानी से उपलब्ध है और कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाते हैं मिट्टी का, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या कोई पेड़ की छाल हो सकते हैं, जो ज़्यादातर बड़े पेड़ों और झाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। भूसा भी हो सकते हैं, हम लोग खास करके सब्जियों की बगीचे में जो है भूसा को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है और मिट्टी को नमी वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो कंपोस्ट से जो है मिट्टी का उर्वरता जो है वो अच्छे से सुधार हो सकता है। अजैविक मल्च में जो है प्लास्टिक शीट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सब्जियों में खास करके टमाटर और मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो प्लास्टिक मल्च लगाने से जो है ठंडे में जो फसल होता है उसमें मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ा देता है, साथ साथ में नमी को भी बरकरार रखता है, तो उसमें सिंचाई का ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं ही पड़ता है। साथ साथ में टमाटर और मिर्च में हम लोग देखते हैं कुकड़ी का प्रकोप होता है सफ़ेद मक्खी से, थ्रिप्स से, एफिड से, तो जो प्लास्टिक या सिल्वर मल्चिंग अगर हम लोग इसमें लगाते हैं, खास करके मिर्च में हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सिल्वर मल्चिंग का, तो वो जो है इसको ये जो सकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया या एफिड हो गया या माहू हो गया, इनको ये दूर रखते हैं और जो कुकड़ी जातीय रोग होते हैं उनको वो दूर रखते हैं। इसके अलावा ग्रेवल या स्टोन जो है ये भी देखते हैं, ये सजावटी जो बगीचे होते हैं उनके लिए उपयोग ज़्यादा होता है। और एक मल्च है जो लैंडस्केप फैब्रिक, तो ये फैब्रिक क्या है, ये जैसे हम लोग शेड नेट वगैरह रख देखते हैं वैसे टाइप का ही होता है, तो इसमें जो है पानी गुजरने देता है ये मल्च, लेकिन उसमें खरपतवार नहीं उग सकता।
1: जी मैम, तो इतने प्रकार के मल्च में एक सही मल्च का कैसे चुनाव

0: करें। तो हम लोग जो है सही मल्च के लिए सब्जी वाले बगीचे में अगर हम चयन करते हैं मल्च का, तो उसमें हम लोग जैविक मल्च उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो है प्लास्टिक मल्च में जो है सिल्वर मल्च का उपयोग बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमको मूल हमारा लक्ष्य है खरपतवार को नियंत्रण करना, तो काले रंग की मल्च, पॉलीथीन मल्च जो है वो बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण भी करती है। और अगर हमारा सजावटी कोई क्यारिया हो, तो उसमें हम लोग लकड़ी के टुकड़े या फिर जो है पत्थर या बजरी जो है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए अगर हम देखते हैं तो टिकाऊ होता है प्लास्टिक मल्च, तो ये अधिकतर उपयोग होता है सब्जी की खेती में।
1: तो मैम, मल्चिंग कैसे अपना सकते हैं?
0: खेत को हम लोग पहले अच्छे तरह से बेड बना लेंगे, उसको पहले निराई गुड़ाई करेंगे, उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर जो है निराई गुड़ाई करके अच्छे से उसका बेड तैयार कर लेंगे। फिर जो है मल्च हम जब करते हैं तो उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाना ज़रूरी होता है, खास करके प्लास्टिक मल्च के लिए। तो प्लास्टिक मल्च शीट जो है ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में प्लास्टिक मल्च के शीट उसमें लगाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पौधा लगेगा उसका जो विधि अनुसार जो दूरी होता है, जिसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस प्लास्टिक मल्च के ऊपर छेद बना लेंगे। छेद बनाने के बाद में जो है हम लोग बाद में पौधे को रोपण करेंगे, पहले मल्च डल जाएगा, उसके बाद में जो है पौधा रोपण होगा जो छेद बनाने के बाद में। और अगर हम लोग जैविक मल्च लगाते हैं तो पहले हम लोग जो है पौधा लगा सकते हैं, उसके बाद में पौधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में हम लोग जो पुआल हो या फिर सूखे घास हो उसको मिट्टी के ऊपर बिछा के उसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और मैम, इससे उत्पादन कैसे बढ़ता है और मुनाफा कैसे इससे ज़्यादा होता है?
0: मल्चिंग अगर हम अपनाते हैं तो सब्जी की पैदावार में हम लोग देखते हैं कि 20-40% की बढ़त हो सकती है, तो ये काफ़ी हद तक बढ़त है। और साथ साथ में जो है फसल जल्दी तैयार हो जाता है, तो जल्दी तैयार होने के लिए अर्ली फसल होता है तो किसान को जो है मुनाफा ज़्यादा मिलता है, बाजार में जो भाव मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। साथ साथ में क्योंकि मिट्टी से डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं रहता है, तो उसका जो फल होता है, फसल होता है, उसका गुणवत्ता भी ज़्यादा होता है। तो गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होने के कारण से जो है बाज़ार में कीमत भी अच्छा मिलता है। और शुरुआती लागत हो सकता है थोड़ा सा लगे, क्योंकि पॉलीथीन मल्च या प्लास्टिक मल्च अगर खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा लागत लगता है, लेकिन अल्टीमेटली सिंचाई भी कम पड़ता है, तो और जैसे आपको निराई गुड़ाई करने का लेबर भी कम पड़ता है, और रोग प्रकोप जो है वो भी कम होता है, इसलिए उसका दवाई भी कम पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो है आपका जो खर्चा होता है खेती का वो कम ही होता है, और क्योंकि फसल का गुणवत्ता ज़्यादा होता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है।
1: यानी कि थोड़ा सा खर्च और उसके बाद मुनाफा काफ़ी होता है, पैदावार क्योंकि अच्छी हो जाती है, खरपतवार के नियंत्रण में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं मल्चिंग के। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी।

0: क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य के किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण

50 से 60 ग्राम हर रोज दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहें। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में. आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से. सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैम.
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है.
1: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है. जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है. प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं. भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती, और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है. राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है. शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं. प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसादन की वस्तु रही है. शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है. शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है. घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है. हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है. आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है. जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि बिहार के भी कुछ जिलों में हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं.
0: जी, ऐसा सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं ज़रा उसके बारे में बताएं.
1: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है. उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है. इस प्रकार यह 2 फसल अवधि ले लेती है. जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास खेत कम है उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप. जो हमारे किसान भाइयों उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं. दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है. यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है. तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है. चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं. इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है.
0: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में.
1: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है. इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है. यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है. इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है. उसी प्रकार

0: बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांथी, NDH-18, NDH-19, जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते।
1: हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है और खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
0: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें, हल्दी के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
1: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
0: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबोकर रखने के बाद छाया में सुखाकर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, के बीज के लिए अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
1: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
0: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें। तथा किसान भाई एक चीज़ें और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें। सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार, जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं, के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है।

0: हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
1: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों और इनसे सुरक्षा के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, साथ ही हल्दी का प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताएं।
0: हल्दी में मुख्य कीट हम किसान भाइयों को बता दें और इसका नियंत्रण हम बता दें कि हल्दी में जो पहला कीट है दीमक या कजरा पिल्लू, यह दोनों कीट पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक। यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स। इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमेडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है, हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाए तथा बर्तन में मुंह पर धान या कापुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे गाट 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाट 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तथा हल्दी का गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी के प्रकंद पूरी तरह से पक चुके हैं। और दूसरा है उबले प्रकंदों को सुखाना। उबले प्रकंदों को सुखाने के लिए प्रकंदों को त्रिपाल या पक्की साफ सुथरा जगह पर धूप में पतली परत में फैला दिया जाता है। इस प्रकंदों को शाम के समय जमा कर त्रिपाल से ढक देते हैं ताकि रात में उस पर ओस न गिरे। हल्दी की उबली प्रकंद लगभग 10 से 15 दिनों में सूखकर तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकंद से सूखी प्रकंद बिल्कुल सख्त तथा तोड़ने पर चट की आवाज करनी चाहिए। सूखने के बाद प्रकंदों में नमी 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उसे लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सके। तीसरा है सूखे प्रकंदों का पालसिंग करना, जो उसके चमक को लाता है, जो आप मार्केट

0: में उसको भेजते हैं, जिसका आपको लगता है कि अच्छे हमको वो उपज किए हैं तो अच्छा उसका वो आपको पैदावार मिला है तो उसका अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए क्या करते हैं कि बाज़ार में हल्दी की अच्छी किस्म लेने के लिए हल्दी को पालसिंग किया जाता है ताकि हल्दी आकर्षक एवं चमकदार दिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रख कर रगड़ा जाता है ताकि छिलका, मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पालसिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पालसिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में, और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगा।

गाय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए।

के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज्यादा पानी हो या फिर 2 बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का, यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की

कमी है यानी कि एनेमिक है, उन्हें भी पीपीएच का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी पीपीएच होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें पीपीएच का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमजोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो, तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को पीपीएच हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। वहीं सबसे जरूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या पीपीएस से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है, कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है, और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर पीपीएच की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और माता का विशेष ध्यान रखें। और

और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: बच्चों कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि में एक खास विषय हम लेकर आए हैं, अदरक की। जब हम बात करते हैं तो इसके सुगंध से ही, जी हाँ, हमारा घर, हमारा माहौल काफ़ी खुशबूदार हो जाता है। और जब इसे सब्जियों में या फिर आप किसी भी पकवान में डालते हैं तो वो स्वादिष्ट तो बन ही जाता है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अदरक की खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अदरक का महत्व और इसकी खेती में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं।
3: मसाला फसलों में अदरक का महत्वपूर्ण स्थान है। अदरक को पौराणिक ग्रंथों में महौषधि के नाम से सुशोभित इसलिए किया गया है क्योंकि यह अनेक बीमारियों का अचूक दवा है, परंतु बवासीर के रोगियों के लिए जहर का काम करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी भूमिगत गांठों का उपयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इस मसाला के गांठों को परकंद कहते हैं। ताजे तथा कच्चे परकंदों को अदरक तथा सूखे परकंदों को सूंठ कहा जाता है। सूंठ मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के अनेक रोगों की अचूक दवा है। भारत में अदरक की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। अदरक की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अदरक की खेती से प्रति इकाई भूमि से अन्य फसलों की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक शुद्ध आय प्राप्त होती है, फिर भी इसकी खेती का विस्तार तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अदरक उत्पादन में बीज पर बहुत अधिक खर्च होता है। 1 हेक्टेयर अदरक बोने के लिए लगभग 18 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज का दाम हम 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर जोड़ें तो लगभग 3 लाख रुपया बीज पर ही खर्च होता है 1 हेक्टेयर में। इतनी बड़ी रकम सभी किसान नहीं खर्च कर सकते हैं तथा जो किसान इसकी खेती करते भी हैं वे बहुत छोटे पैमाने पर। दूसरी समस्या है कि यह 2 फसल अवधि में तैयार होती है, अर्थात इसको तैयार होने में लगभग 8 महीना लग जाता है। तीसरी समस्या है

0: कि इसमें प्रकंड विकलन रोग का बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिसके चलते फसल 85 से 95% तक लगभग नष्ट हो जाती है।
1: इसकी खेती के लिए जलवायु, खेत का चुनाव एवं तैयारी तथा खाद एवं उर्वरकों के बारे में बताएं।
0: अदरक की सफल खेती के लिए गर्म तथा नम जलवायु उपयुक्त होती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से अंकुरण तक साधारण वर्षा, पौधों की शाखीय बढ़ाव के समय नियमित एवं अधिक वर्षा तथा फसल खुदाई से 1 माह पहले मौसम सूखा रहना चाहिए। भूमि वैसा होना चाहिए जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध हो और उसमें जीवांश युक्त पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हो तथा मिट्टी बलुई दोमट हो, जिसमें कि अदरक की उपज अच्छी हो सके। भारी मिट्टी में प्रकंदों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। रबी की इसकी खेत की तैयारी के लिए जब रबी की फसल कट जाए उसके बाद अप्रैल माह में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर, कल्टीवेटर से 3-4 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल बना लें। यह एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसको खाद एवं उर्वरक अधिक मात्रा में चाहिए। साधारणतः 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सरी खाद या कंपोस्ट के अलावा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा खेत जुताई के समय तथा पोटाश की शेष आधी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 50 से 60 दिन बाद निकाय गुराई के समय दें। बुआई के 80 से 90 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौधों के पंक्तियों के दोनों तरफ डालकर मिट्टी चढ़ा दें। फसल अवधि के दौरान 2 बार मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लोहा, बोरन इत्यादि प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। मिट्टी की जांच करा लें ताकि यह हम जान सकें कि इसमें कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी तो नहीं है।
1: बुआई का समय, बीज, प्रकंद का साइज और बुआई के विधि के बारे में बताएं।
0: अदरक की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सही समय पर बुआई करना अति आवश्यक है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां अदरक की बुआई 15 से 31 मई के बीच अवश्य कर दें, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां इसकी बुआई वर्षा प्रारंभ होते ही कर दें। अदरक पर हुए अनुसंधान परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि अदरक का बीज प्रकंद ऐसी फसल से लेना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष रोग नहीं लगा हो। अधिक पैदावार के लिए हमेशा स्वस्थ बीज प्रकंद जिसका वजन 18 से 20 ग्राम हो तथा जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हो का चुनाव करें। बीज प्रकंदों को 3 मिनट तक 0.5% एगालोल या 30 मिनट तक 0.1% सेरेसोन के घोल में डुबोकर उपचारित कर लें। उपचारित बीज प्रकंदों की बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें।
1: इसके बाद बारी आती है निकाई गुड़ाई, सिंचाई, खुदाई, तो इसके बारे में बताएं।
0: साधारणतः अदरक की फसल में खरपतवार की संख्या एवं बढ़ाव को देखते हुए 2 से 3 निकौनी की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम निकौनी बुआई के 45 दिनों बाद, दूसरी निकौनी 60 दिनों बाद तथा तीसरी निकौनी 100 से 120 दिनों बाद करें। सिंचाई की

0: जहाँ तक सवाल है तो प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिन बाद ही कर देनी चाहिए। सामान्यतः अदरक के वानस्पतिक वृद्धि के लिए यदि वर्षा न हो तो 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि खेत में पर्याप्त नमी बना रहे। बरसात के बाद 2-3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। जब फसल तैयार हो जाए तो इसकी खुदाई करनी पड़ती है। अदरक की फसल साधारणतः 7 से 8 महीना में तैयार हो जाती है। अदरक के प्रकंदों से अर्क निकालने के लिए अगाध खुदाई कर सकते हैं। अदरक को बुआई के 5 से 6 माह बाद कच्चा अदरक उपयोग हेतु या बाजार भाव अधिक हो तो खोदा जा सकता है। कच्चे अदरक का भंडारण एवं सोठ बनाने के लिए सदैव फसल पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
1: और अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख प्रभेदों, रोगों एवं कीटों के बारे में जानकारी दें।
0: अदरक की बहुत सारी प्रमुख प्रभेदे हैं, जिसमें कि एक नदिया प्रभेद है जो कि यह पश्चिम बंगाल की वैरायटी है। उसी प्रकार एक मरान है, रियो डी जिनेरो, यह बहुत ही मशहूर वैरायटी है। यह ब्राज़ील देश का वैरायटी है परंतु हमारे यहाँ यह बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। उसी प्रकार सुप्रभा है, सुरुचि है। अब अदरक में कुछ रोग लगते हैं जो कि प्रमुख हैं, मृदुल या प्रकंद विगलन रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकंद सड़ने लगता है, पत्ता झुलस जाता है। दूसरा है पर्ण धर धब्बा रोग, यह भी एक बहुत प्रमुख बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए डाइथेनियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं और यह छिड़काव 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः उसे दोहराते हैं। अदरक में ऐसे कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन इसमें एक है तना छेदक। इसके रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक दवा जो है उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक होता है रीफ रोलर, इसके शिशु जिसे कैटरपिलर कहते हैं हरा रंग का होता है। अदरक की पत्तियों को मोड़कर शिशु उसी के भीतर रहता है और भीतरी पत्ती को खाता रहता है। इसका आक्रमण अगस्त से अक्टूबर तक पाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए अभी बताए गए कीटनाशी दवा इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अतः इस प्रकार से अदरक की खेती अगर किया जा सके तो हम भरपूर आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में और आशा करते हैं आज की इस वार्ता से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: राजू, पिन्नी
3: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?

0: ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हां श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास

0: ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वह ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें। दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी जी जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे हम स्वस्थ रहें।
0: जी,
1: दरअसल जलवायु के कारण हर मौसम में ऐसे फल और अनाज उगते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दुखद है कि प्रकृति को हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता रहती है उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओ कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा।
4: चलते।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ, मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास

0: बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन हैं आप?
0: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: चूल्हा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो चलते हैं।
0: चलो
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
4: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
4: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
4: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
4: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल?
4: नहीं समझी?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर सुनो।

0: बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो। बर्फ के

0: छोले खाते हो है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो है
1: अरे
0: ना।
1: कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
0: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: हाँ, लाओ अम्मा,
1: लाओ अम्मा।
0: लो
1: गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं। हाँ,
0: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
8: Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
9: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
7: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो नहीं। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।

0: काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
1: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
0: हाँ।
1: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
0: हाँ।
1: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
0: हाँ, आने दो, आने दो।
2: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं, रुक जाओ, रुको।
3: कौन हो तुम?
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
5: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर, हम एक चरवाया है।
5: आगे बताओ।
4: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
5: क्या देखा तुमने?
4: शब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
5: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
5: कितने लोग रहे होंगे?
4: शब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
5: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
6: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
7: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
6: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
7: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
6: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
7: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
6: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना

0: घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
0: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी, यस सर।
2: ये मैं इसके चारों ओर।
3: जी सर।
0: उधर से। हाँ
2: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।
0: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
6: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
6: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
6: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
6: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
6: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
6: फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
6: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे।
0: धीरे धीरे।
2: बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
5: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में

0: 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर

बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए।

60 ग्राम हर रोज दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि पक्षियों में होने वाली बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी से सावधान रहे। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, कौवा सहित कई पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। इसके प्राकृतिक स्रोत अक्सर जंगली जल पक्षी जैसे पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में उनके मल, नाक से निकलने वाले स्राव और संपर्क से फैल सकती है। कुक्कुट पालकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियाँ। पोल्ट्री फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ न होने दें। मुर्गियों को खुले में ना छोड़ें और बिना जरूरत के फार्म के अंदर ना जाएं। बाहरी व्यक्तियों का फार्म के अंदर प्रवेश ना होने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक दवा का घोल यानी फुट डीप रखें ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। पोल्ट्री फार्म और आसपास नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करें। फार्म की पक्षियों को बाहरी पक्षियों के संपर्क में आने से बचाएं। दाना पानी के बर्तन रोज साफ करें। पक्षियों को छूने के बाद या फार्म में काम करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। यदि मुर्गियों में असामान्य बीमारी या अचानक मृत्यु दिखे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। मृत पक्षियों को खुले में ना फेंके, उन्हें गड्ढा खोदकर, चूना डालकर मिट्टी से ढक दें। चिकन और अंडा खाने वालों के लिए विशेष सावधानी। अंडे और मुर्गी के मांस को पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करें। अंडा और चिकन हमेशा पूरी तरह पकाकर ही खाएं। सामान्यतः बर्ड फ्लू का वायरस लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह पका हुआ अंडा और चिकन खाना सुरक्षित है। आम जनता के लिए विशेष अपील कि मरे हुए पक्षियों को न छुएं, न उठाएं और न ही उन्हें फेंकें। यदि कहीं बीमार या मरे हुए पक्षी दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग को सूचित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। ध्यान रखें कि भारत में वर्ष 2006 से बर्ड फ्लू के मामले पक्षियों में पाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका संक्रमण अभी तक नहीं पाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान बिहार पटना के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612226049 पर संपर्क करें। ध्यान दें, दूरभाष नंबर है 0612226049। सूचना समाप्त हुई। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, नैनो फर्टिलाइज़र. इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में. और साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है, इसका उपयोग आपको किस तरह करना चाहिए और भी इससे जुड़ी बातें. तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. और नैनो फर्टिलाइजर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं.
1: तो नैनो फर्टिलाइजर यह बहुत सूक्ष्म कण से बनता है और इसको बनाने के लिए एक विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसकी जो है ना, जो नैनो फर्टिलाइजर या नैनो उर्वरक जो बनता है, बनाने के बाद हम उसका जो है ना सारा पैरामीटर का स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी सोलेबिलिटी क्या है, मतलब घुलनशीलता क्या है, उसका जो है ना धारण क्षमता क्या है. तो यह सब बातों को हम लोग बहुत विशेष ध्यान देते हैं जब नैनो उर्वरक बनाते हैं, तभी एक पूर्ण नैनो उर्वरक की परिभाषा प्रासंगिक हो सकती है.
0: और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताएं.
1: देखिए, आज की जो परिस्थिति है, जैसे किसान भाई जो जितने भी हम लोग के पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, किसान भाई जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जैसे नैनो यूरिया हुआ या अभी इफको के द्वारा जो बनाया गया है नैनो यूरिया, या और सब भी बनाया गया है, और जो हमको प्रापरंगत जो पहले से भी जो हमको जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोगों ने यूज किया या किसान भाई यूज करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ खामियां दिखाई पड़ रही है. जैसे कि हम एक छोटा उदाहरण लेंगे कि यूरिया जब की बात हम करते हैं, तो यूरिया जब हम खेत में यूज करते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम जो मात्रा होती है वह पौधों के उपयोग में नहीं आ पाते. मतलब हम यहाँ यह बता सकते हैं कि जो यूरिया हम यूज करते हैं, तो 40-60% तक यूरिया जो है ना बेकार चला जाता है खेत में. तो जिससे क्या होती है कि इससे बहुत हानि होती है कि उसमें जो है ना हमारे जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो धारण क्षमता है उसमें परिवर्तन हो जाता है. उसके बाद यही अधिक मात्रा में जो यूरिया यूज करते हैं वह पूरा वाटर सिस्टम में चला जाता है, जिससे कि बहुत तरह के साइंटिफिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन होते हैं, जिसमें कि पाउंड वगैरह में बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन होने से अलगी सवाल वगैरह का जो बर्भार है बढ़ जाते हैं, और जिससे कि जो मुख्य पौधे होते हैं तालाब में उसको जो है ना उर्वरक और लाइट जो है ऊपर से आते हैं वह भी नहीं मिल पाता. अंतोगत उसका जो है ना डेथ होने लगता है, उसका जो है ना क्षय होने लगता है. तो इस तरह को देखते हुए कि जो अभी के परिप्रेक्ष्य में जो नैनो उर्वरक आया है, तो यह इसकी जो मात्रा है बहुत कम होती है इज कम्पेयर टू जो हम जो यूरिया यूज करते हैं. जैसे कि हम एक छोटा उदाहरण देंगे जिससे कि समझने में बहुत आसान होगी. जैसे कि हम एकड़ वगैरह में 100 केजी जब हम यूरिया यूज करते हैं, तो यहाँ एक आधा लीटर का जो नैनो यूरिया है वह पूरा उपयोग हो सकता है. तो मतलब 100 केजी यूरिया यहाँ आधा लीटर नैनो यूरिया के बराबर हो जाता है. तो इसलिए इससे जो है ना किसान भाइयों को जो ले जाने का खर्च है वह भी कम हो जाता है. दूसरी बात है कि जब इसका देखेंगे कि इसका कॉस्ट या इस

0: कितने खर्च होते हैं, तो उसमें भी जो है ना अगर हम कंपेयर करेंगे यूरिया से, तो इसमें जो है ना जो खाद की मात्रा है बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काम करता है, तो जिससे कि इससे मात्रा जो है ना कम हो जाती है और उसी प्रोपोर्शन में उसका जो है ना मूल्य भी कम हो जाते हैं।
1: ये कैसे बनते हैं इसके बारे में बताएं।
0: यह जो है इसको बनाने का बहुत तरह के तरीके होते हैं, जैसे कि हम इनके कैप्सुलेशन करते हैं, और या तो कभी कभी क्या करते हैं कि जब नैनो पार्टिकल या सूक्ष्म कण बनाते हैं तो वह डायरेक्ट हम जो है ना नैनो उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम नैनो जिंक बनाते हैं या नैनो कॉपर बनाते हैं या नैनो आयरन बनाते हैं, तो या इसको हम जो है ना डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर हमको ध्यान देना है कि जब हम बनाते हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि अपने पास कौन कौन जो है ना बनाने की मटेरियल उपलब्ध है, मतलब कि कॉस्ट हमको देखना है कि किस किस में कम से कम कॉस्ट में यह बन पाता है। और दूसरा है कि इसको बनाने का है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन भी करते हैं, तो जैसे कि हम नॉर्मल फर्टिलाइज़र लेते हैं, फिर उसमें जो है ना नैनो कण का जो है ना इनकैप्सुलेशन कर देते हैं उसके ऊपर से, तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे ऊपर से इनकैप्सुलेशन करते हैं तो उसका जो है ना धारण क्षमता बढ़ जाती है, और इसके साथ ही साथ जब वह खेतों में उपयोग किया जाता है तो बहुत धीरे धीरे पौधों को उपयोग रिलीज करता है, जिससे कि पौधा उपयुक्त समय में सही नैनो उर्वरक को उपयोग में ले पाते हैं, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नहीं तो अधिकतर जो यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर, जो नॉर्मल जो नैनो यूरिया वगैरह यूज करते हैं, उसका लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस केस में हम जो है ना इसको यूज बहुत कम करते हैं, ताकि इसकी क्षमता जो है ना इतनी अधिक होती है कि इसकी सरफेस एरिया इतनी अधिक होती है कि बहुत कम मात्रा में बहुत अधिक उसका उपयोगिता हो जाता है। तो इसलिए इसका बनाने का जो है ना सरल तरीका यह होना चाहिए कि जो अपने पास मटेरियल है, जो अपने पास उपलब्ध है, उस तरीका को अपनाएं, जिससे कि आउटपुट या कास्ट जो होगा वह कम से कम हो।
1: जी, इसका उपयोग किस तरह करेंगे इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, सबसे पहले है कि हम यह सलाह देंगे किसान भाइयों को यहाँ पे कि जैसे ही आप नैनो यूरिया की बात करते हैं या नैनो जिंक की बात करते हैं, नैनो कॉपर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को यह सलाह देंगे कि किसान भाई सबसे पहले जो है ना खेत में जो क्या न्यूट्रिएंट का स्टेटस है ज़रूर एक बार जांच कराएं। कि जैसे मान लीजिए कि हम छोटा उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसान भाई के खेत में पहले से ही बहुत मात्रा में जिंक है, तो फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे नैनो जिंक का उपयोग करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला उसका तरीका यह है कि किसान भाई हर तरह से देख लें, खेत में टेस्ट करा के देख लें कि कौन कौन उर्वरक की मात्रा कम है, कौन कौन उर्वरक की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस जिस उर्वरक की मात्रा कम हो उसी का, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रेट है, फॉस्फेट है या जिंक है, इसकी मात्रा अगर कम है खेत में तो हमको उसी का जो है ना कम्बिनेशन में नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात है कि उपयोग यह पर भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का जो है ना किसान भाई क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ जो है क्रॉप होते हैं ना उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उर्वरकों की, किसी किसी में कम होता है, तो यह भी ध्यान दे के कि खेत की स्थिति क्या है। जैसे जब हम नैनो उर्वरक का उपयोग करें तो उससे पहले यह देखें कि जो है ना मतलब इससे पहले हमने किस क्रॉप को ग्रो किया था, कोई दलहनी फसल लिए थे या कोई सीरियल क्रॉप का, जैसे कि राइस है या मक्का है, किस तरह का जो है ना हमने क्रॉप उसमें उपयोग किया था। तो यह सब सारे चीज़ को देखते हुए ही किसान भाई जो ज़रूरत हो उतना ही नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है। अगर किसान भाई थोड़ा भी इसका लेंगे तो इसका

0: भाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है ना इसमें बुद्धिमता यह है कि सबसे पहले खेत की जांच जरूर करा लें, उसके बाद जब नैनो उर्वरक का उपयोग करें पूरी तरह से उसमें कन्फर्म हो जाएं, पूरी तरह से जांच कर लें और पूरी तरह से उसका उपयोग करने का तरीका जान लें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम किसान भाई को सलाह देंगे कि उपयोग करने से पहले जरूर उसकी पूर्ववत जानकारी प्राप्त कर लें।
1: जी, उपयोग करने से पहले तो आपने बता दिया है, और क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बात है?
0: ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जैसे कि जब हम नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहें तो समय भी देखें कि किस समय हम किसान भाई उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत छोटे मात्रा में भी लेने से इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो अगर जैसे कि जनरली सवेरे या शाम में जिस समय की जो है ना हवा वगैरह कम से कम हो, उस समय अगर इसका उपयोग किया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि छोटी मात्रा है, इतना कम मात्रा है कि कहीं अगर एक बूंद भी अगर नैनो उर्वरक खेत में जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो हम यूरिया यूज करते हैं। तो यह सब जितने भी परिस्थिति हैं उसके बाद जरूर उसके लिए अच्छे नोजल जो उपयोग करते हैं, छिड़काव जो है ना उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो छिड़काव हम करेंगे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में पानी लेके छिड़काव करें, ताकि उसका जो है ना कम अगर मात्रा लेंगे तो उसकी मात्रा एक जगह ज़्यादा हो जाएगी और उसका प्रभाव हो सकता है कि विपरीत भी हो। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में पानी उसके साथ लें और पानी को प्रॉपर मिक्स करें, ऐसा नहीं कि किसान भाई जल्दीबाजी में कर लेते हैं, तो छोटे अमाउंट से लें पानी, फिर उसको बड़े टैंक में पानी लेके उसका पूरा छिड़काव करें।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जाना किसान भाइयों नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में, कैसे उपयोग करें, क्या कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, फ्रिक्वेंसी यही 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है, और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर

0: आशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और किसान भाइयों, अभी उर्वरक बहुत ही ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर जैव उर्वरक की बात करें तो ये बहुत ही फायदेमंद है फसलों के लिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी फसलों को उगाने में वो सार्थक हो सके। तो इसी विषय को लेकर, यानी कि उर्वरक के प्रयोग विधि को लेकर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं आज डॉक्टर AK झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों और श्रोताओं को आप ये बताएं कि उर्वरक क्या है, सही मायने में इसका मतलब क्या है?
1: उर्वरक वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ज्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ यूरिया। यूरिया क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। NH2CO NH2 हम लोग रासायनिक फॉर्मूला कहते हैं, यानी एक अमाइड वाला ये रसायन है। और इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में है, यानी 40% है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट भी एक केमिकल है, एक रसायन है। और इस रसायन में आपको 20% उसमें जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट ये एक रसायन है। इस रसायन में लेकिन मजे का जो है क्या कहते हैं आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस है।

0: नाइट्रोजन भी देखते हैं तो इसमें फास्फोरस 46% है, नाइट्रोजन भी 18% के आसपास है। तो कहने का मतलब यह एक रासायनिक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कुछ खास तरह के, मतलब एक या कुछ खास पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वह एक रासायनिक उर्वरक होता है।
1: जी, अब ये उर्वरक की बात होगी, रासायनिक उर्वरक की बात होगी, लेकिन जो जैव उर्वरक हैं वो क्या होते हैं?
0: देखिए, जैसे नाम है वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे। अभी हमने बताया है आपको कि उर्वरक ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देता है।
1: जी,
0: इसी तरह से यदि कोई जीवित पदार्थ इस काम को कर सकता है तो वो जैव उर्वरक कराएगा। अब उतना तो नहीं कर सकता है जितना ये रासायनिक उर्वरक देता है, लेकिन इसमें भी मजे की मात्रा सप्लाई करने की क्षमता होता है। अब जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम कर सके, जैसे आप राइजोबियम का ही कल्चर डालते हैं, ये क्या करता है राइजोबियम कल्चर, जो आपको देखिए तो यह गांठ बनाएगा दलहनी फसल में, दलहनी फसल में गांठ बना करके उसको नाइट्रोजन देने का काम करेगा। इसी तरह से मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, वहां पर भी नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन देने के लिए कई दूसरे हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर है या जो स्पाइरलम है, तो ये एजोटोबैक्टर का भी वहां पर आप एक इनाकुलेशन करते हैं, जो सीड है उस सीड के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, तो या आप उसको उपचार करते हैं, तो यह उपचार करने से यह क्या होगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। इसी तरह से जैसे फॉस्फोरस घुलनकर है, फॉस्फोरस आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो फॉस्फोरस पौधे को नहीं मिल पा रहा है। जैसे नाइट्रोजन में हमने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन ये पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमको ऐसे रूप में परिवर्तित करना है कि पौधे को मिल जाए, वही ये काम करता है। यही काम आप देखते हैं कि यूरिया की फैक्ट्री है, यूरिया की फैक्ट्री में नेफ्था नाम के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नेचुरल गैस को यूज करते हैं, और वहां पर 300-400 डिग्री टेम्परेचर यदि आप लगाते हैं तब जाकर के वहां पर वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि पौधा उसको ले सके। लेकिन यही काम यदि जैव उर्वरक में देखें तो जैव उर्वरक में यह काम जो आपका मुश्किल से कितना खेत का टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, यही होगा, और उसी पर वो काम करने लगता है। क्यों करने लगता है और कैसे करने लगता है? क्योंकि इस दलहनी फसल में या दूसरे फसल में आपको जो उस सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर में खास तरह के एंजाइम है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के चलते यह कम तापक्रम में ही यह प्रक्रिया करने लगती है और यह आपको नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है। यही हम फास्फोरस घुलनकर की बात कर रहे हैं कि फास्फोरस हमारी मिट्टी में बहुत है, लेकिन वो फास्फोरस पौधा को नहीं मिल पा रहा, फिक्स हो गया हुआ है, स्थिरीकृत हो गया हुआ है, तो उस फास्फोरस को यह पुनः जो है क्या कहते हैं ऐसे रूप में कर दिया, यानी उसको घुला दिया, नाम है फास्फोरस घुलनकर, यानी उसको घुला दिया, तो ऐसे इस रूप में कर दिया कि उस फास्फोरस को पौधा ले सकता है। तो जैव उर्वरक में और उर्वरक में यही चीज मतलब अंतर है कि जो आपका रासायनिक पदार्थ है जो उर्वरक का काम करे, यानी कुछ पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे, जैसे हमने बताया, जैसे आपको यूरिया है एक ही तत्व दिया, लेकिन डीएपी में देखिए दो तत्व मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस दो मिल रहा है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहा है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों मिल रहा है, कहने का मतलब कि कुछ ही तत्व दे सकता है, 1, 2, 3 या कुछ गिने चुने ऐसे तत्व जो है वह आपूर्ति करता है रासायनिक उर्वरक, लेकिन है यह रसायन। लेकिन जैविक उर्वरक एक जैविक पदार्थ है जो कि इस सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करते हैं।
1: अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: अब देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा, जैसे नाइट्रोजन देने वाले खाद हैं जिसको नाइट्रोजनी खाद कहते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोजन देने वाले कुछ खाद हैं, तो वह जो है क्या कहते हैं उसका यूज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, तो उसको देने का अलग तरीका है। जो फॉस्फोरस वाले हैं या पोटास वाले खाद हैं उसको डालने का अलग तरीका है। वास्तव में देखिए एक सिद्धांत यहां पर है, जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व मिट्टी में, आपको इसको दो शब्द जानना पड़ेगा किसान भाइयों को, एक कहते हैं मोबाइल, एक कहते हैं इमोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब जो आसानी से मिट्टी में इधर से उधर चला जाता है वो मोबाइल हुआ, जैसे नाइट्रोजन मोबाइल है, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास मोबाइल नहीं है, इमोबाइल लेस मोबाइल है। तो जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी जो मोबाइल है उसको कई बार में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक ही बार में प्रयोग कर दीजिएगा तो जो पौधा अभी लिया और नहीं तो वो वहां से लॉस कर जाएगा, लीच कर जाएगा, दूसरे जगह चला गया, तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन वाले खाद को आप देखते हैं कि कई बार में प्रयोग करते हैं, उसको जनरली आप देखिए धान में, गेहूं में, इस समय क्या

0: अनुशंसा किया जाता है, या मक्का में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं आधी मात्रा आप डाल देते हैं, कब, जब खेत का बुआई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं, गेहूं यदि धान है तो रुपाई करते हैं, तो गेहूं है तो आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आधी मात्रा को डालना चाहिए। एक महीने के बाद गेहूं की बात यदि हम करें तो फिर एक महीने के बाद आप जो है क्या कहते हैं उसकी एक चौथाई मात्रा को डालते हैं, फिर दूसरे महीने के बाद आप एक चौथाई मात्रा को यूज करते हैं। यहां पर भी यदि आप मक्का में भी देखिए तो मक्का में भी आप आधी मात्रा उसी समय शुरू में ही प्रयोग कर देते हैं, और जब घुटने भर का हुआ उस समय जो है क्या करते हैं आप फिर 25% मात्रा प्रयोग कर देते हैं, और जब टेस्टिंग का समय आता है उसके पहले आप देखते हैं कि ये आप दूसरी मात्रा मतलब जो 25% बचा हुआ है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फास्फोरस और पोटास है यह मिट्टी में ज्यादा मोबाइल नहीं है, इसीलिए आप देखते हुए कि फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा है कि यह खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही डाल दीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मुश्किल से भाई एक सीजन में कितना टाइम होगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना कहीं क्रॉप होगा, तो वह थोड़ा सा मोबाइल होगा, तो कुल मिलाकर के जड़ के पास जिसे आसानी से पहुंच सके, और जड़ के पास यदि पहुंच गया तब जाकर के पौधा इसे ले पाएगा, इसीलिए इसका प्रयोग आपको बुआई के समय या रोपाई के समय ही करनी चाहिए।
1: जी, अब बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसकी प्रयोग विधि क्या, इसे कैसे प्रयोग करेंगे?
0: देखिए ऐसा है कि इसका प्रयोग का कई तरीका है, तो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में आप प्रयोग करने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप जो बीज है बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 10 किलो बीज है, उस पर आप आधा लीटर 50 ग्राम उसमें गुड़ या चीनी डाल दीजिए और उसको पानी को घोल गर्म कर दीजिए तो घुल जाएगा, जो चीनी है या गुड़ है वो घुल जाएगा। वो 10 केजी बीज पर आपने डाल दिया, अब ये चिपचिपा बन गया, आप इसके ऊपर आपने डाल दिया, उसी में 200 ग्राम का कल्चर का पैकेट है, अब तो लिक्विड कल्चर भी आने लगा है तो सॉलिड बेस्ड कल्चर है, वो आपने डाल दिया और इसको हल्के हाथ आपने इसको मिला दिया, हल्के हाथ मिला करके जिससे उसके ऊपर एक परत बन गई, तो आप परत बन गया इसको आपने छाया में सुखा लिया, सुखा करके डाल दिया। लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो मान लीजिए बीज उपचार करना चाहते हैं उसके लिए भी, कीड़े के लिए या फफूंद के लिए, जैसे मान लीजिए ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रहे हैं, हाँ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो राइजोबियम से भी करना चाहते हैं, पीएसबी से भी करना चाहते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड से भी करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड से भी करना चाहते हैं
1: जी।
0: तो अब वो कैसे करें, तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से यानी फफूंदनाशी यदि कोई है तो फफूंदनाशी से उपचारित कीजिए, उसके 1-2 घंटे के बाद तब इंसेक्टिसाइड से आप उपचारित कीजिए, उसके बाद जो पीएसबी है फास्फोरस घुलनकर बीजाणु उसके कल्चर से उपचारित कीजिए, अंत में जो नाइट्रोजन वाला है नाइट्रोजन वाला से उपचारित कीजिए। तो यह FIR के सिद्धांत पर उसको उपचारित कीजिए। बहुत लोग उसमें नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, तो बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं, अब वो जो है मिट्टी में डालना चाहते हैं, तो मिट्टी में डालने के लिए उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 200 ग्राम से आपको पूरा देख रहे हैं कि 10 केजी बीज उपचारित हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको प्रति एकड़ 3-3.5 केजी के आसपास आपको कल्चर डालना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और या बालू ले लीजिए, क्योंकि उतने से तो आप पूरे खेत में छिड़क नहीं पाएंगे, उसमें मिला करके उसे छिड़क दीजिए। लेकिन अब जैसे कंद वाली फसल है उसमें आप करना चाहते हैं, उसको उपचार करना चाहते हैं, तो कंद वाली उसमें एक किलोग्राम कल्चर लिए, उसको 15 लीटर पानी में जो है क्या कहते हैं 4 लीटर पानी में आपने घोल दिया, अब घोल करके उसमें डुबा करके छोड़ दीजिए 15 मिनट, उसके बाद निकाल करके उसको उपचारित कर लीजिए। बहुत आदमी सीडलिंग का उपचार करते हैं, यानी जो आपका बिचड़ा है बिचड़ा का उपचार करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आप एक किलोग्राम कल्चर लीजिए 15 लीटर पानी में ले करके घोल करके आप उसके जड़ को उसमें डुबा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अब उसके बाद उसमें से निकाल करके तब आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने बीज में बायोफर्टिलाइजर का या अपने खेत में खेती में आप बायोफर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। नाइट्रोजन वाली उर्वरक की बात कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो इसके यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए?
0: देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया है कि जो आपकी नाइट्रोजन वाला खाद है इसका यूज एफिशिएंसी काफी कम होता है। अभी हमने बताया भी है कि इसमें जो है जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं नाइट्रोजन वहां से बह करके निकल जा रहा है, तो अब नाइट्रोजन यदि यहां से बह करके निकल जा रहा है तो इसके लिए तो एक तो पहली बात, पहले प्रिल यूरिया चलता था, प्रिल यूरिया यानी सीधे एक सामान्य जो यूरिया था वो, अब आजकल बाजार में तो प्रिल यूरिया वाला ज्यादा चक्कर है नहीं, सरकार ने कुछ किया है कि अब नीम कोटेड यूरिया आ रहा है या सल्फर कोटेड या लैक कोटेड यूरिया आ रहा है, तो इससे क्या होता है इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़

0: जाती है
1: जी।
0: तो उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी कि धीरे धीरे इसके नाइट्रोजन बह करके निकलेंगे, तो फसल को तो पूरे समय में जरूरत है, तो वो धीरे धीरे निकल करके आएगा तो उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो काम ये आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे धान वान की फसल में मान लीजिए आपके पास ये सब नहीं है, तो वहां मड बॉल बना करके, यानी कि आप तालाब की मिट्टी लिए और उसके बीच में यूरिया डाल करके गोला बना करके कई कई जगहों पर आपने छिड़क दिया, उससे भी आपका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब एक चीज आ गया हुआ है आजकल, उसको कहते हैं लीफ कलर चार्ट। तो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं वो, जैसे धान की फसल में यदि हम प्रयोग करते हैं तो 14 दिन पर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 14 दिन के बाद से आप जब तक आप दाना नहीं भर रहा तब तक आप उसका प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम खेत में जाके खड़ा हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और खेत में जाके खड़ा हो गया और इस ढंग से खड़ा होते हैं कि वहां पर हमारे शरीर की छाया उस पेड़ पर पड़ती रहे। वो जो लीफ कलर चार्ट है उसमें 6 छोटी छोटी पट्टी बनी हुई है, खूब गहरे हरे रंग से लेकर के हल्का पीला हरा रंग तक। अब उससे जिससे कलर मैच हमारा पत्ती का कर रहा है, 10 पौधा हमने लिया, 10 पौधा में कोई लकड़ी गाड़ दीजिए जिसे पहचान में आ जाए कि हाँ भाई यही पौधा हमने लिया था। अब वहां पर कलर को आपने मिलान कर लिया, अब उसमें जो 4 नंबर है वो क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। यदि आपको 50% या उससे ज्यादा पौधे 4 के नीचे है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मिल रहा है, तो वहां पर आपको एक कट्टा यानी 50 केजी आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर डालना है। तो उसमें होता क्या है कि जब जब उसे भूख लगी है तभी तभी आप नाइट्रोजन डालते हैं। गेहूं के लिए भी आ गया लीफ कलर चार्ट, तो अब जो है क्या कहते हैं आपको कम उसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा और यूज एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। तो ये सब उसके बाद जो धान की फसल में करते हैं वहां पर हम चाहते हैं अमोनियम फॉर्म में ही हो, तो अमोनियम फॉर्म में रोकने के लिए आप उसमें एनसर्ब नाम का नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर आता है उसका प्रयोग करेंगे तो यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, धान की फसल में भी दूसरी फसल में भी आप बढ़ा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं हमारे किसान भाई अब आगे से अगर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, जो निर्देश आपको दिए हैं, दिशा निर्देश दिखाए हैं, तो आशा करते हैं कि आप उस प्रकार चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से उर्वरक का प्रयोग करेंगे और आपकी फसल अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करेगी। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: तन लागे बूंदिया
2: थोड़ा जान के बढ़े।

0: तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएस भी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये
1: जी
0: तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार। लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए, वो सबसे बढ़िया है।
1: जी तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाजार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी का स्वागत है, और मैं करती हूँ स्वागत, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। हमारे किसान भाइयों के लिए हम कुछ उन्नत बातें लेकर हर रोज आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज भी हाजिर हैं, और हमारे साथ आज एक खास एक्सपर्ट, बिल्कुल हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं खास एक्सपर्ट। तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में, और साथ ही मैं आपको बता दूँ ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। रबी फसलों की बात अभी करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी ज़रूरी है कि हम इन फसलों को इन खरपतवारों से कैसे बचाएं, यानी कि इनका प्रबंधन कैसे करें। तो जी हाँ, सही समझा आपने, आज का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन। और आज हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस पर। और आपको मैं बता दूं कि रबी फसलों में जैसे कि गेहूं, मक्का, चना, मटर, मसूर और सरसों, इन सभी जो फसल हैं इनसे जुड़े बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि गेहूं जो है फिलहाल तो हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है, और हमारे किसान भाई भी काफ़ी मेहनत करते हैं इन फसलों के लिए। तो जहाँ तक गेहूं की बात है, तो इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: गेहूं का जो उत्पादन है खरपतवार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। देखा गया है कि गेहूं की फसल में बुआई के 30 से 40 दिन तक खरपतवार मुक्त होना चाहिए, अर्थात बुआई से लेकर के 35 से 40 दिन तक खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं तो इसे उत्पादन में गिरावट देखी गई है, और उत्पादन में गिरावट 35 से 40% तक महसूस की जाती है। गेहूं के जो मुख्य रूप से खरपतवार हैं, अगर हम इन खरपतवारों को 3 ग्रुप में बांटें तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुख्य खरपतवार जो है गेहूँ का मामा और जंगली जई है। गेहूँ का मामा जो है गेहूँ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, और जो है गेहूं से मिलता जुलता होने के कारण शुरू के अवस्था में इसको पहचान पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है, और उससे हम उसको पहचान कर सकते हैं। फिर बाद में जब उसमें फूल आने लगता है तो वो फूल और उसकी बालियाँ अलग होती हैं, छोटी होती हैं, और दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे अलग आसानी से पहचान जा सकता है। लेकिन शुरू में केवल 2 लक्षण हैं, एक उसका गांठ जो है पिंकिश कलर का होता है, और उसमें गेहूं की तुलना में ज़्यादा टिलर्स कर जाता है, शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं, इस तरह से उसको पहचान सकते हैं, झाड़ी नुमा दिखता है। दूसरा प्रमुख खरपतवार है जंगली जई। जंगली जई भी गेहूं की तरह ही मिलता जुलता रहता है, और बस इसका पहचानने का वही तरीका है कि शुरू के अवस्था में ये बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकल जाती है, टिलरिंग कर जाता है, और बाकी जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुँचता है, फ्लावरिंग स्टेज में पहुँचता है, तो उसमें इसकी जो जंगली जई जो फ्लावर आता है तो उसे हम अलग ढंग से पहचान लेते हैं। तो शुरू के अवस्था में पहचानना बड़ा मुश्किल है, किसान भाई लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए इनका खरपतवार, इन खरपतवारों को समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे ग्रुप में अगर हम खरपतवारों को बांटें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें बथुआ है, कृष्णनील है, पर्थेनियम है, और बहुत प्रकार की घासें हैं जो चौड़ी पत्ती वाली हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हानि होता है। और तीसरा जो है पेरेनियल और जो है मेथोमोथा कुल का खरपतवार है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि हैं। तो देखा जाए तो सबसे अधिक जो हानि होता है वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार अर्थात गेहूं का मामा और जंगली जई से बहुत ज़्यादा हानि होता है। तो हम गेहूं को अगर हम खरपतवार की स्थिति को

0: ध्यान में रखते हुए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ये जरूरी है कि हम देखें कि किस प्रकार का खरपतवार है। जैसे अगर हमारे गेहूं के खेत में केवल और केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसा कि हमने पहले बताया चौड़ी पत्ती वाले में जंगली पालक है, कृष्णनील है, बथुआ है, पार्थेनियम है, ये सब प्रकार के घासें हैं, तो सिर्फ हमको सस्ती दवा 2,4-D 2,4-D दो ग्रुप में आता है, 2,4-D थायलिस्टर भी होता है और 2,4-D जो है बेटेबल पाउडर भी होता है। दोनों में से जो भी हमारे पास दवा उपलब्ध हो उसको लिया जा सकता है। और इसका 600 ग्राम सक्रिय तत्व, 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। इस दवा को 2,4-D को हम जो है 600 से 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं, या हम 1,000 लीटर पानी तक भी घोल सकते हैं। तो जो 600 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D दवा है, चाहे आपका लिक्विड वाला इथाइल एस्टर हो या बेटेबल पाउडर हो, कोई भी ले लीजिए, 600 ग्राम सक्रिय तत्व हम लेते हैं और इसको घोल करके जो है 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है। अब बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद, जब खेत में हल्की सी नमी होती है या यूँ कहें पहली सिंचाई के ठीक बाद, हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इस प्रकार जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो लगभग लगभग 80% नियंत्रण में आ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर हम अगर बात करें गेहूं के दूसरे ग्रुप के खरपतवार को, तो सकरी पत्ती वाला खरपतवार है, जिसमें हमने बताया आपको कि जंगली जई है, गेहूं का मामा है, प्रमुख रूप से ये सब उसमें खेत में होते हैं। तो इनके सफल नियंत्रण हेतु एक बाजार में दवा आती है आइसोप्रोट्रान। आइसोप्रोट्रान केमिकल है, इसका 750 ग्राम से 1,000 ग्राम अर्थात 0.25 किलो से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है। तो आइसोप्रोट्रान बाजार में आइसोगार्ड, एरिलान, एरिटॉन इत्यादि नाम से मौजूद है, जो 75% का वेटेबल पाउडर है। तो इसका जो बाजार का प्रोडक्ट है वो 1 किलो से 1.25 किलोग्राम पर्याप्त होता है। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25 दिन बाद जो है हल्का नमी होने पर खेत में हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, गेहूं का मामा है, जंगली चई है, ये नियंत्रण में आ जाते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि चूंकि हम लगातार फसल उगाते जा रहे हैं, तो किसी भी खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार या सकरी पत्ती वाला खरपतवार नहीं आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा होते हैं। चौड़ी पत्ती का भी खरपतवार रहेगा, सकरी पत्ती का भी खरपतवार रहेगा और मोथा कुल का भी खरपतवार होता है, और साथ साथ पेरेनियल खरपतवार जैसे हिरन खुरी है, मोथा है, दूब ग्रास है, ये सब भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है खरपतवार नाशी दवा डालना चाहिए। इसके लिए मेट सल्फुरान एक दवा है, मेट सल्फुरान है, सल्फो सल्फुरान है, इन सब का व्यवहार करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सल्फो सल्फुरान अगर हम लेते हैं मार्केट में तो लीडर के नाम से उपलब्ध है, जिसका 25 ग्राम सक्रिय तत्व, क्योंकि ये लीडर जो है बाजार में लीडर के नाम से उपलब्ध है सल्फो सल्फुरान, तो ये करीब 87% का आता है। तो अगर हम 25 ग्राम सक्रिय तत्व की बात करते हैं तो बाजार का जो प्रोडक्ट है वो 33 ग्राम लग जाता है। तो बाजार का लीडर जो है 33 ग्राम मात्रा ले लिया जाए, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए, अब बुआई के करीब 25 दिन बाद खेत में हल्की नमी होने पर हम छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तथा साथ ही साथ जो ये आपके हिरन खुरी हैं, मोथा हैं, ये सब भी लगभग लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सल्फो सल्फुरान का भी व्यवहार कर सकते हैं। एक और नई दवा आई हुई है जिसको हम मेट सल्फुरान कहते हैं, मेट सल्फुरान इथाइल, इसका जो सक्रिय तत्व है वो मात्र 6 ग्राम लगता है प्रति हेक्टेयर। देखिए दवा का मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 6 ग्राम सक्रिय तत्व, जो कि बाजार में अलग्रिप के नाम से आती है। तो अलग्रिप जो प्रोडक्ट है इसका करीब 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, केवल 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 30 ग्राम मात्रा लेकर के अलग्रिप का जो मेट सल्फुरान का प्रोडक्ट है, इसका 30 ग्राम मात्रा लेकर के हम क्या करेंगे कि 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके हम आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन बाद जब हल्का खेत में नमी रहे उसी समय छिड़काव करते हैं। तो इससे भी जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स विथ फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम केमिकल विधि द्वारा जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास दूसरी विधियां हैं, अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो भी हम कुछ हद तक गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। जैसा कि देखा गया है बार बार धान गेहूं का फसल चक्र अपनाने से ये जो जंगली जई है और गेहूं का मामा है इनकी संख्या बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: इनका नियंत्रण करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन अगर अपनाएं, हम धान के बाद आलू ले लें, या मक्का और आलू का फसल

0: चक्र अपनाए। तो चूंकि मक्की आलू में जो है 2 बार गुड़ाई निकाई होती है, तो ये गेहूं का मामा जंगली जई नियंत्रण में आ जाते हैं 2 साल के बाद। तो इस तरह से फसल चक्र को अपना करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण
1: कर
0: गेहूं के
1: सकते
0: खेत में कर सकते हैं।
1: हैं। तो ये तो बात हो गई गेहूं की, और इसके बाद अगर मक्के की बात करें डॉक्टर साहब, अभी तो मक्का काफ़ी आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल बन चुका है, और मुझे लगता है कि मक्का की बिक्री भी अभी फिलहाल हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुई है, और मक्के के लिए हमारे क्षेत्र को एक उपलब्धि भी मिली है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे कृषि मंत्री को बिहार क्षेत्र के लिए मक्के के लिए उपलब्धि मिली है। तो अभी फिलहाल किसान भाइयों के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए।
0: मक्का एक ऐसा फसल है जो कि अपने राज्य में खरीफ में भी उगाया जाता है, और खरीफ से ज़्यादा प्रोडक्शन

0: मक्का के द्वारा किसानों को लाभ जो मिलता है वो गेहूं की तुलना में जस्ट दोगुना मिल जाता है, क्योंकि गेहूं जो है जब हम लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर 40 से 45 कुंटल ही उत्पादन मिल पाता है, जबकि मक्का के द्वारा हम प्रति हेक्टेयर 100 कुंटल से 125 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और मार्केट में देखा जाए तो मक्के का भी एक अच्छा मूल्य मिल जाता है, आजकल 2,000 रुपये कुंटल मक्का भी आराम से बिक जा रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन जो है मक्के का जो एरिया है, जो मक्के का रकबा है, वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा स्वाभाविक है कि मक्के में हमें सब समय खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मक्का जो है शुरू में जो है 40 दिनों तक बहुत धीमी गति से ग्रोथ करता है, तो इसमें शुरू के समय में ही खरपतवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम शुरू के 45 दिन तक खरपतवार मुक्त रखते हैं खेत को, तो उत्पादन में बढ़ोतरी मिल जाती है। और अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो मक्का का उत्पादन 40-50% तक घट जाता है। अतः ये ज़रूरी है कि मक्के के खेत को हम खरपतवार मुक्त रखें, समय पर ही खरपतवार नियंत्रण कर लें। तो मक्के में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम बहुत सी विधियों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि मक्का जो है 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है, तो अब हमारे पास देखिए कि 50 सेंटीमीटर का कतारों के बीच में जगह मिल जाता है, तो हम निराई गुराई करके भी जो है खरपतवार का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में चूंकि लेबर महंगा पड़ जाता है, इसलिए लेबर के द्वारा मैनुअल निकाई करना कुदाल से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अतः हम विभिन्न प्रकार के मशीन जो हैं, जो हमारे ड्राई लैंड वीडर्स हैं, या सिंग हैंडो है, शर्मा होंड है, या कोई रोटरी वीडर, इसमें हम कतारों के बीच में चला करके भी खरपतवार का नियंत्रण थोड़ा इकोनॉमिक रेट पर कर सकते हैं। फिर इसमें हम जो मक्का के कतारों के बीच में है, आजकल थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएं तो फ्लूम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है जो गैस है, जो बर्निंग गैस है, उसका प्रयोग करके उसमें जो कतारों के बीच में चला देते हैं, तो वो भी जो है खरपतवार का नियंत्रण का एक साधन है। और सबसे सस्ता तो केमिकल विधियां हैं, जो रासायनिक विधियां हैं वो सबसे सस्ती साबित हो रही हैं। अगर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है तो रसायन पर ही मजबूर होना स्वाभाविक है, तो कोशिश करना चाहिए कि ससमय रसायन का भी प्रयोग किया जाए। इसके लिए मक्के के खेत में बुआई के समय ही जो हमारा एट्राजीन, एक खरपतवार नाशी दवा है, एट्राजीन का जो सक्रिय तत्व है वो 1 किलोग्राम पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। बाजार में एट्राटॉफ, एट्रागार्ड इत्यादि नाम से मौजूद है, जो कि 50% बेटेबल पाउडर है। तो जो बाजार के प्रोडक्ट हम लेते हैं एट्रागार्ड या एट्राटॉफ, इसका जस्ट दोगुना मात्रा लग जाएगा। अर्थात एट्राजीन का जो डोज है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, लेकिन बाजार के प्रोडक्ट लेंगे उसका तो 2 से 2.25 किलो तक जो है हमको देना पड़ता है। इस दवा को हम 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लेते हैं। अब बुआई के तुरंत बाद से लेकर 48 घंटे के भीतर तक हम इस दवा का छिड़काव कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो खरपतवार उगने वाले होते हैं वो नहीं उग पाते हैं। इसको हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से कहते हैं। तो एट्राजिन का प्रयोग किया जा सकता है। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में हम बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो पेंडीमिथिलीन जो है 33% का, 30% का लिक्विड है, इसका हम जो है करीब 3.3 लीटर बाजार का प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। अर्थात पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व तो प्रति हेक्टेयर अप्लाई करते हैं। तो
1: जी
0: चूंकि पेंडीमिथिलीन स्टाम्प इत्यादि के नाम से भी मौजूद है, तो जो कि 33-30% का है, तो इसका 3.3 लीटर डोज जो है 1 हेक्टेयर में लगता है। तो बाजार का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है स्टाम्प, इसका 3.3 लीटर लेकर के हम 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के तुरंत बाद से 48 घंटे के भीतर हम इसका भी व्यवहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है खरपतवार शुरू के 20 दिन तक नियंत्रण में रहते हैं, उगने नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद चूंकि अब हमारी फसल खड़ी अवस्था में है, किसान भाई लोग को बोए हुए करीब 30 से 35 दिन हो गया है, कुछ लोग लेट कंडीशन में बोए हैं तो उनका भी 20 दिन हो चुका है, तो ऐसे अवस्था में जरूरी है कि जो हमारा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है उसका हम व्यवहार करें। तो इसके लिए हम यहाँ भी एट्राजीन का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके लिए हम एट्राजीन को लेते हैं 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, या बाजार का प्रोडक्ट एट्राटॉफ एट्रागार्ड 2 किलोग्राम लेते हैं, और इसको हम आवश्यकता अनुसार वहीं 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और खेत में हल्का नमी होने की अवस्था में छिड़काव करते हैं, तो इससे जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते
1: आ
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: फिर इसके बाद कुछ खेत मक्का में हमारा सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती यानी कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा है, तो वहाँ के लिए सबसे अच्छा दवा आ रहा है हेलोसल्फुरान। हेलोसल्फुरान का जो मात्रा है वो 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। 90 ग्राम सक्रिय तत्व तो हेलोसल्फुरान का ले लिया जाता है और वो 800 से 1,000 लीटर पानी में घोलिया जाता है, और बुआई के वहीं 25-30 से 35 दिन बाद जो है हम खेत में पोस्ट इमरजेंस के रूप में छिड़काव करते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं।

0: तो इस प्रकार हम मक्का के खेत में जो है इस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर गेहूं की बात हो गई, मक्का की बात हो गई, अब तिलहन के फसलों की ओर बढ़ें, तो उस किसान भाइयों के लिए बेहद जरूरी है कि सरसों में हम कैसे खरपतवार
0: ये
1: प्रबंधन करें।
0: सरसों जो कि तिलहनी फसल आती है, तो सरसों में जो हमारे पास खरपतवार के लिए नियंत्रण की बात की जा रही है, वो सरसों में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबी फसलों में खरपतवार का प्रेशर सरसों के खेत में बहुत ज़्यादा हो जाता
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा।
0: और इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार एक साथ उगते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों या सिकड़ी पत्ती वाले हों या मोथाकुल का खरपतवार हो, सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीड फ्लोरा जो है खेत में दिखाई देते हैं। तो सरसों को जब हम बुआई करते हैं, उसी समय बहुत ज़रूरी है कि हम पेंडीमिथिलीन का उपयोग करें। इसके
1: जी।
0: लिए आवश्यकता अनुसार पेंडीमिथिलीन जो बाज़ार में स्टॉम्फ के नाम से भी उपलब्ध है, तो पेंडीमिथिलीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व तो लेते हैं, या बाज़ार का स्टॉम्फ जो है 3 लीटर जो है लगता है, इसको 800 लीटर से 1000 लीटर पानी में घोल लेता है और बुआई के तुरंत बाद जो है छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, शुरू के 20-25 दिनों तक खरपतवार का प्रेशर बहुत कम हो रहता है, जमाव होते ही ये पेंडीमिथिलीन की लेयर बन जाती है सतह पर, तो जमाव होते समय ही खरपतवारों को वो मार डालता है। तो इस
1: जी
0: प्रकार
1: जी
0: शुरू में हम पेंडीमिथिलीन से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ बुआई के समय ही हम फ्लूक्रोलालीन जो कि बेसालीन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, इसकी भी हम 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व या बेसालीन का जो बाज़ार का मात्रा है उसका 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के हम बुआई के तुरंत बाद हम खेत में अगर मिला देते हैं, तो जो है ये भी अगले 15 दिन तक खरपतवार को उगने नहीं देता है।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद सरसों में एला क्लोर या लासो के नाम से भी खरपतवार निषेध दवा आती है, तो एला क्लोर का जो सक्रिय तत्व होता है 2 किलोग्राम पर्याप्त होता है, या इसका जो ब्रांड है लासो के नाम से उपलब्ध है, तो लासो का चूँकि 50% का अवेलेबिलिटी है, तो लासो का 4 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त होता है। 4 लीटर लासो ले लिया जाए और उसको बुआई के तुरंत बाद से 2 दिन के भीतर हम खेत में डाल सकते हैं, 800 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दिया जाता है, तो इससे भी जो है खरपतवार नियंत्रण में आते हैं। किसी कारणवश हम अगर बुआई के तुरंत बाद खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग नहीं किए हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम खेत में 2 विधियों से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि सरसों की बुआई जो हम करते हैं कतारों में करते हैं, तो कतारों के बीच की दूरी हम 30 से 45 सेंटीमीटर तक रख लेते हैं, तो इसमें भी आसानी से हम निराई गुराई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसी कारणवश लेबर की उपलब्धता नहीं है या लेबर महंगे पड़ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम आइसोप्रोटॉन नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आइसोप्रोटॉन 1 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त होता है, जो कि बाज़ार में आइसोगार्ड एरीलान के नाम से भी उपलब्ध है, जो कि 75% वेटेबल पाउडर है। तो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व तो लेने के लिए हमको करीब 1.25 किलोग्राम जो है आइसोगार्ड या एरीलान लेना पड़ता है, और उसको हम बड़े आराम से जो है 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। तो इससे जो विशेषकर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर एक
1: जी
0: बहुत अच्छी दवा आई है जो कि अभी लेटेस्ट रूप में उपयोग किया जाता है, किलोफाविथाइल, जो उसका केमिकल बेस है किलोफाविथाइल कहते हैं। किलोफाविथाइल जो है आपके बाज़ार में टर्का सुपर के नाम से उपलब्ध है, तो किलोफाविथाइल का 40 से 50 ग्राम जो सक्रिय तत्व है उसको हम ले लेते हैं, या बाज़ार में चूंकि ये किलोफाविथाइल 10% का आता है, तो बाज़ार की जब हम टर्का सुपर की बात करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा मात्रा लगेगा, अर्थात 40 ग्राम सक्रिय तत्व के स्थान पर 800 ग्राम जो है, चूँकि सॉरी 5% का आता है, तो टर्का सुपर का मात्रा 800 ml लगता है। 800 ml टर्का सुपर लेकर के हम बुआई के करीब 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे विभिन्न प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स वीड फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, पोस्ट इमरजेंस में यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद अगर हमको छिड़काव करना है सरसों में, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही खरपतवारनाशी दवा है। पहला आइसोप्रोटॉन जो कि आइसोगार्ड या रिलान के नाम से उपलब्ध है, जिसका जो सक्रिय तत्व है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लगता है, उसको हम आवश्यकता अनुसार 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं, और ये मुख्यतः सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पे को नियंत्रण में करता है। दूसरा
1: अच्छा।
0: हम दवा बताएं आपको किलोफाविथाइल, जो कि 40 ग्राम सक्रिय तत्व लगता है, जो बाज़ार में टर्का सुपर के नाम से भी उपलब्ध है, तो टर्का सुपर का 800 ml मात्रा लेकर के हम बुआई के 25 से 30 दिन बाद व्यवहार कर सकते हैं, 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से। तो टर्गा सुपर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा को भी नियंत्रण में कर लेता है, इसलिए टर्गा सुपर देना ज़्यादा लाभदायक है आपके सरसों की फसल में।
1: जी
0: इस प्रकार से हम सरसों की फसल में जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा हैं उसका हम 75 से 80% तक नियंत्रण कर सकते हैं।
1: अच्छा। तो किसान भाइयों, आपने अभी गेहूं, मक्का और सरसों के बारे

0: में जाना। तो फिलहाल अब दलहनी फसलों की बारी आती है और ये भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए जाना, दलहनी फसलों में कैसे खरपतवार नियंत्रण करें। तो दलहनी फसलों में सर जैसे कि चना, मटर, मसूर है, इन फसलों के लिए हम खरपतवार प्रबंधन कैसे करें?
1: हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जैसा कि दलहनी फसल है, चना है, मटर है, मसूर है, और खेसारी भी अपने बिहार राज्य में
0: हाँ।
1: बहुतायत से लगाई जा रही है। और इन दलहनी फसलों में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार का,
0: जी
1: क्योंकि खरपतवार समय पे अगर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो इनकी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि दलहनी फसलों का उत्पादन जो है 40 से 50% तक गिर जाती है, और साथ ही साथ इसमें रोग बीमारियां भी खरपतवार की वजह से फैल जाती हैं और फसल बर्बाद होने लगती है। तो
0: अच्छा
1: दलहनी फसल में भी शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दलहनी फसल इतना फैलाव कर लेती है कि खरपतवार अगर उगते भी हैं तो उनको दबा देती है। तो दलहनी फसल, चाहे आपका चना हो, मटर हो, मसूर हो, इन सब में ससमय नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप को फॉलो करें जिससे हम कर सकते हैं। जैसे दलहनी फसल में अगर संभव हो सके तो बुआई के समय ही हम खेत को पलेवा कर देते हैं, या मॉइस्ट होने पर 1 सप्ताह के लिए खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज हैं वो जम जाते हैं। उसके बाद हम जुताई कर देते हैं। जुताई करते समय खरपतवार का जो जमा हुआ बीज है वो एक फ्लश उसका नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम बुआई करते हैं। इस टेक्निक को हम स्टेल सीड बेड यानी बासी बीज सैया कहते हैं। ये इसको भी अपना करके खरपतवार का प्रेशर कम किया जा सकता है। उसके बाद हम जब बुआई करते हैं दलहनी फसल की, तो बुआई करने के तुरंत बाद फ्लूक्लोरालीन, जो बाज़ार में बेसालीन के नाम से उपलब्ध है, तो फ्लूक्लोरालीन का 1 किलोग्राम मात्रा जो है पर्याप्त होता है, जो है सक्रिय तत्व फ्लूक्लोरालीन यानी बेसालीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है, और इसको बुआई के समय ही जमीन में मिक्स कर देता है। इसको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि शुरू के 15-20 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी दवा है बेसालीन हो गया, जिसे दूसरी दवा है पेंडीमिथिलीन। तो पेंडीमिथिलीन को जब हम बुआई कर लेते हैं उसके 2 दिन के भीतर हमें छिड़कना होता है। तो पेंडीमिथिलीन का जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर पर्याप्त होता है, क्योंकि पेंडीमिथिलीन 30% की दवा आती है, स्टाम्प के नाम से भी आती है, तो इसका 3 गुना मात्रा लग जाता है। तो 3 लीटर करीब पेंडीमिथिलीन हम स्टाम्प जो बाज़ार में आती है, स्टाम्प 3 लीटर लेकर के उसको हम 1,000 लीटर पानी में घोल करके और बुआई के तुरंत बाद से 3 दिनों के भीतर तक इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो इससे जो जमीन में उगने वाले खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। उसके बाद हमको अगर और दवा देना है तो हम वहाँ पर एलाक्लोर यानी लासो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए लासो का जो सक्रिय तत्व है वो 2 किलोग्राम रिकमेंडेड है, क्योंकि 50% की इसकी उपलब्धता है। तो बाज़ार में लासो जो है मिल जाता है, उसका 4 लीटर लेना पड़ेगा, और बुआई के तुरंत बाद हमको 2 दिनों के भीतर तक लेना होता है। तो लासो का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है, अगर विशेष करके हमारा दलहनी फसल है, तो इसमें हमने जैसे पहले बताया सरसों में, उसी तरह से यहाँ भी क्विजिला फाफिथाइल हम दे सकते हैं। क्विजिला फाफिथाइल जो है ये टर्गा सुपर के नाम से भी उपलब्ध है। तो टर्गा सुपर का मात्रा जो है 1 लीटर पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए।
0: जी जी
1: तो 1 लीटर टर्गा सुपर को लेकर के 1,000 लीटर पानी में घोलिया जाए। अब बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद हम टर्गा सुपर का व्यवहार कर सकते हैं। थोड़ा अगर उस समय खेत में हल्की नमी रहे तो ज़्यादा उसका रिस्पांस मिलता है। तो हम 1,000 ml यानी 1 लीटर जो है टर्गा सुपर लेकर के उसको 1,000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और प्रति हेक्टेयर हम उसका छिड़काव कर देते हैं बुआई के 25 दिन बाद। तो इससे क्या होगा कि खरपतवार जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और अच्छी हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं इमेजाथाइपर, जो मार्केट में परस्यूट के नाम से उपलब्ध है। तो इमेजाथाइपर का थोड़ा सा 50 से 60 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा पर्याप्त होता है, क्योंकि 10% का आता है, तो 500 से 600 ml 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है परस्यूट। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और बुआई के 25 दिन बाद हम खेत में व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना होता है कि अगर उस समय किसी कारणवश हल्की नमी मिल जाए, चाहे बरसात से या हल्का सिंचाई कर दें, क्योंकि सिंचाई का इसमें कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर उस समय हल्की बरसात अगर हुई रहे, तब जो है क्विजलोफाफिथाई ये आपका इमेजाथाई पर यानी कि परस्यूट देना ज़्यादा लाभदायक रहता है।
0: जी
1: अगर सूखे खेत में हम परस्यूट को देते हैं तो वो काम नहीं करता है, बल्कि फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है पौधों पर। तो इन सभी सावधानियों को बरतते हुए भी हमको खेत में हर्बिसाइड का प्रयोग करना होता है। तो बेहतर होगा कि हम सबसे पहले दलहनी फसल

0: की बुआई करने के तुरंत बाद हम जो है पेंडीमिथलिन है या फ्लूक्रोलिन है इसका व्यवहार करें, एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जरूर दे दें। और उसके बाद अगर बुआई के 25 से 30 दिन तक एक हल्की सी बरसात हो जाती है, खेत का सतह जो है अगर नम हो जाता है, तो हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, चाहे आपका क्विजलोफाफिथाइल हो जो टोरगा सुपर के नाम से है, चाहे आपका इमेजाथाइपर हो जो परचूट के नाम से है, इसका भी व्यवहार हम उचित डोज में दे करके कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो हमने बताया, इनका व्यवहार तभी करें जब खेत में हल्का सा मॉइस्चर हो, खेत में हल्की सी नमी हो, क्योंकि नमी न रहने पर खेत पर जो है इसका खरपतवार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखेगा, बल्कि फसल पर हानिकारक सिम्टम आने लगते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना और इन फसलों का कैसे आप जो है देख रेख कर सकते हैं, इन फसलों में कैसे आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, तो फिलहाल तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप इनके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अपनी फसलों से खरपतवार प्रबंधन करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 90.8 FM। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू सा, और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता दें।
2: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे, आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाए होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में, थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खरीज फसल में जब फास्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं।

इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, चूँकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें। और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इनकेस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयोग टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है और ये आपके पौधे को

0: जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 AC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 AC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है, दो केजी वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए। और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए। क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
1: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
0: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली जमीन का जो

ढीला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए, ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है, तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 EC + साइपरमेथ्रिन 5 EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है, तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए या आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसके उपचार कैसे करें, तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठेवने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4 G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि दो तीन उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरपाइरीफॉस दानेदार, उस ये दानेदार कीटनाशी है, उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए। क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है, और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या, उधर ही सिर्फ छींटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छींटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए, और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में

0: घुला लेना है, और घुलाने के बाद, ये घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है, और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है, और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है। और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटा छोटा बूंद आए, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो। इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉइल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है, और साथ ही साथ इसके जो टेल, जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु, काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उससे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है, जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है, जैसे स्टेज 1 और 2 में है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको, और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथग्जम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथग्जम प्लस लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियां को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है, तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब तो उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए, और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
1: उन्नत कृषि उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे रबी मक्के की खेती और खासतौर पर इसमें हम लेकर आए हैं जल और उर्वरक प्रबंधन की बातें।

0: तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं, जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में, और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और अगर हम बात करते हैं रबी मक्के की, तो इसकी बुआई कब हम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मक्के की बुआई कब करें। तो हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं और भी आप लोग भी देखे हैं कि जो रबी मक्के की बुआई होती है उसका सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर माह की अंतिम सप्ताह से पूरे नवंबर तक बुआई का सही समय होता है। लेकिन अब चूंकि वो समय तो बीत चुका है, जो किसान भाई समय पर लगा लिए हैं उनका फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा। और वैसे किसान भाई जो किसी कारणवश या जहां धान की खेती होती है वहां भी अक्सर देर हो जाता है धान काटने में, तो वहां पे यदि खेत में नमी है तो वहां पे अभी भी आप मक्के की बुआई कर सकते हैं, रबी मक्के की। लेकिन जो किसान भाई अक्टूबर या नवंबर में लगाए हैं उनसे उपज आपको कम प्राप्त होगी। तो हमारा ये सलाह है कि अभी भी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्का की बुआई करेंगे तो समानतः जो जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, वो 7 से 8 दिन ले सकता है, चूँकि रात का तापमान काफ़ी नीचे चल जा रहा है। तो उससे जर्मिनेशन तो आपका सब सही हो जाएगा, फिर पौधे जनवरी के बाद से सामान्य जो उसका ग्रोथ होता है, बढ़वार होता है, उस रूप में आ जाएंगे। तो अभी भी यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई सिर्फ में खेत में ये ध्यान देना है कि पर्याप्त नमी हो
0: जी। और किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताएं।
1: किसान भाइयों, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो मक्के की बुआई है उसके एक लाइन से दूसरे लाइन जो कतार से कतार की दूरी होती है 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए, तथा एक बीज से दूसरे बीज यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होता है वो 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खेत की जुताई कर लें और भुरभुरी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी बना लें और उसमें लाइन से बुआई कर दें। और ये ध्यान रहे कि जो आपका कतार से कतार है वो पूरब से पश्चिम रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधों की धूप काफ़ी मात्रा में मिलता है, तथा जब अप्रैल में या मार्च महीने में तूफान टाइप की जो हवाएं चलती हैं उससे भी पौधा आपका नहीं गिरता है। अब रही बात कि आपका खेत निश्चित रूप से अभी डिले हो गया है, देर हो गई है, तो आप चाहें तो बिना बुआई किए भी आप खेत में नमी है तो देखते हैं खेत में एक सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मोटा एक लोहे का या लकड़ी का रॉड ले लीजिए और उससे छेद करते जाइए 50 से 50 सेंटीमीटर या 60-60 सेंटीमीटर पर एक लाइन से दूसरे लाइन को रखते हुए एक लाइन में 20-20 सेंटीमीटर पर छेद बनाते जाइए, करीब 1 से 1.5 इंच अंदर छेद बनाएं और उसमें मक्के का एक एक दाना डालते जाएं और ऊपर से आधी मात्रा बालू और आधी मात्रा कंपोस्ट से उस छेद को भरते जाएं। वो क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका जो पौधा होगा सारे का अंकुरण बहुत सही समय पे और सही रूप में हो जाएगा
0: जी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई जो है वो अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर चुके हैं, तो उनके लिए सिंचाई के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे, किस प्रकार, कब करनी।
1: किसान भाइयों जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर में लगाए हैं वो निश्चित रूप से सही समय पे लगाए हैं, तो उनको एक सावधानी की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खेत में नमी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि जानते हैं कि जब तापक्रम नीचे जाता है 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है और ठंड लगने की डर लगती है, तो पौधे का जो प्रॉपर जो बढ़वार है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पे खेत में नमी बनाए रहें और ध्यान रखें कि जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें ताकि वो पानी रात भर में सूख जाए, पानी खेत में काफ़ी देर तक नहीं लगा होना चाहिए, तो पानी निकल जाएगा, नमी बना रहेगा तो आपके पौधे का बढ़वार नहीं रुकेगा, बढ़वार प्रॉपर होते रहेगा। तो आप 20-20 दिन पे, 15-15 दिन पे या 21 दिन पे ज़रूरत के अनुसार मिट्टी के का जिस तरह से टेक्सचर है, बनावट है, उसके अनुसार आप हल्की सिंचाई करते रहें
0: जी। और अब बात करते हैं जल प्रबंधन की सर।
1: तो जल क्या, जैसा कि हम बताएं कि जो सिंचाई करें हमेशा हल्की करें, और जो किसान भाई लाइन में बुआई किए हैं और मिट्टी भी पौधों के ऊपर चढ़ा कर यदि मेढ़ बना लिए हैं तो उनके लिए ये सलाह है कि आप चाहें तो आप एक एक

0: नाली, जैसे पहली सिंचाई आप दे रहे हैं, दूसरी सिंचाई दे रहे हैं, तो उसमें जल का आप बचत कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो जितनी नाली है, तो एक सिंचाई देने जा रहे हैं जो पहली, तो चाहें तो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं नाली में दें और दूसरे, चौथे और छठवें नाली को बंद कर दें। उससे कोई भी आपके फसल पे कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब आप दूसरी सिंचाई करने जाएंगे, तो जिस नाली को बंद कर दिए थे पहली बार, दूसरे, चौथे और छठवें नंबर को उसमें पानी दे दें। अब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां को बंद कर दें। इससे आपके करीब 60% पानी में ही पूरा सिंचाई हो जाएगा और फसल भी जितना होना चाहिए उतना उपज आपको आवश्यकता के अनुसार मिलेगा।
1: जी, फसल प्रबंधन में क्या कुछ करना होगा उसमें?
0: अब ये ध्यान देना है किसान भाइयों की, ठंड बढ़ती है, जाड़े में फॉल आर्मी वर्म, विभिन्न प्रकार के कीट का आक्रमण होता है। तो आप सबसे पहले, जैसे आपका जो पौधा 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन का हो गया है, तो जो आप खाद की जो आधी मात्रा बचाए हुए हैं, जैसा पहले बताया गया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आपको देना है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो आप बुआई के समय दे दिए होंगे। अब जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई है, उसका आधी मात्रा अभी आप खेत में दे दें। खेत में देने के बाद मिट्टी जो पौधों के जड़ के पास है उसको चढ़वा दें, कुदाल से चढ़ा लें या मशीन से चढ़ा लें, और उसके बाद सिंचाई कर दें। तो ये कर लें। और जो किसान भाई ये सारी प्रक्रिया कर लिए हैं या नहीं किए हैं, तो आप देखते होंगे कि खेत में कुछ कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, पौधे मर जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। कुछ पौधों में आप ऊपर देखेंगे जाली जाली टाइप का छेद बना हुआ है, जैसे खिड़की नुमा जाली बना हुआ है। ये सारे कीड़ों के प्रकोप के वजह से हुआ है। जो तना चेदक कीट होता है वो पूरे पौधे को सूखा देता है। और जो फॉल आर्मी वर्म काफ़ी अभी भयानक रूप से पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि वो जालीदार पत्तों के, वो जो ऊपर वाली पत्ती होती है, जालीदार बना देता है। और जो उसके छोटे छोटे उस पर दाने दाने दिखेंगे, चाय का जो पत्ती होता है उस टाइप का, तो इसका जैसे ही आपके खेत में दिखता है, एक दो पौधा भी दिख गया, तो ये समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में आक्रमण फॉल आर्मी वर्म का हो गया है। तो उसके बचाव के लिए करना क्या है कि एक बाजार में दवा आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना अलग अलग नाम से बेचती है, लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ है इमामेक्टिन है, बेंजोएट के नाम से आता है। वो 4 लीटर पानी में 1 ml दवा डालना है। उस दवा को डालने के बाद आप छिड़काव कर दें। तो ये छिड़काव पौधे जैसे ही 4-6 पत्ती का हो गया है उस पर, या घुट एक बार उस समय छिड़कें, फिर जब पौधे घुटने के ऊंचाई का हो जाए तब छिड़कें, और तीसरा जो है छिड़काव बाली और धनवाल दिखने के समय कर दें। इससे क्या होगा कि पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, खेत में आपका बीमारी कीड़ा नहीं लगेगा, और जो भुट्टे बनते हैं ये फॉल आर्मी वर्म भुट्टे में भी घुस जाते हैं, तो उससे भी आपका बचाव हो गया। तो इस तरह से आप 3 छिड़काव तो जरूर करें, ताकि आपका फॉल आर्मी वर्म और विभिन्न प्रकार के कीड़ों से आपके फसल को बचत हो सके।
1: जी, और अंत में सर उर्वरक प्रबंधन के बारे में बता दीजिए।
0: हाँ, उर्वरक में जैसे जो किसान भाई बताए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देना था, तो बुआई के समय फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा तो दे दिए होंगे। यदि नहीं दिए हैं तो अभी भी मिट्टी चढ़ाने से पहले और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को मिला लें, और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, आधी मात्रा का आधा, यानी आपको बताया गया था कि 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश देना है। तो आप यदि फास्फोरस और पोटाश दे चुके हैं, तो आपके पास बचा हुआ होगा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। उस 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का आधा कर लीजिए, यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को आप प्रति हेक्टेयर का, हम बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं प्रति हेक्टेयर के लिए बता रहे हैं, तो आप जो आधी मात्रा बचा लें और 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है आपके पास, उसको आप खेत में सिंचाई के पहले या सिंचाई के ठीक बाद दें और उस पर मिट्टी चढ़ा दें। और जो दूसरी तीसरी जो मात्रा हो, ये तीसरा आप दूसरा मात्रा दे रहे हैं नाइट्रोजन का, तीसरा के लिए जब अब धनवाल आपके खेत में आना शुरू होगा, पहले उसमें धनवाल आता है, तब नीचे मोचा आता है जिसमें बाली बनता है। तो जैसे ही धनवाल के अवस्था में आता है, तो उसके आने से पहले आप जो आधी मात्रा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन बचाए हैं उस

0: उसको आप खेत में पौधे के जड़ के पास लाइन से डाल दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो पौधे में भूटे आएंगे, धनवाल आएंगे, उसमें बहुत अच्छा बढ़वार होगा, भूटे भी बढ़िया होंगे और दानों में चमक भी बरकरार रहेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको करना है। अब किसान भाइयों, आप देखते होंगे कि आप दवा देते हैं तो एक ताना छेदक कीट भी बड़ा भयानक रूप से बाद में प्रकोप करता है। जैसे पौधे में जब बालियां बन जाती हैं या बनता है, उस समय आंधी आता है तो आंधी के साथ पौधे गिरने लगते हैं बीच बीच से टूट के। इसका मतलब कि उसमें पहले से कीड़ा अंडा दे चुका था जिसका वो लार्वा प्यूपा बड़ा हो गया, उसको खा गया, उसको कमज़ोर कर दिया। इसके लिए क्या कीजिए कि पौधे चाहे घुटना ऊंचाई का हो या उससे थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, कार्बोफ्यूरान बाज़ार में आता है, कार्बोफ्यूरान नाम का एक दवा, वो चाय पत्ती टाइप का होता है, काला पतला छोटा छोटा, उसको आप ले लीजिए। और धूप, अभी जैसे धूप थोड़ा तेज़ हो तो 12 बजे के बाद 1-1.5 बजे जब खेत में ओस नहीं रहे तो हर एक पौधे के गाभे में यानी ऊपर वाले पत्ती पे 4-6 दाना डाल दें, पूरे खेत में डाल दें, छिड़के नहीं डाल दें। तो उससे क्या होगा कि जो भी अंदर में कीड़ा होगा वो गैस से मर जाएगा या भाग जाएगा, ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। तो ये भी ज़रूर आप करें, कार्बोफ्यूरान का छिड़काव ऊपर से पत्ती में गाभे में डाल दीजिए और इमामेक्टिन का छिड़काव, 3 छिड़काव निश्चित रूप से करें ताकि आपके पौधे और दाने स्वस्थ आपके खेत से आए।
1: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जल और उर्वरक प्रबंधन के बारे में रबी मक्के की खेती में, तो आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ मैं हर रोज की तरह आप सभी के बीच एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अनु, और आज हमारे साथ फिर से एक खास मेहमान है, खास एक्सपर्ट है आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन तकनीक। वैसे किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हरा चारा हमारे पशुपालक भाइयों के लिए खास तौर पर कितना ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी उनमें वो ताकत आएगी कि वो काम करेंगे, और पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी वो दूध दे पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है हरा चारा उत्पादन के बारे में हम जानें, इसके तकनीक के बारे में जानें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SK गुप्ता जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और देखा जा रहा है जैसे कि आज का हमारा विषय है डॉक्टर साहब रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन, तो सबसे पहले तो हम डिटेल में जानेंगे इसके उत्पादन के तकनीक के बारे में, लेकिन जहां तक बात आती है हरे चारे की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि मौसम के आधार पर हरा चारा जो है या फिर चारा फसलों को किस तरीके से हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं।
2: जी जी, देखिए भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक आमदनी का प्रमुख स्रोत है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फसल उत्पादन से पशुओं को चारा एवं खाद्य सामग्री तथा पशुधन से बैल ऊर्जा, जैविक खाद एवं खेती के अन्य कार्यों में मदद मिलती है। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी को और दूध की मांग को देखते हुए जो हरे चारे की मांग है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही हरे चारे की जो फसलें हैं उनके क्षेत्रफल में वृद्धि की काफ़ी संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो सघन चारा उत्पादन चारे की आपूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही जैसे मौसम की अगर बात करें तो प्राय बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर रोजाना की ज़रूरतें आसानी से किसान पूरा कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के डेयरी व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या वर्ष भर हरे चारे का उपलब्ध न होना है, क्योंकि कृषि जोत के आकार लगातार कम हो रहे हैं, जिसके कारण किसान की नकदी फसलें, अनाज की फसलें तथा सब्जियां, इस तरह की फसलें को वो उगाना चाहता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे अकेले बिहार में वर्तमान समय में लगभग 272 पशुपालन होता है, लेकिन अगर हरे चारे के उत्पादन की बात करते हैं तो जो केवल बहुत ही कम है, जो लगभग 0.21% ही है। इस प्रकार जो प्रति पशु प्रति व्यक्ति अगर हरा चारे की हम उपलब्धता की बात करते हैं तो वो बहुत कम ही है, क्योंकि इस प्रकार डेयरी व्यवसाय व दुग्ध उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे करें ये किसानों को जानना बेहद जरूरी है। चारे की खेती की कमी को पूरा करने के लिए जो कृषिगत भूमि से चारे की खेती के लिए जगह निकालना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे अन्य राज्य हैं उनमें से अपना बिहार राज्य भी है, पूरे देश में बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्नों दालों एवं सब्जियों की खेती करना अति आवश्यक है। तो दूसरा, यहाँ जलवायु के बदलते परिवेश में यह भी आवश्यक हो जाता है कि कृषि में सघन कृषि प्रणाली, कम सिंचाई होने पर भी अधिक हरा चारा मिलता रहे एवं जो किसान के पास कम उपजाऊ या बेकार भूमि पड़ी हुई है उसमें कौन कौन सी ऐसी मौसमी चारा फसलों का वो
1: उत्पादन
2: करे। तो इस प्रकार किसान के पास पूरे साल में सूखे चारे के अलावा हरा चारा कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हम जो पूरा साल है हमारा उसको एक मौसम के या सीजन के आधार पर हम अपनी चारा फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हरा चारे के लिए अगर हम फसलों की बात करते हैं तो जो पूरा हमारा एक मौसमी चक्र है उसके लिए बिहार राज्य पूरे देश में, अपने राज्य सहित पूरे देश में विभिन्न मौसम में जो चारा है वो अलग अलग तरह के चारा फसलों में उगाया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले चारा फसलें। ये जो खरीफ मौसम है ये प्राय जून माह से अगस्त महीने तक अनेक चारे की फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, कुछ ऐसी बहुवर्षीय घासें हैं जैसे गिनी घास है, संकर नेपियर है, इसके अलावा लोबिया, ग्वार आदि फसलों का हम चयन कर सकते हैं। जहाँ तक रबी मौसम की बात है, इन फसलों का बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के और जो दिसंबर का महीना है इस अवधि में हम रबी की फसलें जैसे बरसीम है, रिजका है और जई है, खेसारी है, जो हमारी चारे की लिए कुछ फसलों का प्रभेद का हम चयन कर सकते हैं, जैसे सरसों है, मक्खन ग्रास है इत्यादि फसलों का हम चुनाव करके आसानी से इस समय अवधि में बुवाई कर सकते हैं। और जो तीसरा और अंतिम मौसम होता है जिसको हम गर्मी का या बसंत या जायद मौसम कहते हैं, इस मौसम में बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो जनरली फरवरी से मार्च के मध्य से लेकर के और मई तक भी हो सकता है, जिसमें कुछ इस प्रकार की फसलें हैं जैसे लोबिया है और हमारा ग्रीष्मकालीन बाजरा है, मक्का है, या कुछ विभिन्न प्रकार की बहुवर्षीय घासों का भी चयन करके हम फसलों का चुनाव करके और उनकी बुवाई करके आसानी से हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे घासों के यहाँ पर प्रकार बताए जैसे कि संकर घास और नेपियर घास, तो क्या ये मतलब हमारे जो पशु हैं उनके लिए इनके अलग अलग क्वालिटीज हैं, यानी कि अलग अलग गुण हैं उनके लिए?
2: जी जी जी बिल्कुल, देखिए आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। दरअसल ये जो हम मौसम की आधारित पर जो इसलिए कह रहे हैं कि किसान के पास वो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि हमारे पास इस मौसम में मौसम खेत खाली है या नहीं है, उसके जो समकक्ष है, जो उपलब्धता है वो फसल की है या नहीं है, या प्रभेद हमारे पास है या नहीं है, तो उसके साथ साथ ही जो बहुवर्षीय हरे चारे की घासें हैं उनका भी चुनाव हम करके अंतर्वर्ती फसल के रूप में इनसे मिला करके हम लगातार अलग अलग मौसम में चयन करके फसलों को और हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो जब बीज की बात आती है डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीज किस मात्रा में और कैसे होने चाहिए?
2: जी जी जी, वो तो देखिए इसका अभी हम आज का जो हमारा विषय रखा गया है वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके अपना सीधे
1: सीमित
2: मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो आज का विषय रखा गया है वो यही है कि जो मौसम की जानकारी तो सभी किसान भाइयों को इस के माध्यम से हो गई होगी, लेकिन जो रबी मौसम है इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के चारा फसलें हैं उनका हम चुनाव करके उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं जो अभी हम आपको बताएंगे।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत

0: सारी बातें बताई हैं और खास तौर पर मौसम के आधार पर इन्होंने चारा फसलों को जो विभिन्न भागों में बांटा गया है उसके बारे में बताया। और इसके साथ ही आइए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि रबी मौसम में हरे चारे के लिए ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और वो भी आसानी से कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से।
1: जी देखिए, जहाँ तक रबी मौसम की बात है, इसमें

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।

0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
1: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानती हैं।
1: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
1: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
1: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओ ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
1: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
1: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
1: जी
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: तो मारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध।

0: घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान

0: कर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800 44 0559।

0: हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ
7: दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है,

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़े के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार

0: तो हमें दोगुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: और मुश्किल।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
3: हाँ।
2: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
0: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
2: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
4: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
3: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
3: जी।
0: अच्छा।
4: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, बारीक

0: गाड़ी रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंडगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हम

0: हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
1: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
0: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके जाम। मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
2: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
1: जी।
2: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना, तो उसी चाय जैसी जो

0: पत्ती जैसी संरचना है उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
1: जी, तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी, सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
1: अच्छा,
0: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है।
1: अच्छा।
0: यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फास्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहां जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 ppm पाया जाता है, लोहा 528 ppm पाया जाता है, तांबा 8 ppm पाया जाता है, मैग्नीज 161 ppm पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया।
1: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
0: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो बर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
1: जी।
0: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान सामान्यतया कम होता है पार्थेनियम की तुलना में।
1: जी।
0: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो बर्मी कंपोस्ट बनाया था उस बर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम, और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा, लेकिन वही पार्थेनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.75-7% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। अच्छा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। अच्छा। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808% यानी 0.8 के यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इनडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें तो हार्म ना हो, और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी

0: रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थिनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश या और ज्यादा है, तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा, और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे हैं हम पार्थिनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें, हम वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थिनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थिनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थिनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थिनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए। 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 60-65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, लगभग 2-3 4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को 3-4 दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे।
1: अच्छा।
0: वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, हाँ ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा, इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए। और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहां पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे, इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहां पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, 1-2 हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहां पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है इस ढंग से करके। जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप से विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम।

0: नियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थेनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस, यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है अच्छा करने का, और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है, और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्जाम स्ट्रेस

ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है। कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्जाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटे बदलते रहते हैं और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमजोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज एक ही समय पर सोने जाएं और रोज एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है। तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे। तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप, अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना, लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं। तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे,

कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग खत्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे में आप अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीजें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है, आपने इससे पहले बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है। क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीजें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीजें नहीं होती है। कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है, पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं, आप एंजाइटी आपको होती है। तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमजोर कर देता है। और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज जो तरक्की की है, आपने हर रोज जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है,

जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है, तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। और एग्जाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी, सारी चीजें प्रभावित होगी। तो एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उससे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जाले।

0: वह बीमारी नियमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार

0: सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में बिल्कुल आज एक खास विषय लेकर आए हैं, मिट्टी के उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय. मिट्टी बहुत ज़रूरी है हमारे खेती के लिए, और अगर इसमें उर्वरता ज़्यादा रहेगी तो हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती आसानी से कर पाएंगे और खेती में कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी. फसलें भी जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर रहेंगी. तो चलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को लेकर डॉक्टर निशा कुमार आई हुई है हमारे साथ हमारे स्टूडियो, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: थैंक यू.
0: मृदा उर्वरता क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सबसे पहले.
1: मृदा उर्वरता से तात्पर्य उसकी उस क्षमता, मिट्टी की उस क्षमता से है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा व उपलब्ध अवस्था में आपूर्ति करता है. साथ ही मृदा किसी दुष्प्रभाव या विषैले प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो ये सुनिश्चित करता है. मृदा उर्वरता से हमें उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता के स्तर का बोध होता है. मृदा उर्वरता सामान्यतः मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर निर्भर करती है. हमारे देश की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा है. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में फास्फोरस की भी व्यापक कमी महसूस की गई है, तथा साथ ही विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ते, लोहे तत्व की कमी भी हमारे देशों में मुख्य रूप से देखी गई है. कुछ क्षेत्रों में जिंक की कमी भी बहुत ज़्यादा उग्र होती जा रही है. जिंक युक्त उर्वरकों का उपयोग किए बिना फसल उत्पादन असफल होता देखा गया है. धान जैसे धान में खैरा रोग और गेहूं के पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना जिंक की कमी के कारण होता है. हमारे देश में जिंक की

0: में विशेष रूप से चूना युक्त मृदाओं व खराब जल निकासी वाली मृदाओं में पाई जाती है।
1: ये जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, ये घटती क्यों है, इसके बारे में बताएं।
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने के बहुत कारण हैं। जैसे आज खेती में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण कुछ सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की मृदा में कमी होती जा रही है। बिना मिट्टी परीक्षण के उर्वरकों व खादों के बिना सोचे समझे अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण उपयुक्त समस्याएं आ रही है। किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग करने पर पोषक तत्वों की आपसी क्रिया के कारण अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे साथ ही खेतों में गोबर की खाद व पशुओं के मल मूत्र तथा बिछावन का बहुत कम प्रयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। इनकी उपस्थिति में मृदा में होने वाले विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधे को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है, जबकि इनका आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। किसानों द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की उपज प्रभावित होती जा रही है। साथ ही अत्यधिक जुताई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, और साथ ही फसलों का अवैज्ञानिक चक्रण के कारण भी मृदा की उर्वरता घट रही है। इसके साथ साथ देखा गया है बिना मृदा परीक्षण के अभाव किए बिना ही उर्वरकों का अनिश्चित रूप से प्रयोग किए जाने के कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट रही है।
1: ये जो मृदा की उर्वरता है उसमें पीएच का क्या महत्व है?
0: मृदा उपजाऊपन और मृदा पीएच में एक घनिष्ठ संबंध है। सामान्यतः खनिज मृदाओं का पीएच मान 3.5 से 10 के बीच होता है। उदासीन मृदाओं का पीएच 7 के आसपास होता है। कृषि योग्य मृदाओं का पीएच 4 से 8 तक होता है। सभी पौधों की पीएच आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। मृदा पीएच के बढ़ने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीज इसमें प्रमुख है, जबकि पीएच के अत्यधिक बढ़ने से मोलिब्डेनम अधिक उपलब्ध होता है। मृदा पीएच के घटने से जैसे 5.5 से 5.5 के मध्य अगर रहता है तो एल्युमिनियम तथा मैग्नीज अधिक घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर भी मृदा पीएच का सीधा प्रभाव पड़ता है। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता मृदा जीवाणुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। जब मृदा पीएच 6 से 7 के बीच होता है तो नाइट्रीकरण की क्रिया अधिक तेजी से होती है। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए भी मृदा पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, जबकि पोटाश की उपलब्धता पर मृदा पीएच का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी, अब बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को हम कैसे बेहतर बनाएं।
0: फसल उत्पादन के लिए योजना बनाने से सबसे पहले महत्वपूर्ण है मृदा परीक्षण। यह हर साल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन साल में 3 से 4 बार एक बार किसान निहित पोषक तत्वों की सामग्री के लिए विशेष प्रबंधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर अपनी मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। किसान मृदा परीक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार फसल नियोजन करे। साथ ही यदि मिट्टी में पीएच कम है तो मिट्टी की सीमित करना आवश्यक है। जैसे सीमित करने में मिट्टी में कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पोषक तत्वों को जोड़कर मिट्टी की पीएच को बढ़ाने की प्रक्रिया है। दूसरा है मिट्टी में लवणता। अगर मिट्टी में घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता को इंगित करती है और वे पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी के ऊपर जाने में बाधा डालती है। अच्छी गुणवत्ता वाली सिंचाई के पानी से मिट्टी को बार व लीचिंग करके लवणता को कम किया जा सकता है। मिट्टी में सोडिसिटी तब होती है जब मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सापेक्ष उच्च मात्रा में सोडियम होता है, और कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त उर्वरकों के आवेदन से इसे कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला है मिट्टी के कटाव, लीचिंग, वाष्पीकरण आदि के माध्यम से पोषक तत्वों के नुकसान को कम करना, और दूसरा है मिट्टी में कार्बनिक स्रोतों को जोड़ना। कार्बनिक स्रोतों में जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करके कर सकते हैं, संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन है, साथ ही मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व को

0: का पहचान करके हम उर्वरक का सही उपयोग कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हरी खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके। साथ ही हम किसान भाई खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद ही मिट्टी में उर्वरकों के का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी, इसके बाद बात करते हैं, आपने कहा था कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से हम इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, तो ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: यह मिट्टी में केवल अकार्बनिक उर्वरकों का एकमात्र उपयोग मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता को कम कर देती है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार करने में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में अत्यधिक प्रभावी है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों का एक साथ उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अकार्बनिक उर्वरक जैसे DAP, यूरिया, म्यूरेट और पोटास के साथ साथ कुछ जैविक स्रोतों जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, पशु खाद को जोड़ना है। यह कार्बनिक स्रोत न केवल मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता स्तर को भी बढ़ाता है। शोध रिपोर्टों से पता चलता है कि मिट्टी की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को केवल अकार्बनिक उपयोग की तुलना में कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों स्रोतों के संयोजन के साथ लगभग 35-50% तक बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उन्नत उर्वरता वृद्धि के कारण जैविक और अकार्बनिक उर्वरक के संयुक्त उपयोग के साथ फसल की लगभग 40% अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करती है। मिट्टी में कार्बनिक स्रोत को जोड़ने से मिट्टी की जैविक गतिविधि में भी सुधार होता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: जी, मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है?
0: मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थों की मात्रा का वृद्धि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों, मृदा संरचना, मृदा ताप, जल धारण क्षमता, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या, फसल गुणवत्ता व मृदा उर्वरता इत्यादि पर प्रमुख प्रभाव होता है। मृदा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फसल उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता और मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी खाद, हरी खाद, फसल अवशेष इत्यादि का समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरा, खेती में जैविक उर्वरकों जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, नील हरित शैवाल, फॉस्फोबैक्टीरिया, अजोला व माइक्रोराइजा का प्रयोग करके भी मृदा उर्वरता को बढ़ाने में लाभदायक पाया गया है। जहां पर सघन खेती की जा रही हो वहां आवश्यक हो जाता है कि 2-3 साल में एक बार हरी खाद की फसल जैसे सनई, ढैचा, मूंग या ग्वार अवश्य उगाई जाए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही मृदा उर्वरता में भी सुधार होता है, परिणाम स्वरूप अगली फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जल धारण क्षमता तथा फसलों में जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी मृदा उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसलों के साथ दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में यौगिकरण कर नाइट्रोजन की मात्रा की को बढ़ाती है। साथ ही समृद्ध एवं टिकाऊ खेती के लिए मृदा में रुझान इस ओर किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत किसान नीम की खली व पत्तियां फसल कटाई उपरांत फसल अवशेष खेत में दबाकर अपनी जमीन का उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भूमि में जीवांश पदार्थ की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।
1: संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: किसान भाई अपने खेत में फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करें, इसके बाद ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इससे फसल के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के भंडार भी बढ़ेंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में संतुलित पोषण की मुख्य भूमिका है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहे, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा के प्रयोग से फसल को फायदा होता है। साथ ही यदि इन पोषक तत्वों को मांग से अधिक मात्रा के प्रयोग से पौधों में विशेषता हो सकती है। एक पोषक तत्व के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित अन्य तत्व के अवशोषण को प्रभावित करती है। जैसे कि मान ले फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक ना हो तो पौधे में नाइट्रोजन के प्रति अनुक्रिया कम होती रहती है। तो वही अगर नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस एवं पोटेशियम को उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई की गंधक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में गहन खेती के प्रचलित होने के साथ ही एक तत्व की अधिक मात्रा वाले उर्वरक

0: को अधिक उपयोग में लिया जाता है, जिनमें गंधक का स्तर या तो बहुत कम होता है अथवा शून्य होता है। इसी कारणवश भारत के अधिकांश उपजाऊ भूमियों में इसकी कमी देखी गई है। गंधक के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। वर्तमान समय में पौधों में वृद्धि तथा उत्पादन को कम करने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म तत्वों में जस्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो विस्तृत रूप से सभी गहन कृषि वाले क्षेत्रों में आवश्यक स्तर से कम है। भारत के सभी धान गेहूं वाले क्षेत्रों में जस्ते की उपयुक्त मात्रा डालने से उत्पादन में दर्शनीय वृद्धि देखी गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में डालकर अथवा पर्णीय छिड़काव द्वारा दूर किया जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है अपितु पोषक तत्व उपयोग क्षमता व जल उपयोग क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है, जो अंततः कृषि के लाभ को बढ़ाता है। इसीलिए फसल उत्पादन से अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी 17 आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टिकाऊ खेती के लिए पौधों को उचित वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा एवं सही अनुपात में होना अनिवार्य है।
1: भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपचार करना चाहिए?
0: कृषि में पाए जाने वाले विभिन्न मित्रों कीट जैसे परजीवी परभक्षी एवं कीड़ों एवं बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को कीट व्याधि नियंत्रण हेतु प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म अंड परजीवी है जो तना छेदक फली छेदक व पत्ती खाने वाले कीटों के अंडों पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद को भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों में नियंत्रण के काम लेते हैं। इसको जड़ गलन उकटा व नर्सरी में पौधों का सड़ना इत्यादि रोगों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज व भूमि उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व भर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भूमि में डालने से विभिन्न मृदा जनित रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इससे कृषि रसायनों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव से भूमि को बचाया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे खास वार्ता मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उपाय, और इसमें बहुत सारी बातें बढ़ाई गई हैं कि तरीके क्या कुछ हैं ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के, और मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है, और किस तरीके से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हो या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हो, इसके बारे में भी आपको बताया गया। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: आना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया।

ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड्स धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है। और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है, हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर पीसीओएस जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हेवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फाइब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है। और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है। और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और खासतौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज्यादा तेज पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में जरूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हो। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट खराब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स

0: बढ़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज़्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज़ के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। Ladies first.
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें, और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
4: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
3: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्री

0: ऑप्शन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ है उनके बारे में बताएं।
1: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें में कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
0: मैग्नीशियम
1: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
0: जी।
1: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है, और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
0: जी।
1: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित जो पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है, और फोलेट एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं, और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
1: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लैक्स जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लैक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लैक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्नफ्लैक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्नफ्लैक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7

0: बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है। वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं, और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई, उसको ले, ले आप रख मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है 4 घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान, उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें 2 रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे, जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है, तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है, और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16 से 20% के लगभग में रखना होता है, और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, और फ्लेक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं, और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर किस

भाइयों, आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूंगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को

एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवान

किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: रेडियो रिविजन। रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ एबीपी 121 एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि पता है कि आपको कल आपका एग्जाम है, मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके संबंधित मैं यहाँ उपस्थित हूँ और थोड़ा सा मैं कोर्स क्या पढ़ाया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो जहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीशन की बात है, तो इसमें आपके मोर देन हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्वेश्चन में आपका जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने टैकल करना है, और क्या कोर्स कंप्लीट हो गया जिससे क्वेश्चन आएगा मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट से बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तीन टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये कवर हो चुका हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन वगैरह बनाया गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप लोगों ने पूरे अच्छे से देखा हुआ है स्लाइड्स में और डिस्कस किए हुए हैं इसको पूरे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको जो मैं सिलसिलेवार से बताता हूँ आपको कि एनवायरमेंटल स्टडीज में जो आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके अंदर में आपको जो पढ़ाया गया है वो है, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसमें कुछ डेफिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से उसको कंजर्वेशन की जाती है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया है जो उसके ऊपर प्रकाश डाला गया था क्लास में, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर है, और थ्रेट्स क्या है, क्या कारण है, कंजर्वेशन कैसे की जाती है, क्या क्या क्या मेथड है, जिसमें आपको इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड बताया गया था, और थ्रेट्स क्या थे, उसके क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने में क्या कारण है, वो सारी चीज़ों को आपको जिक्र किया गया है। इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन में आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब को जिक्र किया गया है, और एक्सीटू कंजर्वेशन में आपको बोटेनिकल पार्क जैसे हो जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे सीड बैंक हो गया, ये सब जीन बैंक हो गया, ये सब को आपको विस्तार में बताया गया है। तो क्वेश्चंस आपका जो आएगा इसमें इसी सब टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जैसे हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए जो बनाया गया है उसके बारे में जिक्र की गई है, कितने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये सब की जानकारी है, कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन लेटेस्ट जिसको बनाया गया है, सबसे पहला कौन सा बनाया गया है, हॉटस्पॉट्स कितने हैं अपने इंडिया में, और कहाँ कहाँ पर है, क्या है उनके उनके अपने एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं, फ्लोरा और फौना, और फंडामेंटल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का, उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना है। इससे संबंधित आपको क्लास में जिक्र में किया गया है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है, स्लाइड्स पर भी बताया गया, स्लाइड भी प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे टाइप के पोल्यूशन जो है उनको उनका कारण क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, उसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं के टर्म पर आपको छोटे छोटे डेफिनेशन जो है वो आ सकते हैं आपको कि कारण क्या है उनका, थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी, लाइट पोल्यूशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रख लेनी होगी, मैराइन पोल्यूशन के बारे में भी, और सोर्स क्या है पोल्यूशन का, जिसमें आपका जिसके वजह से जैसे एयर पोल्यूशन में हो गए तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और इंडिकेटर्स जो होते हैं आपका इंडिकेटर्स प्लांट्स जैसे हो गए वो सब के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। तो ये दो टॉपिक्स में से आपको ये सब जितने मैंने सब टॉपिक्स बताए उनको आप कवर कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें तो बहुत विस्तार में आपको सारे एज ए होल आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, तो सारे डिजास्टर्स में उनका कारण क्या होता है और कितना इम्पैक्ट करते हैं हर डिजास्टर्स में, फ्लड हो गया, चाहे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गए, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनको सारे के कारण बताए गए हैं आपको, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने लेवल पर वो डिजास्टर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, चाहे पूरे एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और उनका डिजास्टर्स की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। तो उसमें आपको जिस तरीके से बताया गया था प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसमें रिकवरी कैसे की जाती है आफ्टर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको रिस्पॉन्स होता है, ये सब के बारे में आपको पूरे एज ए होल आपको डिजास्टर्स बताया गया है। इंडिविजुअल डिजास्टर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे आपका फ्लड्स के बारे में था तो फ्लड का कारण क्या होता है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, किस किस रीजन में किस किस रिवर के वजह से फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती हैं, बारिश कहाँ कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो उनका इम्पैक्ट किस रीजन में पड़ता है, सारी चीजों को

दोस्तों एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और कल आपके कोर्स ABP 1-1 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम है। हम 90.8 FM ग्रीन पर लेकर हाजिर हो चुके हैं।

उन्होंने डिस्कस किया था, और उसमें फिर आपको जब मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि फ्लड ये डिजास्टर से पहले हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिपेयरनेस क्या होगी, और अगर डिजास्टर के टाइम पर ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेजर्स जो है उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एंड आफ्टर डिजास्टर्स क्या हम लोग उसको करेंगे ताकि रिकवरी जो है सुटेबल हो जाए, और वहाँ पर जैसे लोगों को रिहेबिलिटेशन कराना हो तो उनमें रिक्रिएशन की बात आती है, रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो वो सारी चीज़ों को आपने उसमें ये करना है, लिखना है। जहाँ तक आपको क्वेश्चन पैटर्न्स की बात है, तो आपके क्वेश्चन पैटर्न्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दो टर्म्स दिए होंगे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और लास्ट जो होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आपका 4 मार्क्स का होगा, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 मार्क्स के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका 4 ही मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये सारे जितने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप थोरली स्टडी कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स भी होगा आपका 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 2 ही मार्क्स का है। तो जो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स, वो टोटल मिला के आपका 8 मार्क्स का होगा। और जहाँ तक इसमें शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिजास्टर। तो डिजास्टर्स के अंदर में आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या मैनमेड डिजास्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोरो स्टडी करना है, एक एक टर्म्स को, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना होगा, ताकि आप उसमें शॉर्ट नोट्स का, इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस बार हटाया गया है क्योंकि पैटर्न में दिया गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स में आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 क्वेश्चन होगा उसमें आपको, मतलब ज़्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, 6-7 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर में आपको 5 को करना है, और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन में आएगा आपका 2 क्वेश्चन होगा, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन उसमें भी दिए जाएंगे ताकि एक ऑप्शन आपको रहे, और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो भी 2 ही क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका 2 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हुआ है। तो जहाँ आप देखिए कि शॉर्ट नोट्स में हम लोग जो बोल रहे हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में उसको नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन के अंदर में आप उसको, उसका जो क्रक्स है एकदम, जो बुलेट पॉइंट्स में उसको जो मेन बात उसमें लिखनी है वही बात को लिखिए, ज़्यादा उसमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, समय का नष्ट होगा, पेपर जो आपका होता है 1 घंटे का ही होता है, तो समय का इसमें अभाव हो जाता है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से आपको करना है। जो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है तो आप उसको कॉलम वाइज बना दीजिए, उसमें 2 से 3 पॉइंट जो होता है, चूंकि ये क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है, तो कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए जो दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें, और ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें, बुलेट पॉइंट्स में उसको भी लिखिए, क्रिटिकल जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बीच में, तो उनको आप उस तरीके से ही जवाब दीजिएगा, ताकि ज़्यादा लंबा उम्र करने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, राइटिंग वगैरह ठीक ठाक से लिखे ताकि नज़र पड़े कि आप करना क्या चाहते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो उसमें आप 5 से 6 लाइन के बीच में ही आप उसको जस्टिफाई करिए जो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का होगा वो, जिसमें आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स का 0.5 मार्क्स होगा, तो 4 मार्क्स हो गया आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका अगेन 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 का 0.5 मार्क्स ही होगा उसका, तो टोटल 2 मार्क्स हो गया उसका। और ट्रू फॉल्स में भी वही क्वेश्चन जो होगा 4 होगा, 0.5 मार्क्स का एक होगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग आपको 7 क्वेश्चन देंगे, उसमें हर एक का एक एक मार्क्स का ही होगा, तो 2-3-4 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने बताना है। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वाला भी जो होगा आपका 1.5 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 को अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट आंसर टाइम भी आपका जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें 2 को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको 6 से 7 लाइन के अंदर में जस्टिफाई करना है, क्रक्स ऑफ द आंसर देना है, इधर उधर घुमा के मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप खुद भी कन्फ्यूज रहेंगे और टीचर को भी होगा, उसको भी दिक्कत होगा उसको मार्क्स फेचिंग करने में। तो इस तरीके से आप इस सारे टॉपिक को जो मैंने बताया आपके सिलेबस में,
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक को

0: आपका कोर्स ब्रेकअप दिया गया है, उसके अंदर में टॉपिक्स बड़े बारीकी से लिखा गया है, उसको एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से और उसको पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपको ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों कल जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु के एस रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना दिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी

0: बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बद्दूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और कल आपके कोर्स ABP 1-to-1 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम है। हम 90.8 FM ग्रीन पर लेकर

0: हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ एबीपी 121 एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि पता है कि आपको कल आपका एग्जाम है, मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके संबंधित मैं यहाँ उपस्थित हूँ और थोड़ा सा मैं कोर्स क्या पढ़ाया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो जहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीशन की बात है, तो इसमें आपके मोर देन हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्वेश्चन में आपका जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने टैकल करना है और क्या कोर्स कंप्लीट हो गया, जिससे क्वेश्चंस आएंगे मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट से बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तीन टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये कवर हो चुका हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन वगैरह बनाया गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप लोगों ने पूरे अच्छे से देखा हुआ है स्लाइड्स में और डिस्कस किए हुए हैं इसको पूरे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको जो मैं सिलसिलेवार से बताता हूँ आपको कि एनवायरमेंटल स्टडीज में जो आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके अंदर में आपको जो पढ़ाया गया है वो है, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसमें कुछ डेफिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से उसको कंजर्वेशन की जाती है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया है जो उसके ऊपर प्रकाश डाला गया था क्लास में, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर है, और थ्रेट्स क्या है, क्या कारण है, कंजर्वेशन कैसे की जाती है, क्या क्या क्या मेथड है, जिसमें आपको इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड बताया गया था, और थ्रेट्स क्या थे, उसके क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने में क्या कारण है, वो सारी चीज़ों को आपको जिक्र किया गया है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब को जिक्र किया गया है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको बोटेनिकल पार्क जैसे हो जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे सीड बैंक हो गया, ये सब जीन बैंक हो गया, ये सब को आपको विस्तार में बताया गया है। तो क्वेश्चंस आपका जो आएगा इसमें इसी सब टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जैसे हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए जो बनाया गया है उसके बारे में जिक्र की गई है, कितने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये सब की जानकारी है, कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन लेटेस्ट जिसको बनाया गया है, सबसे पहला कौन सा बनाया गया है, हॉटस्पॉट्स कितने हैं अपने इंडिया में और कहाँ कहाँ पर है, क्या है उनके अपने एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं, फ्लोरा और फौना, और फंडामेंटल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का, उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना है। इससे संबंधित आपको क्लास में जिक्र में किया गया है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है, स्लाइड्स पर भी बताया गया, स्लाइड भी प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे टाइप के पोल्यूशन जो है उनको उनका कारण क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, उसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं के टर्म पर आपको छोटे छोटे डेफिनेशन जो है वो आ सकते हैं आपको कि कारण क्या है उनका, थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी, लाइट पोल्यूशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रख लेनी होगी, मैराइन पोल्यूशन के बारे में भी, और सोर्स क्या है पोल्यूशन का जिसमें आपका जिसके वजह से जैसे एयर पोल्यूशन में हो गए तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और इंडिकेटर्स जो होते हैं आपका इंडिकेटर्स प्लांट्स जैसे हो गए वो सब के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। तो ये दो टॉपिक्स में से आपको ये सब जितने मैंने सब टॉपिक्स बताए उनको आप कवर कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें तो बहुत विस्तार में आपको सारे एज ए होल आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, तो सारे डिजास्टर्स में उनका कारण क्या होता है और कितना इम्पैक्ट करते हैं हर डिजास्टर्स में, फ्लड हो गया, चाहे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गए, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनको सारे के कारण बताए गए हैं आपको, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने लेवल पर वो डिजास्टर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, चाहे पूरे एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और उनका डिजास्टर्स की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। तो उसमें आपको जिस तरीके से बताया गया था प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसमें रिकवरी कैसे की जाती है आफ्टर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको रिस्पॉन्स होता है, ये सब के बारे में आपको पूरा एज ए होल आपको डिजास्टर्स बताया गया है। इंडिविजुअल डिजास्टर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे आपका फ्लड्स के बारे में था तो फ्लड का कारण क्या होता है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, किस किस रीजन में किस किस रिवर के वजह से फ्लड की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, बारिश कहाँ कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो उनका इम्पैक्ट किस रीजन में

पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें फिर आपको जब मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि फ्लड ये डिजास्टर से पहले हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिपेयरनेस क्या होगी, और अगर डिजास्टर के टाइम पर ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेजर्स जो है उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एंड आफ्टर डिजास्टर्स क्या हम लोग उसको करेंगे ताकि रिकवरी जो है सुटेबल हो जाए, और वहाँ पर जैसे लोगों को रिहैबिलिटेशन कराना हो तो उनमें रिक्रिएशन की बात आती है, रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो वो सारे चीज़ों को आपने उसमें ये करना है, लिखना है। जहाँ तक आपको क्वेश्चन पैटर्न्स की बात है, तो आपके क्वेश्चन पैटर्न्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दो टर्म्स दिए होंगे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और लास्ट जो होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आपका चार मार्क्स का होगा, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो चार मार्क्स के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका चार ही मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये सारे जितने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप थोरली स्टडी कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स भी होगा आपका दो मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दो ही मार्क्स का है। तो जो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स, वो टोटल मिला के आपका आठ मार्क्स का होगा। और जहाँ तक इसमें शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिजास्टर। तो डिजास्टर्स के अंदर में आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या मैनमेड डिजास्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोरो स्टडी करना है, एक एक टर्म्स को, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना होगा, ताकि आप उसमें शॉर्ट नोट्स का, इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस बार हटाया गया है क्योंकि पैटर्न में दिया गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स में आपका पांच क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो पांच क्वेश्चन होगा उसमें आपको, मतलब ज़्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, छः सात सात ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर में आपको पांच को करना है, और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन में आएगा आपका दो क्वेश्चन होगा, डेढ़ मार्क्स का एक क्वेश्चन डेढ़ मार्क्स का होगा, तीन क्वेश्चन उसमें भी दिए जाएंगे ताकि एक ऑप्शन आपको रहे, और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो भी दो ही क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका दो क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हुआ है। तो जहाँ आप देखिए कि शॉर्ट नोट्स में हम लोग जो बोल रहे हैं कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में उसको नहीं लिखना है, तीन से चार लाइन के अंदर में आप उसको, उसका जो क्रक्स है एकदम, जो बुलेट पॉइंट्स में उसको जो मेन बात उसमें लिखनी है वही बात को लिखिए, ज़्यादा उसमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, समय का नष्ट होगा, पेपर जो आपका होता है एक घंटे का ही होता है, तो समय का इसमें अभाव हो जाता है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से आपको करना है। जो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है तो आप उसको कॉलम वाइज बना दीजिए, उसमें दो से तीन पॉइंट जो होता है, चूंकि ये क्वेश्चन आपका डेढ़ मार्क्स का है तो कम से कम तीन पॉइंट होना चाहिए जो दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें, और ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें, बुलेट पॉइंट्स में उसको भी लिखिए, क्रिटिकल जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बीच में, तो उनको आप उस तरीके से ही जवाब दीजिएगा ताकि ज़्यादा लंबा उम्र करने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, राइटिंग वगैरह ठीक ठाक से लिखे ताकि नज़र पड़े कि आप कहना क्या चाहते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका दो मार्क्स का है, तो उसमें आप पाँच से छः लाइन के बीच में ही आप उसको जस्टिफाई करिए जो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके चार क्वेश्चन रहेंगे, चार मार्क्स का होगा वो, जिसमें आपको आठ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक क्वेश्चन का एक फिल इन द ब्लैंक्स का 0.5 मार्क्स होगा, तो चार मार्क्स हो गया आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका अगेन चार क्वेश्चन रहेंगे, चारों का 0.5 मार्क्स ही होगा उसका, तो टोटल दो मार्क्स हो गया उसका। और ट्रू फॉल्स में भी वही क्वेश्चन जो होगा चार होगा, 0.5 मार्क्स का एक होगा, तो दो मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग आपको सात क्वेश्चन देंगे, उसमें हर एक का एक एक मार्क्स का ही होगा, तो दो तीन चार लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने बताना है। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वाला भी जो होगा आपका डेढ़ मार्क्स का होगा, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन होंगे उसमें से दो को अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट आंसर टाइम भी आपका जो है दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें दो को अटेम्प्ट करना है, तो ये आपको छः से सात लाइन के अंदर में जस्टिफाई करना है, क्रक्स ऑफ द आंसर देना है। इधर उधर घुमा के मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप खुद भी कन्फ्यूज रहेंगे और टीचर को भी होगा, उसको भी दिक्कत होगा उसको मार्क्स फेचिंग करने में। तो इस तरीके से आप इस सारे टॉपिक को जो मैंने बताया आपके सिलेबस में
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट,

0: ये सब टॉपिक को आपका कोर्स से ब्रेकअप दिया गया है, उसके अंदर में टॉपिक्स बड़े बारीकी से लिखा गया है, उसको एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से और उसको पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपको ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों कल जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ FM ग्रीन पर और आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो श्रोताओं, आज हम एक और खास विषय लेकर आए हैं। हमारा विषय है वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल, सर वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है।
3: धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर 76% लोग अपनी आय और कृषि से संबंधित चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि खेती किसानी हम लोग जानते हैं मौसम और जल पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो वर्तमान समय में जल प्रबंधन एक आवश्यक चीज़ हो जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 60% खेती मानसून पर ही निर्भर है, बाकी बचे 40% के लगभग वो सिंचाई योग्य भूमि पर खेती की जाती है। अगर हमको प्रबंधन और अच्छी तरीके से कर पाए तो औसतन हम 30-40% वाले जगहों को सिंचाई कर करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जिसमें मैं दो बातें रखना चाहूँगा, एक है बिहार के गंगा नदी के उत्तरी छोर में जो ज़िले हैं जैसे मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। वहीं बिहार के दक्षिणी भाग में जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और कैमूर, मुंगेर, बांका जिलों में जो है सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो इसलिए जल प्रबंधन एक अति आवश्यक जरूरी है हमारे यहाँ।
1: जी जी, अभी वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो सिंचाई की क्या प्रमुख चुनौतियाँ अभी देखी जा रही हैं, क्या क्या हैं?
3: जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जल की कमी से हमारे यहाँ फसलों पर काफ़ी नुकसान होता है, उसकी पैदावार, जैसे सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम बोलना चाहेंगे कि मौसम की अनियमितता एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मानसून अगर सही समय पे आए तो जल प्रबंधन को उचित ढंग से कर पाएंगे, अगर ये डिले यानी लेट हो देर हो जाती है तो फसलों को लगाने में और इसके जब अंतिम में मानसून विड्राल यानी निकलने के समय आता है तो उस समय अगर जल प्रबंधन ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया तो कभी कभी ड्रेनेज यानी जल निकासी की भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वर्तमान समय में इन चुनौतियों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
1: अभी के समय की हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो जल प्रबंधन के प्रभावी उपाय अभी क्या क्या हैं?
3: जी जी, इसमें सबसे प्रमुख उपाय जो है आज से मैं वर्णन करना चाहूँगा। ऐसे सिंचाई की बहुत सारी प्रमुख विधियाँ हैं, लेकिन उनमें से माइक्रो इरीगेशन एक टर्म आता है, माइक्रो इरीगेशन जो है कि ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर ये दोनों से मिलकर के बना है। अगर सिंचाई विधि से सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो इसमें खेतों में किसान अपने पानी को सीधे पहुंचाता है उस पौधे की जड़ तक, जो कि एक बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें 40-60% तक जो है जल को बचाया जा सकता है, जो कि आने वाली अगली फसल

0: या उस फसल के दो और तीन इरिगेशन या सिंचाई दे सकता है, उससे फायदा होता है। इसी के साथ मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा बात कि अगर इसमें हम बचत करते हैं तो 15-20% तक कम से कम उसकी जो लागत की कमी भी आती है, ये एक प्रमुख कारण है।
1: अभी हम माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: जी जी, तो जैसे माइक्रो इरिगेशन में अभी हमने बताया ड्रिप इरिगेशन, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं उसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इसका विस्तृत चर्चा है, जैसे जल की बचत, पानी सीधे अगर पौधों की जड़ तक पहुँचता है तो बीच में जो नाली से हम लोग पहले किसान पहुँचाते थे तो उसमें कुछ जो जमीन में सोख लेता था, कुछ ड्रेनेज होकर के बाहर चला जाता था, सीपेज होता था, उससे नुकसान होता था, इससे तो सीधे खेत में ही पहुंच जा रहा है। दूसरी चीज, अगर हम पानी को सीधे जड़ तक देंगे तो जो उर्वरक देंगे उसको चाहे तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जड़ तक तो उर्वरक पहुँचेगा ही और वहाँ की फसलों को लाभ होगा। और एक बात और बिंदु पे है कि उत्पादकता में वृद्धि, पौधों को नियमित और संतुलित मात्रा में उर्वरक और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व मिलने से उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी मिलती है। अगर हम उसमें ऊर्जा की बचत की बात करें तो अगर न्यूट्रिएंट और पानी को सही मात्रा में मिलेगा तो उससे जो बचत है वो पानी और आय दोनों की होगी। और तीसरा बात इसमें है कि मिट्टी की संरचना अच्छी बनी रहती है। कैसे? अगर बहाव द्वारा इरिगेशन या सिंचाई करेंगे तो इसमें मिट्टी के बहने की भी संभावना रहती है, जबकि इस तरीके से करेंगे तो केवल पौधे के ही जड़ में जाएगा। एक और जो किसान बंधु रहते हैं कि अगर ड्रिप इरिगेशन देने से क्या होता है, खरपतवार को सही ढंग से नियंत्रण भी किया जा सकता है।
1: माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के प्रमुख लाभ क्या क्या मिलेंगे किसान भाई अगर करते हैं तो?
0: जी, इसी में एक हमने आपको अभी शुरू से और बताया, तो उसमें और भी उसी पॉइंट में मैं और जोड़ना चाहूँगा। सिंचाई करने से क्या होता है कि इसमें सूखे और जलवायु परिवर्तन, आजकल एक विषय आता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा समस्या है जो वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबली सबको परेशान किए हुए है। तो सभी किसान भाई चाहें तो इस जलवायु परिवर्तन को समझे। इसमें क्या होता है कि औसत जो हवा की जो तापमान है उसमें औसत मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होता है कि जल की मांग, जो पौधों की जल की मांग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें अगर पौधों, जिसे कहते हैं कि पत्तियों से पानी को इवेपोरेट करते उड़ता है, तो अगर उनकी जड़ में देंगे तो पहली बात मिट्टी से जो पानी का हानि हो रहा था वो नहीं होगा और सीधे उनके जड़ में रहेगा पानी, जिससे कि उनको पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट दोनों भी मिलेंगे। और इस जलवायु परिवर्तन से जो कि नमी की लाश हो रहा था वो बच सकता है।
1: मल्चिंग और जैविक खाद का जब प्रयोग करेंगे किसान भाई तो क्या क्या लाभ मिल सकता है उन्हें?
0: जी, इसमें मल्चिंग और जैविक ये दो बातें मैं बताना चाहूँगा। मल्चिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि मृदा के खुद उसके जो स्ट्रक्चर हैं या ऊपर के कुछ हिस्से को तोड़ करके उसको फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूव कर दे सकते हैं, या पुरानी फसल या पहली फसल के अवशेष को उसके पौधे पर या पौधे के नीचे उसके जड़ के जहां पर तना रहता है वहां पर सरफेस पर मिट्टी पर बिछाएं, जिससे कि जो तापमान से या सीधे हवा के संपर्क में मिट्टी के आ नहीं पाता, जिससे कि उसमें पोषक तत्व के साथ साथ नमी भी बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि लगभग इससे 18% जल धारण क्षमता भी बढ़ जाता है और 20-25% तक पानी की बचत भी होती है। ये है मल्चिंग का इफेक्ट। और जैविक खाद अगर मिला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैविक खाद मिलाने से जो सॉइल के टेक्सचर हैं वो आपस में जुड़ते हैं अच्छे से, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जो कि कम सिंचाई में भी फसल को किया जा सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है।
1: इसके बाद जल प्रबंधन के लिए कुछ योजनाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ सरकारी योजनाएं हैं?
0: जी, इसमें जैसे कि जल प्रबंधन के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो भारत सरकार की भी चलती हैं और राज्य सरकार की भी चलती हैं। तो जिसमें से मैं एक कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा किसान बंधुओं।

0: जिसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक ऐसी भारत सरकार की योजना है जो कि किसानों की सिंचाई की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम हैं, उनको अनुदान में देती हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन की हम बात किए हैं अभी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो उसमें कुछ अनुदान राज्य सरकार देती है, कुछ अनुदान भारत सरकार देती है, जिससे कि किसान उसको आसानी से खरीद करके अपने खेत पर लगाएं और फसल के उत्पादन बढ़ाएं और जल की बचत करें। और दूसरा है मुख्यमंत्री हरित बिहार योजना। इससे क्या होता है कि किसानों को ये भी जल प्रबंधन की एक अच्छी योजना है। इसमें इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक गांव में जल संरक्षण परियोजनाएं लागू कर की जा चुकी हैं और 3 लाख से अधिक किसान इसमें लाभ उठा चुके हैं। तो किसान बंधुओं को मैं यही सलाह दूंगा कि दो प्रमुख योजनाओं को जो मैं वर्णन किया हूं, अगर चाहें तो वहां से लाभ उठा सकते हैं जल प्रबंधन के लिए।
1: जी जी, मौसम पूर्वानुमान से क्या जल प्रबंधन किया जा सकता है?
0: जी, एक बहुत बड़ा वर्तमान समय का विषय है। हमारे भारत सरकार में एक मंत्रालय है, मौसम मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसका एक विभाग है भारतीय मौसम विभाग, IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि सही समय पर सही तरीके से मौसम का पूर्वानुमान करता है। इस मौसम के पूर्वानुमान में कितनी बारिश होगी, कितना तापमान रहेगा, किस स्पीड से, किस रफ्तार से हवा चलेगी और किस दिशा से चलेगी, अगर ये अनुमान इतना मिलता है तो किसान बंधु चाहें तो अपने खेत पे जल प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, इसमें हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी में एक AMFU जिसे कहते हैं एग्रोमेट फील्ड यूनिट चलता है, जिसे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी नाम से जाने लगा है। ये 5 दिनों की मौसम की पूर्वानुमान IMD से लेती है और उसको आने वाले खेती किसानी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से करें वो एक एडवाइजरी जारी करती है। इस एडवाइजरी को अगर किसान बंधु ध्यान में रखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, अगर कोई किसान सिंचाई करने जा रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसान अभी सिंचाई करने वाला है, अगर उसको पता चल जाए कि मौसम में परिवर्तन होगा अगले दिन, तो अगर वो सिंचाई को थोड़ा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रोक करके या उस मौसम को ध्यान में रख करके करता है, तो एक तो उसकी सिंचाई का जल बचेगा, दूसरा उसकी लागत में भी कमी आ सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि इस किसान भाई अभी सिंचाई करके आ गए सुबह में और शाम को बारिश हो गई, या शाम को सिंचाई की है तो सुबह बारिश तक हो गई, तो उससे क्या फसल भी नुकसान होता है, जल भी आपका ख़त्म होता है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके जब भी किसान बंधु खेती करें, सिंचाई करने जाएं, तो उसमें सबसे बड़ी बात मेघदूत एक मोबाइल ऐप है, उसको भी चाहें तो अपने मोबाइल में रख करके उसमें मौसम का पूर्वानुमान देता है, उसको देख करके ध्यान में रख करके सिंचाई का या जल प्रबंधन करें।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय को लेकर आज हमारे साथ थे डॉक्टर चंद्रभान पटेल, और इस विषय में बहुत सारी जानकारियां आप सभी को दी गई हैं कि जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और चुनौतियां अभी के समय में सिंचाई के लिए क्या कुछ आ रही हैं। इसके अलावा मल्चिंग के बारे में आपने जाना, जैविक खाद के प्रयोग से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई हैं। आशा करते हैं आज के इस वार्ता को सुनकर आपको एक नई जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी

0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 128, अध्याय 10, मीरा के पद। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। दो, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा, इस पृष्ठ पर एक सुंदर चित्र है जिसमें मीरा एक हाथ में एक तारा और दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए पद गा रही हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, सामने एक नदी बह रही है, आकाश में बादल छाए हैं जिनसे वर्षा का जल बरस रहा है, चारों ओर हरियाली है, मीरा के ही निकट एक हिरन और नदी के उस पार एक मोर यूं लग रहे हैं जैसे वे मीरा के पद सुन रहे हों। आसपास फूल खिले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। आपने जो रचना अभी सुनी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थीं। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगीं। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। यहाँ मीराबाई का एक चित्र है जिसमें वे एक तारा लिए अपने पद सुना रही हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पद में मीरा किनसे विनती कर रही हैं? संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से? दो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति या ज्ञान और शिक्षा? इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें मीराबाई एक नदी के किनारे एक तारा हाथ में लिए अपने पद गा रही हैं। पृष्ठ संख्या 130। तीन, बरसे बदरिया सावन की, पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? यहां एक बालिका

का चित्र है जो एक पेड़ से लटके झूले पर झूला झूल रही है। 4. बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं या चिंतित हैं। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा दूसरे स्तंभ में उन शब्दों से संबंधित अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। तालिका के पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। 1. नंदलाल। 2. वैजंती माल। 3. सावन। 4. गिरधर। दूसरे स्तंभ में इन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ अथवा संदर्भ शीर्षक से कुछ इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं। 1. पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। 2. श्रावण का महीना, आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। 3. वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। 4. नंद के पुत्र श्री कृष्ण। अब आप इन शब्दों को इनके सही अर्थ अथवा संदर्भ के साथ मिलान करें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। ख, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। पृष्ठ संख्या 131। सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? ख, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है? यहां इस पृष्ठ पर श्री कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वे मुरली बजा रहे हैं। कविता की रचना। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। क, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा? ख, यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे? यहां इस पृष्ठ पर एक बादल का चित्र है जिससे जल बरस रहा है। शब्दों के रूप। अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 132। क, मोहिनी मूरति, सांवरी सूरति,
नैना बने

विशाल। इस पंक्ति में शब्द सांवरी को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है, इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। यहां ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें

मेरो मनवा, आवन, दिश, मेहा, इन सभी शब्दों के साथ रिक्त स्थान दिया गया है। इस प्रकार आप इन शब्दों को जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से इन रिक्त स्थानों में लिखिए। शब्द से जुड़े शब्द, यहां दिए गए स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। यहां 6 रिक्त स्थान वाले कोष्ठक दिए गए हैं। एक मुख्य शब्द श्री कृष्ण पहले से दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए श्री कृष्ण से संबंधित एक शब्द मुरली पहले से अंकित है। अब आप अन्य 6 रिक्त स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। पंक्ति से पंक्ति, यहां स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल। 2. क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। 3. मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। 4. सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। 5. उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दमके झर लावन की। स्तंभ 2, स्तंभ 2 के अनुसार जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। 1. चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग गई है। 2. होठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजयंती माला सजी हुई है। 3. सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। 4. हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। 5. कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 133, कविता का सौंदर्य, बरसे बदरिया सावन की। इस पंक्ति में बरसे बदरिया को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। रूप बदलकर, पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए, सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है आदि। मुहावरे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनों या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे, उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है, आंखों में घर करना। यहां आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आंखों का तारा। 2. आंखों पर पर्दा पड़ना। 3. आंखों के आगे अंधेरा छाना। 4. आंख दिखाना। 5. आंख का कांटा। 6. आंखें फेरना। 7. आंख भर आना। 8. आंखें चुराना। 9. आंखों से उतारना। 10. आंखों में खटकना। यहां इस पृष्ठ पर

एक पत्र का चित्र है जिस पर आंखें बनी हुई हैं। पास ही एक कलम और एक दवात का चित्र है जिसके नीचे कुछ और पत्र रखे हैं। पृष्ठ संख्या 134, सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, भाव नृत्य प्रस्तुति करना, कविता पाठ करना आदि। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक ढोलक बजा रहा है। पाठ से आगे, आपकी बात। क, बरसे बदरिया सावन की। एक, इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आते हैं, वर्णन कीजिए। दो, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनियां। तीन, वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में आनंद आता है। चार, सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, आपके घर परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किसी एक के विषय में अपने अनुभव बताइए। ख, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती हैं। एक, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है, विस्तार से बताइए। दो, कवयित्री ने पाठ में नूपुर और क्षुद्र घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। पृष्ठ संख्या 135, विशेषताएं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। क, इस पंक्ति में कवयित्री ने श्री कृष्ण की मोहनी मूरत सांवरी सूरत और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया। ख, किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, क्यों, अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण से बताइए। ग, हम सबकी कुछ विशेषताएं बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई दे जाती हैं लेकिन आंतरिक विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक महिला को फूलों का गुलदस्ता दे रही है। मधुर ध्वनियां। अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में तीन ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनसे मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। आगे मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के विषय में पहेलियां दी गई हैं। इन्हें पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींच कर मिलाइए। यहाँ एक नदी का चित्र है जिसके आसपास चट्टाने हैं और हरियाली है। पृष्ठ संख्या 136। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पहेलियां लिखी हैं और दूसरे स्तंभ में उन पहेलियों के उत्तर के रूप में कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं। पहले स्तंभ में जो पहेलियां हैं वे इस प्रकार हैं। एक, हवा से बोलती है सुरमे गीत सुना

आती है, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती है। दो, दो साथियों का जोड़ा हाथों से है बजता, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता। तीन, शाहों में शामिल होती फूंकों से संगीत सुनाती, सुख के सारे काम सजाती दुख में भी ये साथ निभाती। चार, तारों में छिपा संगीत माँ सरस्वती का गहना, छेड़े जब अंगुलियां बहे रागों का झरना। पांच, दो हाथों से बजती है ये ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की है ये साथी लटक गले ये करती सैर। छे, नागिन सी लहराती है जो बड़ी खास आवाज है जिसकी, तीन चीन रंगीन हीन से मिली जुली पहचान है इसकी। सात, सौ तारों का जादू डंडियों से जो गाए, कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत लाए। आठ, छोटा सा यंत्र है हाथों से बजता जाए, घर मंदिर का साथी झनकार से मन बहलाए। इस तालिका के दूसरे स्तंभ में इन पहेलियों का उत्तर चित्रों के रूप में दिया गया है। ये चित्र इस प्रकार हैं: एक, ढोलक; दो, बांसुरी; तीन, संतूर; चार, तबला; पांच, वीणा; छः, शहनाई; सात, मंजीरा; आठ, बीन। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर मीरा का पद गाते हुए एक चित्र है। उनके केश खुले हुए हैं, उनके कानों में झुमके हैं, माथे पर टीका है और हाथों में एक तारा है। वे श्री कृष्ण के पद गाते हुए उनकी भक्ति में लीन हैं। यह मीरा का कांगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। सावन से जुड़े गीत अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से सावन में गाए जाने वाले गीतों को ढूंढिए और किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप सावन से जुड़ा कोई भी लोकगीत, खेल गीत, कविता आदि लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। खोजबीन। आपने पढ़ा कि मीरा श्री कृष्ण की आराधना करती थी। आपने कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार में पढ़ा था कि सूरदास भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अपने समूह के साथ मिलकर सूरदास की कुछ रचनाएं ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। इसके लिए आप पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 138। आज की पहेली। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से खोजिए और लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द तथा दूसरे स्तंभ का शीर्षक है समान ध्वनि वाले शब्द। आपकी सुविधा के लिए शब्द मूर्ति के लिए समान ध्वनि वाला शब्द सूरति दिया गया है। अब आप दिए गए शब्दों के अनुसार समान ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से चुनकर लिखिए। तालिका के पहले स्तंभ जिसका शीर्षक शब्द है, उसके शब्द इस प्रकार हैं: सावन, उमड़, नागर, नंदलाल। इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको इन शब्दों से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आपके संकेत के लिए साथ ही एक वर्ग दिया गया है जिसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं। ये अक्षर बाएं से दाएं ओर इस प्रकार हैं: पहली पंक्ति आ, घू, म, ड, दूसरी पंक्ति व, अ, सु, गो, तीसरी पंक्ति न,
ग र पा। चौथी पंक्ति सो भी ती ल। खोजबीन के लिए यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप कवयित्री मीरा के बारे में और जान समझ सकते हैं। मीरा, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है /www.yout.com/wattch/mark.vequal to capital K capital W capital K T capital P capital M at c-capital P capital A and a b underscore c h a n n e l equal to capital N capital C capital E capital R capital T capital O capital F capital F capital I capital C capital I capital A capital L। मीरा के भजन, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है /www.yout.com/wattch?mark.vequal to at ch capital z dash capital a capital a do v capital b capital q capital m and a b underscore c h a n n e l equal to capital n capital c capital e capital r capital t capital o capital f capital f capital i capital c capital i capital a capital l। मीरा बाई, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है h t t p s colon slash slash w w w dot y o u t u b e dot c o m slash w a t c h question mark v equal to capital o do capital g s m capital v i 3 7 s capital a and a b underscore c h a n n e l equal to capital n capital c capital e capital r capital t capital o capital f capital f capital i capital c capital a capital l। मीरा के भजन MS सुब्बुलक्ष्मी, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है h t t p s colon slash slash w w w dot y o u t u b e dot c o m slash w a t c h question mark v equal to capital e h h capital o c capital n capital j capital x capital j e capital i and a b underscore c h a n n e l equal to capital p r a s a r capital b h a r a t i capital a r c h i v e s। मीरा फिल्म 1945 भाग एक, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है https colon slash

/www.yout.co/wattch?mark.v=capital O 0 5 capital Q capital U W do U sat capital Q and A B underscore C H A N N E L equal to capital P R A S A R capital B H A R A T I capital A R C H I V E S। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है h t t p s colon slash slash w w w dot y o u t u b e dot c o m slash w a t c h question mark v equal to capital p r q n o dash c capital j capital k 0 d g and a b underscore c h a n n e l equal to capital n capital c capital e capital r capital t capital o capital f capital f capital i capital c capital i capital a capital l। पृष्ठ संख्या 139। पढ़ने के लिए। स्वामी भक्त सुमुख, पुराने समय में महिंसक राज्य में जब सकुल नामक राजा का शासन था, चित्रकूट पर्वत पर एक गुफा में हंसों का बहुत बड़ा झुंड निवास करता था। एक दिन कुछ हंस आहार की तलाश में निकल पड़े। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस आकाश में उड़ रहे हैं। एक हंस ने यह बात कही, दूसरे हंस ने कहा, वह मानुषीय कहलाता है। तो एक और हंस ने कहा, वह बहुत सुंदर है, उसमें 5 प्रकार के कमल उगते हैं। तभी तीसरे हंस ने कहा, हमारे चुगने के लिए वह आदर्श जगह रहेगी। यहाँ एक चित्र है जिसमें तीनों हंस आपस में बातें कर रहे हैं। हंसों के राजा मराल देव को तनिक संदेह था, नहीं, हमें चित्रकूट का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा मराल देव अपने साथी हंसों से कुछ कह रहा है। उसका मंत्री सुमुख उनसे सहमत था, हाँ महाराज, ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी जिस जगह का उपयोग मनुष्य करते हो वहां पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तभी दूसरे हंस ने कहा, पर एक बार जगह तो देखें। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ हंस उड़ रहे हैं और मंत्री सुमुख कुछ कह रहे हैं तथा उसका उत्तर एक अन्य हंस दे रहा है। जब हंसों की टोली ने जोर डाला, ठीक है, अगर इसी में तुम सबकी खुशी है तो हम तुरंत वहां जाएंगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा बाकी हंसों से कुछ कह रहा है। हंस टोली मानुषीय सरोवर की ओर उड़ चली। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ रहे हैं और एक हंस ने इस प्रकार कहा। पृष्ठ संख्या 140। चूंकि अनेक पक्षी उस सरोवर पर आते जाते थे, इसलिए शिकारियों का वह मन पसंद स्थान बन गया था। जब हंस टोली सरोवर पर उतरी तो हंसों के राजा के पांव आखेटक के जाल में फंस गए। यहां बाईं ओर एक चित्र है जिसमें उड़ते हुए हंस धरती पर उतर आए हैं। यहां दाईं ओर एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा का पैर शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह, मैं तो फंस गया, हंसों के राजा ने कहा, अगर मैं अभी ही चिल्ला पड़ा तो मेरे साथ ही बिना कुछ चुगे ही उड़ जाएंगे। बेचारे, यहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी लंबी उड़ान भरी है। जाल में फंसे हुए राजा हंस ने यह बात सोची। यहां एक चित्र है जिसमें
राजा हंस एक जाल में फंसा हुआ है और वह सोच रहा है।

और चुपचाप ही अपने पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मैं जितना खींचता हूँ जाल की रस्सी मेरे शरीर में उतनी ही अधिक फंसती चली जाती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस जाल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने शांति से इंतजार किया। आह, अब वे पानी में क्रीड़ा और उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने पेट भर चुग लिया होगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस कुछ सोच रहा है और पास ही कुछ हंस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तब हंसों को संकट का संकेत सुनाई दिया। आह, खतरे का संकेत, चलो जल्दी वापस चित्रकूट चलते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों ने संकट का संकेत सुना और कहा, लेकिन पुकारा किसने था? यह पता लगाने का समय नहीं है। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से उड़ जाना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टोली में केवल एक हंस ऐसा था जो उड़ जाने को तैयार न था, और वह था मंत्री सुमुख। मुझे महाराज मरालदेव दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वही तो घायल नहीं हो गए? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख कुछ सोच रहा है। चिंताग्रस्त सुमुख सरोवर पर लौट कर गया और उसने राजा को घायल और लहूलुहान अवस्था में पाया। पृष्ठ संख्या 141। चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपको बंधन से छुड़ाऊंगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख राजा हंस से कुछ कह रहे हैं, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? देखो, शेष सब के सब उड़ गए हैं। मेरे जैसे फंसे हुए पक्षी के लिए आशा ही क्या बचती है भला? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस अपने मंत्री से कुछ कह रहे हैं, मैं आपको इस स्थिति में छोड़ने की अपेक्षा आपके साथ मर जाना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे इस बलिदान से हमारा या किसी और का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? हे पक्षियों में श्रेष्ठ, संकट की इस घड़ी में आपके साथ रहना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं, सचमुच ऐसा करना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तभी देखो, आखेटक इसी ओर आ रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर से आखेटक आ रहा है और दूसरी ओर हंस राजा और मंत्री उसे देख रहे हैं। वाह, क्या सौभाग्य है, आज मेरे जाल में एक साथ दो हंस फंसे हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर आखेटक है और दूसरी ओर दोनों हंस हैं। आसपास कुछ हरियाली है, लेकिन जब वह निकट गया, अरे तुम तो मुक्त हो, फिर दूसरे हंस की भांति उड़ क्यों नहीं जाते? यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक मंत्री हंस से कुछ कह रहा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरे राजा होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी हैं, इन्हें मुक्त कर दो और हमें जाने दो। यहाँ मंत्री हंस का चित्र है, लेकिन तुम तो जब चाहो जा सकते हो। नहीं, मैं अकेले अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता, सचमुच मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक के हाथ में एक पिंजरा है और दूसरी ओर जाल में फंसे हुए राजा हंस और साथ में मंत्री हंस का चित्र है। मैं इनके समान ही आकार में बड़ा और मोटा ताजा हूँ, इनके स्थान पर अगर तुम मुझे पकड़ लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सौम्यता से किंतु दृढ़तापूर्वक बातचीत करके सुमुख आखेटक का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो गया। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस कुछ कह रहा है, मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हूँ, जाओ मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद, तुम भी सदा सुखी रहो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हाथ में पिंजरा लिए खड़ा है और वह मंत्री हंस से कुछ कह रहा है। बड़ी कोमलता से आखेटक ने हंस के फंसे हुए

को छुड़ाया और उसके जख्मों को धोकर साफ किया। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक राजा हंस को जाल से छुड़ा रहा है और उसके जख्मों को धो रहा है। पास ही उसका मंत्री हंस है और कुछ दूर एक पिंजरा रखा है। पृष्ठ संख्या 142। हे महाराज, इस आखेटक ने हमें छोड़कर हम पर बहुत उपकार किया है। यह चाहता तो हमें क्रीड़ा हंस बनाकर यहाँ के राजा को भेंट करके पुरस्कार पा सकता था, या हमें मारकर हमारा मांस बेच सकता था। आप इस आखेटक की ओर से यहाँ के राजा से बात क्यों नहीं करते? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस राजा हंस से कुछ कह रहा है, हमें अपने राजा के पास ले चलो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक अपना जाल समेट रहा है और पास ही राजा हंस और मंत्री हंस खड़े हैं। लेकिन ऐसा करना संकट से खाली नहीं है। राजा तुम्हें पालतू बनाकर बंधन में रख सकते हैं या मरवा भी सकते हैं। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, हो सकता है कि तुम्हारे राजा भी कठोर हृदय वाले ना हों। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हंसों से कुछ कह रहा है और दोनों हंस भी कुछ बात कह रहे हैं। आखेटक दोनों हंसों को राजा सकुल के पास ले गया। ये दोनों उत्तम हंस हैं महाराज, ये हंसों के राजा और उनके सेनापति हैं। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगे? यहाँ एक दरबार का चित्र है जिसमें आखेटक हाथ जोड़े राजा से कुछ कह रहे हैं। पास ही कुछ दरबारी हैं और राजा के समक्ष दोनों हंस खड़े हैं। तब आखेटक ने सारा किस्सा सुनाया। इन्हें सोने के आसन पर बैठाया जाए, इनके लिए शहद और मिश्री का प्रबंध किया जाए। यहाँ राजा का चित्र है जो कुछ कह रहे हैं। जब हंसों का खाना हो गया, हंसों मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंसों से कुछ कह रहे हैं और पीछे की ओर आखेटक खड़ा है। हे राजा, इस आखेटक ने कृपा पूर्वक हमें मुक्त किया, हम आपके पास इसे पुरस्कार दिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा मरालदेव आखेटक के राजा सकुल से कुछ कह रहे हैं। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें एक घर, रथ, भरपूर सोना दे रहा हूं और तुम्हारे लिए 1,00,000 की आय की व्यवस्था करता हूं। यहां राजा का कुछ कहते हुए चित्र है। राजा सकुल की अनुमति लेकर हंसों का राजा मरालदेव और सुमुख अपने झुंड में वापस आ गए। आप कैसे मुक्त हुए? यह सब मेरे सेनापति सुमुख की समझदारी और निष्ठा के कारण संभव हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा और सेनापति एक ओर हैं, दूसरी ओर अन्य हंस हैं। पृष्ठ संख्या 143। पढ़ने के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिटे जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।

श्याम लाल गुप्त पार्षद। यहाँ इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर और दाईं ओर चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर एक लड़का तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है और दाईं ओर एक लड़की तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है। पृष्ठ संख्या 144। शब्दकोश। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं। किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर आप यह अनुमान स्वयं लगाएं कि कौन सा अर्थ पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। कहीं कहीं शब्दों के अनेक समानार्थी भी दिए गए हैं। इससे आप प्रसंग के अनुसार अनुकूल शब्द का चयन करना सीख सकेंगे। यह शब्दकोश आपको शब्दों के ना केवल सही अर्थ जानने में सहायता करेगा, अपितु शब्दों की सही वर्तनी भी सिखाएगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका प्रसन्न मुद्रा में हैं और आसपास उनके अलग अलग अक्षर लिखे हैं। शब्द का अर्थ देने से पहले मूल शब्द के बाद कोष्ठक में एक संकेताक्षर दिया गया है। इन संकेतों से हमें शब्दों की भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। अंग अंग्रेजी, अ अव्यय, अ अरबी, अ क्री अकर्मक क्रिया, पू पुलिंग, फा फारसी, वी विशेषण, संग संस्कृत, स क्री सकर्मक क्रिया, सर्व सर्वनाम, स्त्री स्त्रीलिंग। अब आपको शब्दकोश इस प्रकार दिया गया है जिसमें वर्णों के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समक्ष कुछ अर्थ लिखे गए हैं। अक्षर अ शब्द है अकाल, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सूखा अयोग्य या अनियत काल कुसमय अनवसर परमात्मा। शब्द है अदृश्य, विशेषण संस्कृत, अर्थ है जो दिखाई न दे जो देखा ना जा सके अगोचर लुप्त गायब। शब्द है अधर, विशेषण संस्कृत, अर्थ है होंठ नीचे का ओठ अंतरिक्ष पाताल दक्षिण दिशा। शब्द है अनोखी, विशेषण अर्थ है अनूठा अद्भुत अपूर्व नया सुंदर। शब्द है अनौपचारिक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है नियम आदि का पालन ना किया गया हो। शब्द है अभिवादन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रणाम करना छोटे की ओर से बड़े को नमस्कार स्तुति। शब्द है असफल, विशेषण संस्कृत, अर्थ है विफल नाकामयाब। शब्दकोश में अगला वर्ण है आ। आ से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं। शब्द है आखेटक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है शिकारी शिकार। शब्द है आग्रही, विशेषण संस्कृत, अर्थ है आग्रह करने वाला। शब्द है आजीविका, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है रोजगार रोजी धंधा। शब्द है आमोद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है हर्ष प्रसन्नता खुशी बिखेरने और फैलने वाली सुगंध सुरभि। शब्द है आवन, पुल्लिंग, अर्थ है आगमन। पृष्ठ संख्या 145। शब्द है आवरण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है ढकना

छिपाना, घेरना, ढक्कन, पर्दा, बचाव, ढाल, चार दीवारी। शब्द है आवेश। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रवेश, दबा लेना, हावी हो जाना, गुस्सा, जोश, घमंड, लगन। शब्द है आश्चर्य। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अचरज, अचंभा, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव। शब्द है आश्रय। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है आधार, विषय, शरण, ठिकाना, घर, सहायता। शब्द है आहत। विशेषण संस्कृत, अर्थ है घायल, आघात किया गया हो, जिस पर प्रहार, मारा हुआ, हटाया। शब्दकोश का अगला वर्ण है उ। शब्द है उपवन। शब्द है उपवन। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है उद्यान, बगीचा। शब्द है उभय। विशेषण संस्कृत, अर्थ है दोनों, दोनों में से प्रत्येक। शब्द है उमग्यो। स्त्रीलिंग, अर्थ है उमंग, उल्लास, मौज, जोश, उभार, उमड़ा, आकांक्षा। शब्द है उमड़। स्त्रीलिंग, अर्थ है बाढ़, धावा, घिराव। शब्द है उर। विशेषण संस्कृत, अर्थ है हृदय, मन। शब्दकोश का अगला वर्ण है ओ। शब्द है औपचारिक। विशेषण संस्कृत, अर्थ है गौण, उपचार संबंधी, दिखाऊ। शब्दकोश का अगला वर्ण है क। शब्द है कटितट। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है कमर। शब्द है कतार। स्त्रीलिंग अरबी, अर्थ है पंक्ति, पांत, क्रम, सिलसिला, समूह। शब्द है कपोत। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है कबूतर, पंडुक, चिड़िया। शब्द है कसर। स्त्रीलिंग अरबी, अर्थ है कमी, न्यूनता, घाटा, वैर, विकार। शब्द है काक। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है कौवा, एक द्वीप, एक माप, कान। शब्द है कुंज। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान। हाथी का दांत, नीचे का जबड़ा, गुफा। शब्द है कुढ़न। स्त्रीलिंग, अर्थ है खीज, कुढ़ने का भाव, जलन, विवशता आदि की अनुभूति से होने वाला मनस्ताप। शब्द है कुल। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है वंश, घराना, गोत्र, समुदाय, श्रेणी, घर, आवास, जनपद, सब, सारा। शब्द है कोकिल। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है कोयल, अंगारा, एक तरह का सांप। शब्दकोश का अगला अक्षर है क्ष। शब्द है क्षुद्र। विशेषण संस्कृत, अर्थ है नन्हा, छोटा, तुच्छ, खोटा, ओछा। शब्दकोश का अगला अक्षर है ख। शब्द है खंजन। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो मैदानी प्रदेशों में केवल जाड़े में दिखाई देती है, लंगड़ाते हुए चलना। शब्द है खग। पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है पक्षी, सूर्य, ग्रह, वायु, बादल,

चंद्रमा बाण देवता शब्द है थता पुल्लिंग अर्थ है क्षत घाव। शब्दकोश का अगला अक्षर है ग शब्द है गावन स्त्रीलिंग अर्थ है गाने का ढंग। पृष्ठ संख्या 146 शब्द है गुजारा पुल्लिंग फारसी अर्थ है निर्वाह रास्ता घाट पुल या नाव से नदी पार करना। शब्दकोश का अगला अक्षर है घ शब्द है घंटिका स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है छोटी घंटी घुंघरू। शब्द है घनघोर विशेषण संस्कृत अर्थ है बहुत घना जबरदस्त गहरा भयंकर। शब्द है घसियारा पुल्लिंग अर्थ है घास खोदने वाला घास काटने वाला घास बेचने वाला। शब्द है घुमड़ अकर्मक क्रिया अर्थ है बादलों का इधर उधर से आकर जमा होना। शब्दकोश का अगला अक्षर है च शब्द है चकित विशेषण संस्कृत अर्थ है विस्मित हैरान शंकित घबराया हुआ भीत। शब्द है चहू विशेषण अर्थ है चारों ओर चार। शब्द है चातक पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है पपीहा सारंग। कवि संप्रदाय के अनुसार यह पक्षी केवल वर्षा बल्कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है फलतः सदैव बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। शब्द है चापलूस विशेषण फारसी अर्थ है चाटुकार खुशामदी। शब्द है चित्त पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है अंतःकरण मन अंतरिंद्रिय। शब्द है चेटी स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है दासी सेविका सेवा टहल करने वाली स्त्री। शब्दकोश का अगला अक्षर है छ शब्द है छटा स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है शोभा छवि झलक दीप्ति परंपरा बिजली। शब्द है छुटपन पुल्लिंग अरबी अर्थ है छोटापन बचपन। शब्दकोश का अगला अक्षर है ज शब्द है जलाशय पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है झील तालाब जलाधार समुद्र। शब्द है जीय पुल्लिंग अर्थ है जी मन जान चित्त जीव। पृष्ठ संख्या 147 शब्दकोश का अगला अक्षर है झ शब्द है झर पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है झरना सोता जल प्रवाह की ध्वनि ज्वाला आंच झुंड। शब्द है झलमल पुल्लिंग विशेषण अर्थ है झलमलाने का भाव अस्थिर झलमलाता हुआ प्रकाश। देख रहे हो क्या लिखा है झिलमिलाते होना चाहिए ना। शब्द है झुंझलाना अकर्मक क्रिया अर्थ है खींचना चिढ़ना बिगड़ना। शब्दकोश का अगला अक्षर है ट शब्द है ट्रैफिक अंग्रेजी अर्थ है यातायात। शब्दकोश का अगला अक्षर है ठ शब्द है ठाठ पुल्लिंग अर्थ है शान सजधज सितार का तार। शब्दकोश का अगला अक्षर है ढ शब्द है ढाल स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है तलवार भाले आदि के आघात

को रोकने का लोहे या गैंडे के चमड़े का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। आगे की ओर क्रमशः नीची होती गई जमीन। उतार, ढंग, प्रकार। शब्दकोश का अगला अक्षर है त। शब्द है तात, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है पिता, आदरणीय व्यक्ति। शब्द है ताप, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है गर्मी, ज्वर, दुख, मानसिक व्यथा, आधी, उष्णता। गर्माहट के लिहाज से किसी वस्तु की दशा, वह दशा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। शब्द है तालीम, स्त्रीलिंग अरबी। अर्थ है शिक्षा। शब्द है ताही, सर्वनाम। अर्थ है उसे, उसको। शब्दकोश का अगला अक्षर है द। शब्द है दम, पुल्लिंग फारसी। अर्थ है सांस, श्वास, पल, लहजा, क्षण, ताकत, जिंदगी, जोर। शब्द है दामिन, स्त्रीलिंग। अर्थ है दामिनी, बिजली। शब्द है दुर्जन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है दुष्ट मनुष्य, खल। शब्द है द्रोह, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है दूसरे का अनिष्ट चाहना, हिंसा, अपराध, वैर, विद्रोह। शब्दकोश का अगला अक्षर है न। शब्द है नभ, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है आकाश, आसमान, मेघ, जल, पृथ्वी आदि पांच तत्वों में से एक। शब्द है निर्भय, विशेषण संस्कृत। अर्थ है निडर, निरापद, जो किसी से भय ना खाए। पृष्ठ संख्या 148। शब्द है नूपुर, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है घुंघरू, पैर का एक गहना। शब्द है नैना, पुल्लिंग। अर्थ है नेत्र, आंख। शब्दकोश का अगला अक्षर है प। शब्द है पनघट, पुल्लिंग। अर्थ है पानी भरने का घाट। शब्द है प्रतीति। अर्थ है प्रतीति, ज्ञान, बोध, हर्ष, विश्वास। शब्द है पवन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है हवा, छलनी, पानी। शब्द है पैनी, विशेषण स्त्रीलिंग। अर्थ है जो भीतर की वस्तु को देख सके, जिसकी धार बहुत तेज हो। शब्द है प्रशिक्षण, पुल्लिंग। अर्थ है किसी व्यवसाय, कला, दौड़ आदि की व्यवहारिक रूप में लगातार कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा, ट्रेनिंग। शब्द है फरमाइश, स्त्रीलिंग फारसी। अर्थ है आज्ञा रूप में कुछ मांगना, आज्ञा, कोई चीज भेजने की आज्ञा, ऑर्डर। शब्द है फौरन, अव्यय अरबी। अर्थ है तुरंत, अभी, झटपट। शब्दकोश का अगला अक्षर है ब। शब्द है बघारना, सकर्मक क्रिया। अर्थ है छोंकना, तड़का देना, हींग, जीरा, प्याज आदि घी में कड़कड़ाकर दाल तरकारी आदि में डालना। शब्द है बसन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है वस्त्र, आवरण, ढकने की वस्तु, निवास। शब्द है बानी, स्त्रीलिंग। अर्थ है वाणी, सरस्वती, सार्थक शब्द, वचन,

जीभ, स्वर, प्रशंसा। शब्द है बिद्ध, विशेषण। अर्थ है बिंधा हुआ, छेदा हुआ। शब्द है बिसारी, सकर्मक क्रिया। अर्थ है बिसराना, भुला देना। शब्द है बेड़ी, स्त्रीलिंग। बंधन, कैदियों, हाथी, घोड़ों आदि के पावों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। शब्द है बेध, पुल्लिंग। अर्थ है छेद, मूंगे आदि में किया हुआ छेद, मोती। शब्द है बेवक्त, पुल्लिंग, अरबी। अर्थ है कुसमय, किसी समय, हमेशा। शब्दकोश का अगला अक्षर है भ। शब्द है भक्त वछल, विशेषण। अर्थ है भक्त को प्यार करने वाला, भक्त के प्रति स्नेह युक्त। शब्द है भक्षक, विशेषण संस्कृत। अर्थ है खाने वाला, भक्षण करने वाला। शब्द है भनक, स्त्रीलिंग। अर्थ है धीमी, अस्पष्ट ध्वनि, उड़ती हुई खबर। शब्द है भावन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है निमित्त, कारण, उत्पादन, रुचिवर्धन, चिंतन, कल्पना, स्मरण। शब्द है भाव भंगिमा, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है मन के विकार को व्यक्त करने वाला अंग संचालन या क्रिया। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है भौंर, पुल्लिंग। अर्थ है भ्रमर, भौंरा, मधुप, जलावर्त। शब्द है भ्रमण, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है घूमना, फिरना, यात्रा, अस्थिरता, चक्कर। शब्दकोश का अगला अक्षर है म। शब्द है मंत्र, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है सलाह, राय, गुप्त वार्ता, कान में कही जाने वाली बात, कार्य सिद्धि का गुर, स्त्रीलिंग समक्ष, बुद्धि। शब्द है मनहर, विशेषण संस्कृत। अर्थ है मन को हरने चुराने वाला, सुंदर। शब्द है मानधन, पुल्लिंग संस्कृत, विशेषण। अर्थ है मान का धनी, प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। शब्द है मुक्ति, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है आजादी, छुटकारा, मोक्ष। शब्द है मूरति, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है मूर्ति, शरीर, स्वरूप या शक्ल, प्रतिमा। शब्द है मेह, पुल्लिंग। अर्थ है वर्षा, बरसात, झड़ी, पड़ना, बरसना। शब्दकोश का अगला अक्षर है र। शब्द है रस, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है स्वाद, आनंद, प्रेम, द्रव, जल, मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव जो काव्य पाठ, अभिनय दर्शन आदि से होता है। शब्द है रसाल, विशेषण संस्कृत। अर्थ है रसीला, मीठा, मधुर, सुंदर, शुद्ध। शब्द है राजति, अकर्मक क्रिया। अर्थ है राजना, रहना, शोभित होना, विराजना। शब्द है रीसेस, अंग्रेजी। अर्थ है अल्पावकाश, मध्यावकाश। शब्द है रीति, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है नियम, झरना, टपकना, ढंग, प्रकार, तरीका, चलन। शब्द है रेवड़, पुल्लिंग। अर्थ है भेड़ों का समूह, पशुओं का झुंड, गल्ला। शब्दकोश का अगला अक्षर है ल। शब्द है

गहरा, पुल्लिंग अर्थ है लहर, मजा, आनंद, बाजों की संगत जिसमें ताल स्वरों की केवल लय होती है, बादलों का कुछ देर जोर से बरसना, एक घास। शब्द है लावन, स्त्रीलिंग अर्थ है लावनी, लावण्य, सुंदरता।

भेद, अक्षर, शब्द, स्वर। शब्द है वादक, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है बजाने वाला, बोलने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला। शब्द है विकार, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है परिवर्तन, भावना, वासना, क्षोभ, रूप, धर्म आदि स्वाभाविक अवस्था का परिवर्तित होना। शब्द है विचरण, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है घूमना फिरना, चलना, भ्रमण करना। शब्द है व्यापक, विशेषण संस्कृत। अर्थ है सर्वत्र फैला हुआ, दूर तक, जो किसी चीज के सारे विस्तार में हो। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है शाखा, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है पेड़ की डाल, दरवाजे की चौखट, बाहु, संप्रदाय। शब्द है शुक, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है सुग्गा, तोता, वस्त्र, पोशाक। शब्द है शैली, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है रीति, किसी काम के करने का ढंग, तरीका, पद्धति। शब्द है श्याम, विशेषण संस्कृत। अर्थ है सांवला, काला, कृष्ण। शब्दकोश का अगला अक्षर है स। शब्द है सदय, विशेषण संस्कृत। अर्थ है दयालु, रहमदिल। शब्द है समुझी, स्त्रीलिंग। अर्थ है समझ, बुद्धि, प्रज्ञा, विचार। शब्द है साजिंदे, पुल्लिंग फारसी। अर्थ है साज बजाने वाला, सारंगिया, तबलची। शब्द है सिद्धि, स्त्रीलिंग संस्कृत, विशेषण। अर्थ है सफलता, अभ्युदय, अनुमान, दक्षता, निपुणता, मोक्ष, लाभ। शब्द है सुखदाई, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है सुख देने वाला। शब्द है सुधा, स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है अमृत, रक्त, रस, दूध, जल, शहद, गंगा, बिजली, पृथ्वी। शब्द है सुधी, स्त्रीलिंग। अर्थ है याद, होश, चेत, खबर। शब्द है सुर, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है स्वर, आवाज, देवता, सूर्य। शब्द है सुरभि, विशेषण संस्कृत। अर्थ है सुगंधित, खुशबूदार, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विद्वान। शब्द है सूरती, स्त्रीलिंग। अर्थ है शक्ल, रूप, याद, स्मरण। शब्द है सोहता, विशेषण। अर्थ है मोहक, सुंदर। शब्द है सोहावन, अकर्मक क्रिया। अर्थ है अच्छा लगना, भला मालूम, सुंदर, शोभित होना। शब्द है स्वच्छंद, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है अपनी इच्छा, पसंद। शब्दकोश का अगला अक्षर है ह। शब्द है हसिया, पुल्लिंग। अर्थ है लोहे का धनुषाकार औजार, जिससे फसल, तरकारी आदि काटते हैं। शब्द है हठी, विशेषण संस्कृत। अर्थ है हठ करने वाला, जिद्दी। पृष्ठ संख्या 151। ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें हिंदी वर्ण व गिनती को ब्रेल रूप में अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 100

0: बावन पहेलियों के उत्तर। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें पाठ में आए हुए पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ एक, मां कह एक कहानी। प्रश्न, आज की पहेली। इन पहेलियों के उत्तर इस प्रकार हैं, मां पक्षी सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, मां पक्षी सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, गिरगिट नीला डिब्बा। पाठ चार, पानी रे पानी। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, मेह जलाशय, नीर अंबु, सर सरोवर, सलिल ताल, तटिनी बारिश, प्रवाहिनी तरंगिणी। पाठ पांच, नहीं होना बीमार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आलू का पराठा, मसाला डोसा, वड़ा पाव, ढोकला पानी पूरी, मक्के की रोटी, बाटी रसगुल्ला। पाठ सात, वर्षा बहार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़। पाठ आठ, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, रूपक लक्ष्मी, तिलवाड़ा कहरवा, झूमरा दीप चंदी, दादरा। पाठ नौ, चिड़िया। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, तोता कौआ, खंजन कोयल, कबूतर चातक हंस। पाठ दस, मीरा के पद। प्रश्न, मधुर ध्वनिया। उत्तर, बांसुरी तबला शहनाई वीणा ढोलक बीन संतूर मजीरा। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आवन घुमड़ नगर गोपाल। पृष्ठ संख्या 153, मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर इस शीर्षक से संबंधित आप अपने मन की अभिव्यक्ति को रचनात्मक ढंग से लिखिए। पृष्ठ संख्या 154, मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर भी आप अपने मन की बातों को इस शीर्षक के अनुसार रचनात्मक ढंग से लिखिए। यहां यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में। और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखे तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह टॉपिक लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर एमपी मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्रॉल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
0: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
1: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
0: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
1: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
0: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
0: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जाना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
1: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नेमा, CKP25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास के

0: कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो।
1: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
1: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
0: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
1: रोपण का कार्य वर्ष में दो बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है
0: जी। तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
1: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
0: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
1: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

0: इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3 से 4 कटाइयों प्रतिवर्ष।
1: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
0: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
0: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग हैं लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
1: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
0: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45 से 50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
0: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
0: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है।

0: और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फ़ायदे हैं और इसलिए बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फ़ायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा, और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: Ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि

बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतनी खूबसूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह के बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मोटे, आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं, या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे के मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए, और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जाती है।

सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए। और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं. दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में. तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार. मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर सब आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में.
1: नमस्कार
0: सर. सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं.
1: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है. परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती न करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं. और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं.
0: जी सर, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
1: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं. अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है. सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं. जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है. लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है. और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है. सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं. इसमें सब

0: इससे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी विधि बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुवाई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्री है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता है।
1: जी सर, धान की सीधी बुवाई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
0: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें, और समतलीकरण करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पे कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है। पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है। और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, और साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
0: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता, मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो इसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर हम धान की प्रभेद की बात करते हैं तो हम लंबी अवधि की किस्म को भी लेते हैं और साथ ही साथ कम अवधि के किस्म को भी लेते हैं। हम अगर प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी, MTU 1001, सबौर अर्जल, सहभागी, सुष्क्रमराज, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
0: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत ये मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई, और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था। और उसके

0: बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम हैं जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
1: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूँकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं सुगंधित धान ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 केजी नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 केजी आप फॉस्फोरस की मात्रा और 60 केजी पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की 1/3 मात्रा तथा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना न हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिल, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पायरेजो सल्फिरॉन, ये पायरेजो सल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पायरेजो सल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी

बस्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोफ है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है, तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुसंधान

0: जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यता क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से सामान्यता है जो कि उसकी उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है, तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से एक महीना पर पहले कर देना चाहिए। समानता हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम समानता हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं, तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज़ होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहता है कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहाँ उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में नमी उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है, तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है, तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं। अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा? देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों

0: सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा 100 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
1: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है। बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
1: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
0: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार

0: बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
1: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
2: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
1: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
2: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
3: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
2: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
3: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
2: सर जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
3: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जांपल ले और माइट का भी एग्जांपल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः

0: पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
0: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि सारे कीट के प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं। लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए, और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई, तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है, और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5-SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहे हैं, और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ। सुनो।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं

0: सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं?
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास

0: सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।

0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
3: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
3: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
3: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
3: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें

0: भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की

झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
1: आपके पास फौजी वर्दी है?
0: हाँ।
1: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
0: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़े के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है। यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यदि इधर देखो, इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा।

0: इन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास
1: जी।
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: गाड़ी रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
3: खेत की तैयारी बहुत ही महत्व

0: महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए, तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है, और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है, और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं, और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं, और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे। और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो

0: देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है, उस समय पे निलाई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है, उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं, तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तुड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर

भी सुनने हो जाते हैं। अगर इन सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है, और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है। तो अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है, और ये सारे जो लक्षण है वो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से जुड़े हुए लक्षण है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के लक्षण है। क्या होता है कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण है आपको अगर दिख रहा है तो आपके अंदर बी ट्वेल्व की कमी है, और बी ट्वेल्व की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, बी सी डी ई जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन बी सेवन की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी, तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफी डल हो जाती है। तो इन सारी चीजों का उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी सी डी ई और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में जरूर बैठें, और खास तौर से सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप जरूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा

0: इफेक्टिव मानी जाती है और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
2: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है। तो

0: बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है प्रबंधन है उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बैसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
0: जी यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है रोग के कारक है वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं पैथोजन है उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है प्रतिबंध करता है और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है ग्रोथ प्रमोशन भी करता है, तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
0: जी
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
0: जी।
1: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते हैं कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml

0: लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहाँ पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल दें कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव नियंत्रण कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े कितनी भी बारिश क्यों ना हो वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की,

0: बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस, और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू

और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो

0: मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
0: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
0: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
1: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
0: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
1: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
0: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
1: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
0: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
1: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
0: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
1: हाँ, किसी को भी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए भले लक्षण हो या ना हो।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नज़दीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
0: और भैया, ये इलाज कितना लंबा चलता है?
1: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
0: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
0: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल आरजी उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे

0: ये खतरा नहीं रहता।
1: भैया कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
0: यह भी गलत है। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर गरीब जवान बुजुर्ग किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
1: भैया ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
0: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज, यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
1: भैया और जो लोग इलाज कराते भी हैं उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते।
0: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है, इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: भैया लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
0: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है, जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है, ऊपर से 1,000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है।
1: पर भैया कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
1: तो सेहतिया भैया अगर हम एक लाइन में कहें तो
0: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
1: और भैया टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
0: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
1: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए, आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
0: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था, उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
1: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
0: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी, पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है, उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
0: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीवी कोई शर्म की बात नहीं।

0: यह इलाज योग्य बीमारी है, जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाई जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: साथियों आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
5: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद उमा।
1: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
3: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से

0: जानते हैं बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो है नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
1: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
0: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं, इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं, उस वहां पे जा करके या फिर खुद ही इंटरनेट पर से इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है, वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
1: जी,
0: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है, जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। और फिर इसमें 5,00,000 रुपए का अनुदान और 5,00,000 का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग के महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं

0: के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50-80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
1: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और अंत में आप महिला किसान, खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सके।
1: जी मैम बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं, और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी मैम कि कृषि सखी, सरकार द्वारा एक पहल चल रही है कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र, जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं, वहाँ जा कर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या

0: कृषि कार्यालय हो वहां जा करके, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पे जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में

खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 एफएम ग्रीन पर. आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे. और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम. और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद. तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी. हमारे किसान भाइयों के लिए हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी. और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में.
1: जी धन्यवाद.
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है. तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है. वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं. तो बिल्कुल आप जान सकते हैं. तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं.
1: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है. ख़ास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है. विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है. साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं. और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूल गोभी में ज़्यादा पाए जाते हैं. और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूल गोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम फूल गोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है. तो फूल गोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं.
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से. फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं.
1: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: जी जी.
1: वो चाहे कोई भी फसल हो तो इसी प्रकार से जो फूल गोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं. इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है. तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम.
0: अच्छा.
1: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुवारी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है. तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं. उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है. इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं. और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं,

0: पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी मागी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज हैं जो हम बचेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपके खेत के हिसाब से, कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
0: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है, और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
0: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष तो
0: जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं। अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पिछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए, और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं।

0: कि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा,
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, वैरायटी
1: टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
0: जी, अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
0: बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए, डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए।
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको, जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो, एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120-80-80 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद, जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए।

0: सूखे खेत में, और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फोट से फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन, बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबा कर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूलगोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूलगोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बना रहता है,
0: फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
1: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो

0: फफूंद जो हैं जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं, और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी।
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस्में उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए, और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर व्हिपटेल।
0: अच्छा।
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। व्हिपटेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं व्हिपटेल?
1: हाँ, व्हिपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
0: अच्छा।
1: तो उसको व्हिपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा।
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
0: नुकसान पहुंचा,
1: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला।

होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, अच्छा। या तो फॉर्मल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं, तो आप उसे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेवेस्टिन नाम की दवाई आती है, उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर

0: पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएं होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौधे की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर होंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगे आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप

मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना जरूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, खास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए, किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझे और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के
के लिए, उस संस्था के लिए जरूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र या फिर

की आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है, जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें, तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गए होंगे कि बिल्कुल परेशान होंगी। तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं, और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कर आती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के, अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं, और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं, और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी जमीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीजें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ।

0: वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है
1: या फिर यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमजोर
0: हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
1: तो मैम इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्वों से भरपूर, पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है, सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है, गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं, पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम जेली केचप ये सब बनाया जा सकता है, और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
1: वैसे देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाएं, मिर्च के पौधे हो जाएं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतरकर बाहर आकर हम बात करें शहरों की, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वज़न वाले जो फल या सब्जी ना हो वैसे पौधे लगाने लगे हैं। आप उनकी टेरेस पर छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वज़न वाले जो फल हैं जो सब्ज़ी हैं आप लगा सकते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ हैं इसके। और मैम अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
0: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज़्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुंच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है।
1: जी,
0: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके।

0: ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे तीन तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छपन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई चौथी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए, जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के दो कोनों पर गड्ढों होने चाहिए, जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो, जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए, ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए, जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसल स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए, जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
1: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
1: अच्छा।
0: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
1: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। और इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
1: अच्छा।
0: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवें प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी, दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर, अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट ककड़ी आदि लगा सकते हैं, और जून से अगस्त के बीच

0: हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छपन कद्दू, परवल, करेला, मैंने पहले भी बताया, को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं अपने घर के आगे, जो बची खुची ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जी

की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 cc को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIE

आईआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले।

0: थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए।

0: उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो

0: कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
1: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
2: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
1: आजा खेलते हैं।
2: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
3: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
2: अच्छा वो क्या?
3: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ दूसरा क्या?
3: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
1: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें।

0: और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन से लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ,
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यदि इधर देखो, इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: बिल्कुल। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर हो। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: अजी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, मारी

0: रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर। स्टैंड गन से गोलियों के

बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए, तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।

0: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके जाम। मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
2: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, वर्मी कंपोस्ट जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया

0: का कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है
1: जी।
0: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थिनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना, तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं
1: जी। तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थिनियम की। तो सर इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: देखिए पार्थिनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
1: अच्छा,
0: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है।
1: अच्छा।
0: यदि हम पार्थिनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फास्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहां जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 ppm पाया जाता है, लोहा 528 ppm पाया जाता है, तांबा 8 ppm पाया जाता है, मैग्नीज 161 ppm पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय ये पोषक मान पाया गया
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं पार्थिनियम की, और अगर डॉक्टर साहब यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थिनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
0: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा
1: जी।
0: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा तो निश्चित रूप में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान समानता कम होता है पार्थिनियम की तुलना में
1: जी।
0: तो इसी तरह से यदि हम पार्थिनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं उसका पोषक मान ज्यादा होता है तो उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थिनियम और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं और 60% गोबर प्रयोग करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इस सब के पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थिनियम में यदि प्रयोग हम करते हैं तो पार्थिनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थिनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808% यानी 0.8 के यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थिनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थिनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए आपको

0: दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फॉस्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको 0.8% से ऊपर फॉस्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थिनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास ये और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे हैं हम पार्थिनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें, हम वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थिनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थिनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थिनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थिनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम से क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए। 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 3-4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को 3-4 दिन के लिए रोक दीजिए, और सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे।
1: अच्छा।
0: वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है, तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा। इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है, कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहां पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे। इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहां पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, 1-2 हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहां पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं, तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है, इस ढंग से करके जब आपने हाँ इसमें एक चीज बताया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो, इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप में आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया

0: प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। कृषि
2: सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस, यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है, अच्छा करने का और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है, और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस

होता क्या है? एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमज़ोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है। तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे। तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप, अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं। तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपका दिमाग ही, आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे, और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है।
तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे

दिखता है तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग खत्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे में आप अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीजें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है। आपने इससे पहले बहुत ज्यादा सोचा है, बहुत ज्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है। क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीजें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीजें नहीं होती है। कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है। पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं। आप एंजाइटी आपको होती है तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमजोर कर देता है। और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज़ जो तरक्की की है, आपने हर रोज़ जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं,
अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ

परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। और एग्जाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें प्रभावित होगी। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद ले, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि जो एग्ज़ाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उसे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

0: अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: കൃഷി. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में बिल्कुल आज एक खास विषय लेकर आए हैं, मिट्टी के उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय. मिट्टी बहुत ज़रूरी है हमारे खेती के लिए, और अगर इसमें उर्वरता ज़्यादा रहेगी तो हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती आसानी से कर पाएंगे और खेती में कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी. फसलें भी जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर रहेंगी. तो चलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को लेकर डॉक्टर निशा कुमार आई हुई है हमारे साथ हमारे स्टूडियो, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: थैंक यू.
0: मृदा उर्वरता क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सबसे पहले.
1: मृदा उर्वरता से तात्पर्य उसकी उस क्षमता, मिट्टी की उस क्षमता से है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा व उपलब्ध अवस्था में आपूर्ति करता है. साथ ही मृदा किसी दुष्प्रभाव या विषैले प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो ये सुनिश्चित करता है. मृदा उर्वरता से हमें उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता के स्तर का बोध होता है. मृदा उर्वरता सामान्यतः मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर निर्भर करती है. हमारे देश की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा है. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में फास्फोरस की भी व्यापक कमी महसूस की गई है, तथा साथ ही विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ते, लोहे तत्व की कमी भी हमारे देशों में मुख्य रूप से देखी गई है. कुछ क्षेत्रों में जिंक की कमी भी बहुत ज़्यादा उग्र होती जा रही है. जिंक युक्त उर्वरकों का उपयोग किए बिना फसल उत्पादन असफल होता देखा गया है. धान जैसे धान में खैरा रोग और गेहूं के पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना जिंक की कमी के कारण होता है. हमारे देश में जिंक की कमी विशेष रूप से चूना युक्त मृदाओं व खराब जल निकासी वाली मृदाओं में पाई जाती है.
0: ये जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, ये घटती क्यों है, इसके बारे में बताएं.
1: मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने के बहुत कारण है. जैसे आज खेती में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण

0: कुछ सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की मृदा में कमी होती जा रही है। बिना मिट्टी परीक्षण के उर्वरकों व खादों के बिना सोचे समझे अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण उपयुक्त समस्याएं आ रही है। किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग करने पर पोषक तत्वों की आपसी क्रिया के कारण अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे साथ ही खेतों में गोबर की खाद व पशुओं के मल मूत्र तथा बिछावन का बहुत कम प्रयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। इनकी उपस्थिति में मृदा में होने वाले विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधे को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है, जबकि इनका आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। किसानों द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की उपज प्रभावित होती जा रही है। साथ ही अत्यधिक जुताई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, और साथ ही फसलों का अवैज्ञानिक चक्रण के कारण भी मृदा की उर्वरता घट रही है। इसके साथ साथ देखा गया है बिना मृदा परीक्षण के अभाव किए बिना ही उर्वरकों का अनिश्चित रूप से प्रयोग किए जाने के कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट रही है।
1: ये जो मृदा की उर्वरता है उसमें पीएच का क्या महत्व है?
0: मृदा उपजाऊपन और मृदा पीएच में एक घनिष्ठ संबंध है। सामान्यतः खनिज मृदाओं का पीएच मान 3.5 से 10 के बीच होता है। उदासीन मृदाओं का पीएच 7 के आसपास होता है। कृषि योग्य मृदाओं का पीएच 4 से 8 तक होता है। सभी पौधों की पीएच आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। मृदा पीएच के बढ़ने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीज इसमें प्रमुख है, जबकि पीएच के अत्यधिक बढ़ने से मोलिब्डेनम अधिक उपलब्ध होता है। मृदा पीएच के घटने से जैसे 5.5 से 5.5 के मध्य अगर रहता है तो एल्युमिनियम तथा मैग्नीज अधिक घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर भी मृदा पीएच का सीधा प्रभाव पड़ता है। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता मृदा जीवाणुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। जब मृदा पीएच 6 से 7 के बीच होता है तो नाइट्रीकरण की क्रिया अधिक तेजी से होती है। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए भी मृदा पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, जबकि पोटाश की उपलब्धता पर मृदा पीएच का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी, अब बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को हम कैसे बेहतर बनाएं।
0: फसल उत्पादन के लिए योजना बनाने से सबसे पहले महत्वपूर्ण है मृदा परीक्षण। यह हर साल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन साल में 3 से 4 बार एक बार किसान निहित पोषक तत्वों की सामग्री के लिए विशेष प्रबंधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर अपनी मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। किसान मृदा परीक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार फसल नियोजन करे। साथ ही यदि मिट्टी में पीएच कम है तो मिट्टी की सीमित करना आवश्यक है। जैसे सीमित करने में मिट्टी में कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पोषक तत्वों को जोड़कर मिट्टी की पीएच को बढ़ाने की प्रक्रिया है। दूसरा है मिट्टी में लवणता। अगर मिट्टी में घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता को इंगित करती है और वे पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी के ऊपर जाने में बाधा डालती है। अच्छी गुणवत्ता वाली सिंचाई के पानी से मिट्टी को बार बार लीचिंग करके लवणता को कम किया जा सकता है। मिट्टी में सोडिसिटी तब होती है जब मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सापेक्ष उच्च मात्रा में सोडियम होता है, और कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त उर्वरकों के आवेदन से इसे कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला है मिट्टी के कटाव, लीचिंग, वाष्पीकरण आदि के माध्यम से पोषक तत्वों के नुकसान को कम करना, और दूसरा है मिट्टी में कार्बनिक स्रोतों को जोड़ना। कार्बनिक स्रोतों में जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करके कर सकते हैं, संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन है, साथ ही मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व का पहचान करके हम उर्वरक का सही उपयोग कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हरी खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके। साथ ही हम किसान भाई खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद ही मिट्टी में

0: उर्वरकों के का प्रयोग करना चाहिए
1: जी। इसके बाद बात करते हैं, आपने कहा था कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से हम इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, तो ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: यह मिट्टी में केवल अकार्बनिक उर्वरकों का एकमात्र उपयोग मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता को कम कर देती है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार करने में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में अत्यधिक प्रभावी है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों का एक साथ उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अकार्बनिक उर्वरक जैसे DAP, यूरिया, म्यूरेट और पोटास के साथ साथ कुछ जैविक स्रोतों जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, पशु खाद को जोड़ना है। यह कार्बनिक स्रोत न केवल मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता स्तर को भी बढ़ाता है। शोध रिपोर्टों से पता चलता है कि मिट्टी की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को केवल अकार्बनिक उपयोग की तुलना में कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों स्रोतों के संयोजन के साथ लगभग 35-50% तक बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उन्नत उर्वरता वृद्धि के कारण जैविक और अकार्बनिक उर्वरक के संयुक्त उपयोग के साथ फसल की लगभग 40% अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करती है। मिट्टी में कार्बनिक स्रोत को जोड़ने से मिट्टी की जैविक गतिविधि में भी सुधार होता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है
1: जी। मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है?
0: मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थों की मात्रा का वृद्धि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों, मृदा संरचना, मृदा ताप, जल धारण क्षमता, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या, फसल गुणवत्ता व मृदा उर्वरता इत्यादि पर प्रमुख प्रभाव होता है। मृदा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फसल उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता और मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी खाद, हरी खाद, फसल अवशेष इत्यादि का समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरा, खेती में जैविक उर्वरकों जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, नील हरित शैवाल, फॉस्फोबैक्टीरिया, अजोला व माइक्रोराइजा का प्रयोग करके भी मृदा उर्वरता को बढ़ाने में लाभदायक पाया गया है। जहां पर सघन खेती की जा रही हो वहां आवश्यक हो जाता है कि 2-3 साल में एक बार हरी खाद की फसल जैसे सनई, ढैचा, मूंग या ग्वार अवश्य उगाई जाए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही मृदा उर्वरता में भी सुधार होता है। परिणाम स्वरूप अगली फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जल धारण क्षमता तथा फसलों में जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी मृदा उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसलों के साथ दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में यौगीकरण कर नाइट्रोजन की मात्रा की को बढ़ाती है। साथ ही समृद्ध एवं टिकाऊ खेती के लिए मृदा में रुझान इशोर किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत किसान नीम की खली व पत्तियां फसल कटाई उपरांत फसल अवशेष खेत में दबाकर अपनी जमीन का उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भूमि में जीवांश पदार्थ की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।
1: संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: किसान भाई अपने खेत में फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करें, इसके बाद ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इससे फसल के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के भंडार भी बढ़ेंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में संतुलित पोषण की मुख्य भूमिका है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहे, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा के प्रयोग से फसल को फायदा होता है। साथ ही यदि इन पोषक तत्वों को मांग से अधिक मात्रा के प्रयोग से पौधों में विशेषता हो सकती है। एक पोषक तत्व के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित अन्य तत्व के अवशोषण को प्रभावित करती है। जैसे कि मान ले फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक ना हो तो पौधे में नाइट्रोजन की प्रति अनुक्रिया कम होती रहती है। तो वही अगर नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस एवं पोटेशियम को उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई की गंधक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में गहन खेती के प्रचलित होने के साथ ही एक तत्व की अधिक मात्रा वाले उर्वरक को अधिक उपयोग में लिया जाता है, जिनमें गंधक का स्तर या तो बहुत कम होता है अथवा शून्य होता है। इसी कारणवश भारत के अधिकांश उपजाऊ भूमियों में इसकी कमी देखी गई है। गंधक के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। वर्तमान समय में पौधों

0: में वृद्धि तथा उत्पादन को कम करने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म तत्वों में जस्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो विस्तृत रूप से सभी गहन कृषि वाले क्षेत्रों में आवश्यक स्तर से कम है। भारत के सभी धान गेहूं वाले क्षेत्रों में जस्ते की उपयुक्त मात्रा डालने से उत्पादन में दर्शनीय वृद्धि देखी गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में डालकर अथवा पर्णीय छिड़काव द्वारा दूर किया जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है अपितु पोषक तत्व उपयोग क्षमता व जल उपयोग क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है, जो अंततः कृषि के लाभ को बढ़ाता है। इसीलिए फसल उत्पादन से अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी 17 आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टिकाऊ खेती के लिए पौधों को उचित वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा एवं सही अनुपात में होना अनिवार्य है।
1: भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपचार करना चाहिए?
0: कृषि में पाए जाने वाले विभिन्न मित्रों कीट जैसे परजीवी परभक्षी एवं कीड़ों एवं बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को कीट व्याधि नियंत्रण हेतु प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म अंड परजीवी है जो तना छेदक फली छेदक व पत्ती खाने वाले कीटों के अंडों पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद को भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों में नियंत्रण के काम लेते हैं। इसको जड़ गलन उकटा व नर्सरी में पौधों का सड़ना इत्यादि रोगों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज व भूमि उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व भर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भूमि में डालने से विभिन्न मृदा जनित रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इससे कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से भूमि को बचाया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे एक खास वार्ता मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उपाय, और इसमें बहुत सारी बातें बढ़ाई गई हैं कि तरीके क्या कुछ हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के, और मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है, और किस तरीके से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हो या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हो, इसके बारे में भी आपको बताया गया। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: आना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड्स धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है।

है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो

लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर पीसीओएस जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है, और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ। तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो, या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हैवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं। तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है, और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है, और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और खास तौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा तेज पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहा है, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हों। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट ख़राब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन

0: केसेस में ये हेल्थ इश्यूज के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, मैं आर जेनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें, और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है, और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
4: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
3: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में, और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और उनसे क्या क्या लाभ है उनके बारे में बताएं।
4: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
3: मैग्नीशियम
4: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 ग्राम मिलीग्राम।

0: विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
1: जी।
0: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण, मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
1: जी।
0: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित जो पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेट एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
0: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं। इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स, जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाज़ार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर

0: पर मींस फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मींस करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मींस उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं। और ये समय जो है चार घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है। तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान, उसको सुखा लेंगे। जब ताप उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है, मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें दो रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है, जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो, उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है, तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है, पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडर टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16 से 20% के लगभग में रखना होता है। और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं, जिससे कि हम लोग वो मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है, और आफ्टरवर्ड क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स करने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लेक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने, और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल

नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और कल आपके कोर्स ABP 1-1 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम है। हम 90.8 FM ग्रीन पर लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिवीजन। रेडियो रिवीजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ ABP 1-1 इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि पता है कि आपको कल आपका एग्जाम है।

टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके संबंधित मैं यहाँ उपस्थित हूँ और थोड़ा सा मैं कोर्स क्या पढ़ाया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो जहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीशन की बात है, तो इसमें आपके मोर देन हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्वेश्चन में आपका जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने टैकल करना है, और क्या कोर्स कंप्लीट हो गया जिससे क्वेश्चन आएगा मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। तो इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट से बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तीन टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये कवर हो चुका हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन वगैरह बनाया गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप लोगों ने पूरे अच्छे से देखा हुआ है स्लाइड्स में और डिस्कस किए हुए हैं इसको पूरे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको जो मैं सिलसिलेवार से बताता हूँ आपको कि एनवायरमेंटल स्टडीज में जो आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके अंदर में आपको जो पढ़ाया गया है वो है, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसमें कुछ डेफिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से उसको कंजर्वेशन की जाती है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया है जो उसके ऊपर प्रकाश डाला गया था क्लास में, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और कहां कहां पर है, और थ्रेट्स क्या है, क्या कारण है, कंजर्वेशन कैसे की जाती है, क्या क्या क्या मेथड है, जिसमें आपको इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड बताया गया था, और थ्रेट्स क्या थे, उसके क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने में क्या कारण है, वो सारी चीज़ों को आपको जिक्र किया गया है इन सीटू और एक सीटू कंजर्वेशन में, आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब को जिक्र किया गया है, और एक सीटू कंजर्वेशन में आपको बोटेनिकल पार्क जैसे हो जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे सीड बैंक हो गया, ये सब जीन बैंक हो गया, ये सब को आपको विस्तार में बताया गया है। तो क्वेश्चंस आपका जो आएगा इसमें इसी सब टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जैसे हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए जो बनाया गया है उसके बारे में जिक्र की गई है, कितने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये सब की जानकारी है, कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन लेटेस्ट जिसको बनाया गया है, सबसे पहला कौन सा बनाया गया है, हॉटस्पॉट्स कितने हैं अपने इंडिया में, और कहाँ कहाँ पर है, क्या उनके उनके अपने एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं, फ्लोरा और फौना, और फंडामेंटल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का, उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना है। इससे संबंधित आपको क्लास में जिक्र में किया गया है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है, स्लाइड्स पर भी बताया गया, स्लाइड भी प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे टाइप के पोल्यूशन जो है उनको उनका कारण क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, उसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं के टर्म पर आपको छोटे छोटे डेफिनेशन जो है वो आ सकते हैं आपको कि कारण क्या है उनका, थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी, लाइट पोल्यूशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रख लेनी होगी, मराइन पोल्यूशन के बारे में भी, और सोर्स क्या है पोल्यूशन का, जिसमें आपका जिसके वजह से जैसे एयर पोल्यूशन में हो गए, तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और इंडिकेटर्स जो होते हैं आपका इंडिकेटर्स प्लांट्स जैसे हो गए, वो सब के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। तो ये दो टॉपिक्स में से आपको ये सब जितने मैंने सब टॉपिक्स बताए उनको आप कवर कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें तो बहुत विस्तार में आपको सारे एज ए होल आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, तो सारे डिजास्टर्स में उनका कारण क्या होता है और कितना इम्पैक्ट करते हैं हर डिजास्टर्स में, फ्लड हो गया, चाहे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गए, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनको सारे के कारण बताए गए हैं आपको, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने लेवल पर वो डिजास्टर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, चाहे पूरे एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और उनका डिजास्टर्स की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। तो उसमें आपको जिस तरीके से बताया गया था प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसमें रिकवरी कैसे की जाती है आफ्टर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको रिस्पॉन्स होता है, ये सब के बारे में आपको पूरे एज ए होल आपको डिजास्टर्स बताया गया है। इंडिविजुअल डिजास्टर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे आपका फ्लड्स के बारे में था तो फ्लड का कारण क्या होता है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, किस किस रीजन में किस किस रिवर की वजह से फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती हैं, बारिश कहाँ कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो उनका इम्पैक्ट किस रीजन में पड़ता है,
सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें फिर आपको जब मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि फ्लड ये डिजास्टर से पहले हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिपेयरनेस क्या होगी, और अगर डिजास्टर के टाइम पर ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको प्रिकॉशन

0: लेने हैं, क्या क्या मेजर्स जो है उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एंड आफ्टर डिजास्टर्स क्या हम लोग उसको करेंगे ताकि रिकवरी जो है सुटेबल हो जाए, और वहाँ पर जैसे लोगों को रिहैबिलिटेशन कराना हो तो उनमें रिक्रिएशन की बात आती है, रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो वो सारी चीज़ों को आपने उसमें ये करना है, लिखना है। जहाँ तक आपको क्वेश्चन पैटर्न्स की बात है, तो आपके क्वेश्चन पैटर्न्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, डिफरेंशिएशन की बात आएगी, डिफरेंशिएट बिटवीन दो टर्म्स दिए होंगे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और लास्ट जो होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आपका 4 मार्क्स का होगा, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 मार्क्स के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका 4 ही मार्क्स का होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये सारे जितने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप थोरली स्टडी कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स भी होगा आपका 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 2 ही मार्क्स का है। तो जो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स, वो टोटल मिला के आपका 8 मार्क्स का होगा। और जहाँ तक इसमें शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिजास्टर। तो डिजास्टर्स के अंदर में आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या मैनमेड डिजास्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोरो स्टडी करना है, एक एक टर्म्स को एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि आप उसमें शॉर्ट नोट्स का, इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस बार हटाया गया है क्योंकि पैटर्न में दिया गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स में आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 क्वेश्चन होगा उसमें आपको, मतलब ज़्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, 6-7 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर में आपको 5 को करना है। और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन में आएगा आपका 2 क्वेश्चन होगा, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन उसमें भी दिए जाएंगे ताकि एक ऑप्शन आपको रहे। और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो भी 2 ही क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका 2 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हुआ है। तो जहाँ आप देखिए कि शॉर्ट नोट्स में हम लोग जो बोल रहे हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में उसको नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन के अंदर में आप उसको, उसका जो क्रक्स है एकदम जो बुलेट पॉइंट्स में उसको जो मेन बात उसमें लिखनी है वही बात को लिखिए, ज़्यादा उसमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, समय का नष्ट होगा। पेपर जो आपका होता है 1 घंटे का ही होता है, तो समय का इसमें अभाव हो जाता है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से आपको करना है। जो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है तो आप उसको कॉलम वाइज बना दीजिए, उसमें 2 से 3 पॉइंट जो होता है, चूंकि ये क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है तो कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए जो दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें, और ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें, बुलेट पॉइंट्स में उसको भी लिखिए, क्रिटिकल जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बीच में, तो उनको आप उस तरीके से ही जवाब दीजिएगा ताकि ज़्यादा लंबा उम्र करने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, राइटिंग वगैरह ठीक ठाक से लिखे ताकि नज़र पड़े कि आप कहना क्या चाहते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो उसमें आप 5 से 6 लाइन के बीच में ही आप उसको जस्टिफाई करिए जो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का होगा वो, जिसमें आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक क्वेश्चन का एक फिल इन द ब्लैंक्स का 0.5 मार्क्स होगा, तो 4 मार्क्स हो गया आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका अगेन 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4ों का 0.5 मार्क्स ही होगा उसका, तो टोटल 2 मार्क्स हो गया उसका। और ट्रू फॉल्स में भी वही क्वेश्चन जो होगा 4 होगा, 0.5 मार्क्स का एक होगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग आपको 7 क्वेश्चन देंगे, उसमें हर एक का एक एक मार्क्स का ही होगा, तो 2-3-4 लाइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने बताना है। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वाला भी जो होगा आपका 1.5 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 को अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट आंसर टाइम भी आपका जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें 2 को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको 6 से 7 लाइन के अंदर में जस्टिफाई करना है, क्रक्स ऑफ द आंसर देना है, इधर उधर घुमा के मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप खुद भी कन्फ्यूज रहेंगे और टीचर को भी होगा, उसको भी दिक्कत होगा उसको मार्क्स फेचिंग करने में। तो इस तरीके से आप इस सारे टॉपिक को जो मैंने बताया आपके सिलेबस में, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक को आपका कोर्स से ब्रेकअप दिया गया है, उसके अंदर में टॉपिक्स बड़े बारीकी से लिखा गया है, उसको एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से और उसको पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपको ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों कल जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, घबराना नहीं है।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। आप जुड़े हैं 90.8 एफएम ग्रीन से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु के एस रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल

0: वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी, रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया, अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बद्दूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: तो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और कल आपके कोर्स ABP 1-1 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम है। हम 90.8 FM ग्रीन पर लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिवीजन। रेडियो रिवीजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके कोर्स लीडर डॉक्टर अवधेश पाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ ABP 1-1 इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि पता है कि आपको कल

आपका एग्जाम है मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके संबंधित मैं यहाँ उपस्थित हूँ और थोड़ा सा मैं कोर्स क्या पढ़ाया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। तो जहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीशन की बात है, तो इसमें आपके मोर देन हाफ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्वेश्चन में आपका जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने टैकल करना है, और क्या कोर्स कंप्लीट हो गया जिससे क्वेश्चन आएंगे मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। इसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट से बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तीन टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये कवर हो चुका हुआ है, इसी से आपको क्वेश्चन वगैरह बनाया गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप लोगों ने पूरे अच्छे से देखा हुआ है स्लाइड्स में और डिस्कस किए हुए हैं इसको पूरे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपको जो मैं सिलसिलेवार से बताता हूँ आपको कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसके अंदर में आपको जो पढ़ाया गया है वो है, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसमें कुछ डेफिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के, और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से उसको कंजर्वेशन की जाती है, बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया है जो उसके ऊपर प्रकाश डाला गया था क्लास में, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पर है, और थ्रेट्स क्या है, क्या कारण है, कंजर्वेशन कैसे की जाती है, क्या क्या क्या मेथड है, जिसमें आपको इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड बताया गया था, और थ्रेट्स क्या थे, उसके क्या कारण है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने में क्या कारण है, वो सारी चीज़ों को आपको जिक्र किया गया है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब को जिक्र किया गया है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको बोटेनिकल पार्क जैसे हो जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे सीड बैंक हो गया, ये सब जीन बैंक हो गया, ये सब को आपको विस्तार में बताया गया है। तो क्वेश्चंस आपका जो आएगा इसमें इसी सब टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें जैसे हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, डिफरेंट एनिमल्स को बचाने के लिए जो बनाया गया है उसके बारे में जिक्र की गई है, कितने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये सब की जानकारी है, कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन लेटेस्ट जिसको बनाया गया है, सबसे पहला कौन सा बनाया गया है, हॉटस्पॉट्स कितने हैं अपने इंडिया में, और कहाँ कहाँ पर है, क्या उनके उनके अपने एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं, फ्लोरा और फौना, और फंडामेंटल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का, उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना है। इससे संबंधित आपको क्लास में जिक्र में किया गया है और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है, स्लाइड्स पर भी बताया गया, स्लाइड भी प्रोवाइड किया गया है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे टाइप के पोल्यूशन जो है उनको उनका कारण क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, उसमें डिफरेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं के टर्म पर आपको छोटे छोटे डेफिनेशन जो है वो आ सकते हैं आपको कि कारण क्या है उनका, थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी, लाइट पोल्यूशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रख लेनी होगी, मैराइन पोल्यूशन के बारे में भी, और सोर्स क्या है पोल्यूशन का, जिसमें आपका जिसके वजह से जैसे एयर पोल्यूशन में हो गए तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और इंडिकेटर्स जो होते हैं आपका इंडिकेटर्स प्लांट्स जैसे हो गए, वो सब के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताया गया है। तो ये दो टॉपिक्स में से आपको ये सब जितने मैंने सब टॉपिक्स बताए उनको आप कवर कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें तो बहुत विस्तार में आपको सारे एज ए होल आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, तो सारे डिजास्टर्स में उनका कारण क्या होता है और कितना इम्पैक्ट करते हैं हर डिजास्टर्स में, फ्लड हो गया, चाहे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गए, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इनको सारे के कारण बताए गए हैं आपको, उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कितने लेवल पर वो डिजास्टर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, चाहे पूरे एनवायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और उनका डिजास्टर्स की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। तो उसमें आपको जैसे जिस तरीके से बताया गया था प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसमें रिकवरी कैसे की जाती है आफ्टर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर्स क्या क्या आपको रिस्पॉन्स होता है, ये सब के बारे में आपको पूरे एज ए होल आपको डिजास्टर्स बताया गया है। इंडिविजुअल डिजास्टर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे आपका फ्लड्स के बारे में था तो फ्लड का कारण क्या होता है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, किस किस रीजन में किस किस रिवर के वजह से फ्लड की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, बारिश कहाँ कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो उनका इम्पैक्ट किस रीजन में पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसमें फिर आपको जब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि फ्लड ये डिजास्टर से पहले हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिपेयरनेस क्या होगी, और अगर डिजास्टर के टाइम पर ड्यूरिंग डिजास्टर्स

0: क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या मेजर्स जो है उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एंड आफ्टर डिजास्टर्स क्या हम लोग उसको करेंगे ताकि रिकवरी जो है सुटेबल हो जाए, और वहाँ पर जैसे लोगों को रिहैबिलिटेशन कराना हो तो उनमें रिक्रिएशन की बात आती है, रिकन्स्ट्रक्शन की बात आती है, तो वो सारी चीज़ों को आपने उसमें ये करना है, लिखना है। जहाँ तक आपको क्वेश्चन पैटर्न्स की बात है, तो आपके क्वेश्चन पैटर्न्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, डिफरेंशिएशन की बात आएगी, डिफरेंशिएट बिटवीन दो टर्म्स दिए होंगे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और लास्ट जो होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आपका चार मार्क्स का होगा, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो चार मार्क्स के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका चार ही मार्क्स का होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये सारे जितने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप थोरली स्टडी कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स भी होगा आपका दो मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दो ही मार्क्स का है। तो जो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स, वो टोटल मिला के आपका आठ मार्क्स का होगा। और जहाँ तक इसमें शॉर्ट नोट्स की बात आती है, तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिजास्टर। तो डिजास्टर्स के अंदर में आपका जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या मैनमेड डिजास्टर्स हैं उनके बारे में आपको थोरो स्टडी करना है, एक एक टर्म्स को एक एक टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि आप उसमें शॉर्ट नोट्स का, इसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन इस बार हटाया गया है क्योंकि पैटर्न में दिया गया था कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स में आपका पांच क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो पांच क्वेश्चन होगा उसमें आपको, मतलब ज़्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, छः सात ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर में आपको पांच को करना है। और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन में आएगा आपका दो क्वेश्चन होगा, डेढ़ मार्क्स का एक क्वेश्चन डेढ़ मार्क्स का होगा, तीन क्वेश्चन उसमें भी दिए जाएंगे ताकि एक ऑप्शन आपको रहे। और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो भी दो ही क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका दो क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हुआ है। तो जहाँ आप देखिए कि शॉर्ट नोट्स में हम लोग जो बोल रहे हैं कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में उसको नहीं लिखना है, तीन से चार लाइन के अंदर में आप उसको, उसका जो क्रक्स है एकदम जो बुलेट पॉइंट्स में उसको जो मेन बात उसमें लिखनी है वही बात को लिखिए, ज़्यादा उसमें लंबा करने की जरूरत नहीं है, समय का नष्ट होगा। पेपर जो आपका होता है एक घंटे का ही होता है, तो समय का इसमें अभाव हो जाता है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से आपको करना है। जो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन है तो आप उसको कॉलम वाइज बना दीजिए, उसमें दो से तीन पॉइंट जो होता है, चूंकि ये क्वेश्चन आपका डेढ़ मार्क्स का है तो कम से कम तीन पॉइंट होना चाहिए जो दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करे, और ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें, बुलेट पॉइंट्स में उसको भी लिखिए, क्रिटिकल जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बीच में, तो उनको आप उस तरीके से ही जवाब दीजिएगा ताकि ज़्यादा लंबा उम्र करने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, राइटिंग वगैरह ठीक ठाक से लिखे ताकि नज़र पड़े कि आप कहना क्या चाहते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आपका दो मार्क्स का है, तो उसमें आप पाँच से छः लाइन के बीच में ही आप उसको जस्टिफाई करिए जो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके चार क्वेश्चन रहेंगे, चार मार्क्स का होगा वो, जिसमें आपको आठ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक क्वेश्चन का एक फिल इन द ब्लैंक्स का 0.5 मार्क्स होगा, तो चार मार्क्स हो गया आपका। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका अगेन चार क्वेश्चन रहेंगे, चारों का 0.5 मार्क्स ही होगा उसका, तो टोटल दो मार्क्स हो गया उसका। और ट्रू फॉल्स में भी वही क्वेश्चन जो होगा चार होगा, 0.5 मार्क्स का एक होगा तो दो मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग आपको सात क्वेश्चन देंगे, उसमें हर एक का एक एक मार्क्स का ही होगा, तो दो तीन चार लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपने बताना है। डिफरेंशिएशन बिटवीन वाला भी जो होगा आपका डेढ़ मार्क्स का होगा, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन होंगे उसमें से दो को अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट आंसर टाइम भी आपका जो है दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें दो को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको छः से सात लाइन के अंदर में जस्टिफाई करना है, क्रक्स ऑफ द आंसर देना है, इधर उधर घुमा के मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप खुद भी कन्फ्यूज रहेंगे और टीचर को जो होगा उसको भी दिक्कत होगा उसको मार्क्स फेचिंग करने में। तो इस तरीके से आप इस सारे टॉपिक को जो मैंने बताया आपका सिलेबस में, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक को आपका कोर्स से ब्रेकअप दिया गया है, उसके अंदर में टॉपिक्स बड़े बारीकी से लिखा गया है, उसको एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से और उसको पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपको ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों कल जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ग्रीन पर और आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो श्रोताओं, आज हम एक और खास विषय लेकर आए हैं। हमारा विषय है वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल, सर्ववैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है।
1: धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर 76% लोग अपनी आय और कृषि से संबंधित चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि खेती किसानी हम लोग जानते हैं मौसम और जल पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो वर्तमान समय में जल प्रबंधन एक आवश्यक चीज़ हो जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 60% खेती मानसून पर ही निर्भर है, बाकी बचे 40% के लगभग वो सिंचाई योग्य भूमि पर खेती की जाती है। अगर हमको प्रबंधन और अच्छी तरीके से कर पाएँ तो औसतन हम 30-40% वाले जगहों को सिंचाई कर करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जिसमें मैं दो बातें रखना चाहूँगा, एक है बिहार के गंगा नदी के उत्तरी छोर में जो ज़िले हैं जैसे मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। वहीं बिहार के दक्षिणी भाग में जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और कैमूर, मुंगेर, बांका जिलों में जो है सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो इसलिए जल प्रबंधन एक अति आवश्यक जरूरी है हमारे यहाँ।
0: जी जी, अभी वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो सिंचाई की क्या प्रमुख चुनौतियाँ अभी देखी जा रही हैं, क्या क्या हैं?
1: जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जल की कमी से हमारे यहाँ फसलों पर काफ़ी नुकसान होता है, उसकी पैदावार, जैसे सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम बोलना चाहेंगे कि मौसम की अनियमितता एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मानसून अगर सही समय पे आए तो जल प्रबंधन को उचित ढंग से कर पाएंगे, अगर ये डिले यानी लेट हो देर हो जाती है तो फसलों को लगाने में, और इसके जब अंतिम में मानसून विड्राल यानी निकलने के समय आता है तो उस समय अगर जल प्रबंधन ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया तो कभी कभी ड्रेनेज यानी जल निकासी की भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वर्तमान समय में इन चुनौतियों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
0: अभी के समय की हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो जल प्रबंधन के प्रभावी उपाय अभी क्या क्या हैं?
1: जी जी, इसमें सबसे प्रमुख उपाय जो है आज से मैं वर्णन करना चाहूँगा। ऐसे सिंचाई की बहुत सारी प्रमुख विधियाँ हैं, लेकिन उनमें से माइक्रो इरिगेशन एक टर्म आता है, माइक्रो इरिगेशन जो है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, ये दोनों से मिलकर के बना है। अगर सिंचाई विधि से सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो इसमें खेतों में किसान अपने पानी को सीधे पहुंचाता है उस पौधे की जड़ तक, जो कि एक बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें 40-60% तक जो है जल को बचाया जा सकता है, जो कि आने वाली अगली फसल या उस फसल के 2-3 इरिगेशन या सिंचाई दे सकता है, उससे फायदा होता है। इसी के साथ मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा बात कि अगर इसमें हम बचत करते हैं तो 15-20% तक कम से कम उसकी जो लागत की कमी भी आती है। ये एक प्रमुख कारण है।
0: अभी हम माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी जी, तो जैसे माइक्रो इरिगेशन में अभी हमने बताया ड्रिप इरिगेशन, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं उसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इसका विस्तृत चर्चा है, जैसे जल की बचत, पानी सीधे अगर पौधों की जड़ तक पहुँचता है तो बीच में जो नाली से हम लोग पहले किसान पहुँचाते थे तो उसमें कुछ जो ज़मीन में सोख लेता था, कुछ ड्रेनेज होकर के बाहर चला जाता था, सीपेज होता था, उससे नुकसान होता था। इससे तो सीधे खेत में ही पहुंच जा रहा है। दूसरी चीज़,

0: अगर हम पानी को सीधे जड़ तक देंगे तो जो उर्वरक देंगे उसको चाहे तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जड़ तक तो उर्वरक पहुंचेगा ही और वहां की फसलों को लाभ होगा। और एक बात और बिंदु पे है कि उत्पादकता में वृद्धि, पौधों को नियमित और संतुलित मात्रा में उर्वरक और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व मिलने से उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी मिलती है। अगर हम उसमें ऊर्जा की बचत की बात करें तो अगर न्यूट्रिएंट और पानी को सही मात्रा में मिलेगा तो उससे जो बचत है वो पानी और आय दोनों की होगी। और तीसरा बात इसमें है कि मिट्टी की संरचना अच्छी बनी रहती है। कैसे? अगर बहाव द्वारा इरिगेशन या सिंचाई करेंगे तो इसमें मिट्टी के बहने की भी संभावना रहती है, जबकि इस तरीके से करेंगे तो केवल पौधे के ही जड़ में जाएगा। एक और जो किसान बंधु रहते हैं कि अगर ड्रिप इरिगेशन देने से क्या होता है, खरपतवार को सही ढंग से नियंत्रण भी किया जा सकता है।
1: माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के प्रमुख लाभ क्या क्या मिलेंगे किसान भाई अगर करते हैं तो?
0: जी, इसी में एक हमने आपको अभी शुरू से और बताया, तो उसमें और भी उसी पॉइंट में मैं और जोड़ना चाहूँगा। सिंचाई करने से क्या होता है कि इसमें सूखे और जलवायु परिवर्तन, आजकल एक विषय आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा समस्या है जो वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबली सबको परेशान किए हुए है। तो सभी किसान भाई चाहें तो इस जलवायु परिवर्तन को समझे। इसमें क्या होता है कि औसत जो हवा की जो तापमान है उसमें औसत मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होता है कि जल की मांग, जो पौधों की जल की मांग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें अगर पौधों, जिसे कहते हैं कि पत्तियों से पानी को इवेपोरेट करते उड़ता है, तो अगर उनकी जड़ में देंगे तो पहली बात मिट्टी से जो पानी का हानि हो रहा था वो नहीं होगा और सीधे उनके जड़ में रहेगा पानी, जिससे कि उनको पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट दोनों भी मिलेंगे। और इस जलवायु परिवर्तन से जो कि नमी की लाश हो रहा था वो बच सकता है।
1: मल्चिंग और जैविक खाद का जब प्रयोग करेंगे किसान भाई तो क्या क्या लाभ मिल सकता है उन्हें?
0: जी, इसमें मल्चिंग और जैविक ये दो बातें मैं बताना चाहूँगा। मल्चिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि मृदा के खुद उसके जो स्ट्रक्चर हैं या ऊपर के कुछ हिस्से को तोड़ करके उसको फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूव कर दे सकते हैं, या पुरानी फसल या पहली फसल के अवशेष को उसके पौधे पर या पौधे के नीचे उसके जड़ के जहाँ पर तना रहता है वहाँ पर सरफेस पर मिट्टी पर बिछाएं, जिससे कि जो तापमान से या सीधे हवा के संपर्क में मिट्टी के आ नहीं पाता, जिससे कि उसमें पोषक तत्व के साथ साथ नमी भी बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि लगभग इससे 18% जल धारण क्षमता भी बढ़ जाता है और 20-25% तक पानी की बचत भी होती है। ये है मल्चिंग का इफेक्ट। और जैविक खाद अगर मिला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैविक खाद मिलाने से जो सॉइल के टेक्सचर हैं वो आपस में जुड़ते हैं अच्छे से, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जो कि कम सिंचाई में भी फसल को किया जा सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है।
1: इसके बाद जल प्रबंधन के लिए कुछ योजनाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ सरकारी योजनाएं?
0: जी, इसमें जैसे कि जल प्रबंधन के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो भारत सरकार की भी चलती हैं और राज्य सरकार की भी चलती हैं। तो जिसमें से मैं एक कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा किसान बंधुओं, जिसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक ऐसी भारत सरकार की योजना है जो कि किसानों की सिंचाई की जो प्रणालियाँ हैं, सिस्टम हैं, उनको अनुदान में देती हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन की हम बात किए हैं अभी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो उसमें कुछ अनुदान राज्य सरकार देती है, कुछ अनुदान भारत सरकार देती है, जिससे कि किसान उसको आसानी से खरीद करके अपने खेत पर लगाएं और फसल के उत्पादन बढ़ाएं और जल की बचत करें। दूसरा है मुख्यमंत्री हरित बिहार योजना, इससे क्या होता है कि किसानों को ये भी जल प्रबंधन की एक अच्छी योजना है। इसमें इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक गांव में जल संरक्षण परियोजनाएं लागू कर की जा चुकी हैं और 3,00,000 से अधिक किसान इसमें लाभ उठा चुके हैं। तो किसान बंधुओं को मैं यही सलाह दूंगा कि

0: दो प्रमुख योजनाओं को जो मैं वर्णन किया हूँ, अगर चाहें तो वहाँ से लाभ उठा सकते हैं जल प्रबंधन के लिए।
1: जी जी, मौसम पूर्वानुमान से क्या जल प्रबंधन किया जा सकता है?
0: जी, एक बहुत बड़ा वर्तमान समय का विषय है। हमारे भारत सरकार में एक मंत्रालय है, मौसम मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसका एक विभाग है भारतीय मौसम विभाग IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि सही समय पर सही तरीके से मौसम का पूर्वानुमान करता है। इस मौसम के पूर्वानुमान में कितनी बारिश होगी, कितना तापमान रहेगा, किस स्पीड से, किस रफ्तार से हवा चलेगी और किस दिशा से चलेगी, अगर ये अनुमान इतना मिलता है तो किसान बंधु चाहें तो अपने खेत पे जल प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, इसमें हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी में एक AMFU जिसे कहते हैं एग्रोमेट फील्ड यूनिट चलता है, जिसे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी नाम से जाने लगा है। ये 5 दिनों की मौसम की पूर्वानुमान IMD से लेती है और उसको आने वाले खेती किसानी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से करें वो एक एडवाइजरी जारी करती है। इस एडवाइजरी को अगर किसान बंधु ध्यान में रखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, अगर कोई किसान सिंचाई करने जा रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसान अभी सिंचाई करने वाला है, अगर उसको पता चल जाए कि मौसम में परिवर्तन होगा अगले दिन, तो अगर वो सिंचाई को थोड़ा एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए रोक करके या उस मौसम को ध्यान में रख करके करता है, तो एक तो उसकी सिंचाई का जल बचेगा, दूसरा उसके लागत में भी कमी आ सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई अभी सिंचाई करके आ गए सुबह में और शाम को बारिश हो गई, या शाम को सिंचाई की है तो सुबह बारिश तक हो गई, तो उससे क्या फसल भी नुकसान होता है, जल भी आपका ख़त्म होता है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके जब भी किसान बंधु खेती करें, सिंचाई करने जाएं, तो उसमें सबसे बड़ी बात मेघदूत एक मोबाइल ऐप है, उसको भी चाहें तो अपने मोबाइल में रख करके उसमें मौसम का पूर्वानुमान देता है, उसको देख करके ध्यान में रख करके सिंचाई का या जल प्रबंधन करें।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय को लेकर आज हमारे साथ थे डॉक्टर चंद्रभान पटेल, और इस विषय में बहुत सारी जानकारियां आप सभी को दी गई हैं कि जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और चुनौतियां अभी के समय में सिंचाई के लिए क्या कुछ आ रही हैं। इसके अलावा मल्चिंग के बारे में आपने जाना, जैविक खाद के प्रयोग से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई हैं। आशा करते हैं आज के इस वार्ता को सुनकर आपको एक नई जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार,
7: पृष्ठ संख्या 128, अध्याय 10, मीरा के पद। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से

संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। दो, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा, इस पृष्ठ पर एक सुंदर चित्र है जिसमें मीरा एक हाथ में एक तारा और दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए पद गा रही हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, सामने एक नदी बह रही है, आकाश में बादल छाए हैं जिनसे वर्षा का जल बरस रहा है, चारों ओर हरियाली है। मीरा के ही निकट एक हिरन और नदी के उस पार एक मोर यूं लग रहे हैं जैसे वे मीरा के पद सुन रहे हों। आसपास फूल खिले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। आपने जो रचना अभी सुनी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। यहाँ मीराबाई का एक चित्र है जिसमें वे एक तारा लिए अपने पद सुना रही हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पद में मीरा किनसे विनती कर रही हैं? संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से? दो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति या ज्ञान और शिक्षा? इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें मीराबाई एक नदी के किनारे एक तारा हाथ में लिए अपने पद गा रही हैं। पृष्ठ संख्या 130, तीन, बरसे बदरिया सावन की, पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? यहाँ एक बालिका का चित्र है जो एक पेड़ से लटके झूले पर झूला झूल रही है। चार, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं या चिंतित हैं। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।
यहाँ इस पृष्ठ पर

एक तालिका दी गई है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा दूसरे स्तंभ में उन शब्दों से संबंधित अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। तालिका के पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। एक, नंदलाल। दो, वैजंती माल। तीन, सावन। चार, गिरधर। दूसरे स्तंभ में इन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ अथवा संदर्भ शीर्षक से कुछ इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं। एक, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। दो, श्रावण का महीना आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। तीन, वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। चार, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। अब आप इन शब्दों को इनके सही अर्थ अथवा संदर्भ के साथ मिलान करें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। ख, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। पृष्ठ संख्या 131। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? ख, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है? यहां इस पृष्ठ पर श्री कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वे मुरली बजा रहे हैं। कविता की रचना। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। क, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा? ख, यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे? यहां इस पृष्ठ पर एक बादल का चित्र है जिससे जल बरस रहा है। शब्दों के रूप। अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 132। क, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। इस पंक्ति में शब्द सांवरी को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है, इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। यहां ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से लिखिए। ये शब्द इस प्रकार हैं, नैनन, शोभित, भक्त वछल, बदरिया, मेरो मनवा, आवन, दिश, मेहा। इन सभी शब्दों के साथ रिक्त स्थान दिया गया है। इस प्रकार आप इन शब्दों को जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से इन रिक्त स्थानों में लिखिए। शब्द से जुड़

शब्द। यहाँ दिए गए स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ 6 रिक्त स्थान वाले कोष्ठक दिए गए हैं। एक मुख्य शब्द श्री कृष्ण पहले से दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए श्री कृष्ण से संबंधित एक शब्द मुरली पहले से अंकित है। अब आप अन्य 6 रिक्त स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। पंक्ति से पंक्ति। यहाँ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल। 2. क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। 3. मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। 4. सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। 5. उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दमके झर लावन की। स्तंभ 2। स्तंभ 2 के अनुसार जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। 1. चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग गई है। 2. होठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजयंती माला सजी हुई है। 3. सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। 4. हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। 5. कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 133। कविता का सौंदर्य। बरसे बदरिया सावन की। इस पंक्ति में बरसे बदरिया को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। रूप बदलकर। पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए, सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है आदि। मुहावरे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनों या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे, उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है, आंखों में घर करना। यहां आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आंखों का तारा। 2. आंखों पर पर्दा पड़ना। 3. आंखों के आगे अंधेरा छाना। 4. आंख दिखाना। 5. आंख का कांटा। 6. आंखें फेरना। 7. आंख भर आना। 8. आंखें चुराना। 9. आंखों से उतारना। 10. आंखों में खटकना। यहां इस पृष्ठ पर एक पत्र का चित्र है जिस पर आंखें बनी हुई हैं। पास ही एक कलम और एक दवात का चित्र है जिसके नीचे कुछ और पत्र रखे हैं। पृष्ठ संख्या 134। सबकी प्रस्तुति।
पाठ के किसी एक पद

को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, भाव नृत्य प्रस्तुति करना, कविता पाठ करना आदि। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक ढोलक बजा रहा है। पाठ से आगे आपकी बात। क, बरसे बदरिया सावन की। एक, इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आते हैं, वर्णन कीजिए। दो, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनियां। तीन, वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में आनंद आता है। चार, सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, आपके घर परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किसी एक के विषय में अपने अनुभव बताइए। ख, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती हैं। एक, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है, विस्तार से बताइए। दो, कवयित्री ने पाठ में नूपुर और क्षुद्र घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। पृष्ठ संख्या 135। विशेषताएं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। क, इस पंक्ति में कवयित्री ने श्री कृष्ण की मोहनी मूरत सांवरी सूरत और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया। ख, किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, क्यों, अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण से बताइए। ग, हम सबकी कुछ विशेषताएं बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन आंतरिक विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक महिला को फूलों का गुलदस्ता दे रही है। मधुर ध्वनियां। अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में तीन ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनसे मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। आगे मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के विषय में पहेलियां दी गई हैं। इन्हें पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींच कर मिलाइए। यहाँ एक नदी का चित्र है जिसके आसपास चट्टाने हैं और हरियाली है। पृष्ठ संख्या 136। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पहेलियां लिखी हैं और दूसरे स्तंभ में उन पहेलियों के उत्तर के रूप में कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं। पहले स्तंभ में जो पहेलियां हैं वे इस प्रकार हैं। एक, हवा से बोलती है सुरमे गीत सुनाती है, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती है। दो, दो साथियों का जोड़ा हाथों से है बजता, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता। तीन, शाहों में शामिल होती
फूंक

पलकों से संगीत सुनाती, सुख के सारे काम सजाती, दुख में भी ये साथ निभाती। चार, तारों में छिपा संगीत, माँ सरस्वती का गहना, छेड़े जब अंगुलियां, बहे रागों का झरना। पांच, दो हाथों से बजती है ये, ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की है ये साथी, लटक गले ये करती सैर। छह, नागिन सी लहराती है जो, बड़ी खास आवाज है जिसकी, तीन चीन रंगीन हीन से मिली जुली पहचान है इसकी। सात, सौ तारों का जादू, डंडियों से जो गाए, कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत लाए। आठ, छोटा सा यंत्र है, हाथों से बजता जाए, घर मंदिर का साथी, झनकार से मन बहलाए। इस तालिका के दूसरे स्तंभ में इन पहेलियों का उत्तर चित्रों के रूप में दिया गया है। ये चित्र इस प्रकार हैं: एक, ढोलक; दो, बांसुरी; तीन, संतूर; चार, तबला; पांच, वीणा; छह, शहनाई; सात, मंजीरा; आठ, बीन। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर मीरा का पद गाते हुए एक चित्र है। उनके केश खुले हुए हैं, उनके कानों में झुमके हैं, माथे पर टीका है और हाथों में एक तारा है। वे श्री कृष्ण के पद गाते हुए उनकी भक्ति में लीन हैं। यह मीरा का कांगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। सावन से जुड़े गीत अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से सावन में गाए जाने वाले गीतों को ढूंढिए और किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप सावन से जुड़ा कोई भी लोकगीत, खेल गीत, कविता आदि लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। खोजबीन। आपने पढ़ा कि मीरा श्री कृष्ण की आराधना करती थी। आपने कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार में पढ़ा था कि सूरदास भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अपने समूह के साथ मिलकर सूरदास की कुछ रचनाएं ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। इसके लिए आप पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 138। आज की पहेली। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहां दिए गए हैं। इनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से खोजिए और लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द तथा दूसरे स्तंभ का शीर्षक है समान ध्वनि वाले शब्द। आपकी सुविधा के लिए शब्द मूर्ति के लिए समान ध्वनि वाला शब्द सूरति दिया गया है। अब आप दिए गए शब्दों के अनुसार समान ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से चुनकर लिखिए। तालिका के पहले स्तंभ जिसका शीर्षक शब्द है, उसके शब्द इस प्रकार हैं: सावन, उमड़, नागर, नंदलाल। इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको इन शब्दों से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आपके संकेत के लिए साथ ही एक वर्ग दिया गया है जिसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं। ये अक्षर बाएं से दाएं ओर इस प्रकार हैं: पहली पंक्ति आ, घू, म, ड, दूसरी पंक्ति व, अ, सु, गो, तीसरी पंक्ति न, ग, र, पा, चौथी पंक्ति सो, भी, ती, ल। खोजबीन के लिए यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके
आप कवियत्री मीरा

के बारे में और जान समझ सकते हैं। मीरा, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS://www.yout.co/wequal to capital K capital W capital K T capital P capital M at C - capital P capital A and A B underscore CHANNEL equal to capital N capital C capital E capital R capital T capital O capital F capital F capital I capital C capital I capital A capital L। मीरा के भजन, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS://www.yout.co/wequal to capital K capital A capital A dot V capital B capital Q capital M and A B underscore CHANNEL equal to capital N capital C capital E capital R capital T capital O capital F capital F capital I capital C capital I capital A capital L। मीरा बाई, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS://www.yout.co/wequal to capital K capital A capital A capital A capital L। मीरा के भजन MS सुब्बुलक्ष्मी, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS://www.yout.co/wequal to capital K capital W capital K T capital P capital M at C - capital P capital A and A B underscore CHANNEL equal to capital N capital C capital E capital R capital T capital O capital F capital F capital I capital C capital A capital L। मीरा फिल्म 1945 भाग एक, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.yout.tube.com/watch V equal to capital O 0 5 capital Q

UWW2U7Q&AB_CHANNEL=PRASAR B HARATI RCHIVES। मेरे तो गिरधर गोपाल इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS:// www.YOUTUBE.COM/WATCH:VEE=CAPITAL P R A S A R B H A R A T I capital A R C H I V E S। पृष्ठ संख्या 139। पढ़ने के लिए। स्वामी भक्त सुमुख। पुराने समय में महिंसक राज्य में जब सकुल नामक राजा का शासन था, चित्रकूट पर्वत पर एक गुफा में हंसों का बहुत बड़ा झुंड निवास करता था। एक दिन कुछ हंस आहार की तलाश में निकल पड़े। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस आकाश में उड़ रहे हैं। एक हंस ने यह बात कही। दूसरे हंस ने कहा, वह मानुषीय कहलाता है। तो एक और हंस ने कहा, वह बहुत सुंदर है, उसमें 5 प्रकार के कमल उगते हैं। तभी तीसरे हंस ने कहा, हमारे चुगने के लिए वह आदर्श जगह रहेगी। यहाँ एक चित्र है जिसमें तीनों हंस आपस में बातें कर रहे हैं। हंसों के राजा मराल देव को तनिक संदेह था। नहीं, हमें चित्रकूट का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा मराल देव अपने साथी हंसों से कुछ कह रहा है। उसका मंत्री सुमुख उनसे सहमत था। हाँ महाराज, ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी जिस जगह का उपयोग मनुष्य करते हों वहां पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तभी दूसरे हंस ने कहा, पर एक बार जगह तो देखें। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस उड़ रहे हैं और मंत्री सुमुख कुछ कह रहे हैं तथा उसका उत्तर एक अन्य हंस दे रहा है। जब हंसों की टोली ने जोर डाला, ठीक है, अगर इसी में तुम सबकी खुशी है तो हम तुरंत वहां जाएंगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा बाकी हंसों से कुछ कह रहा है। हंस टोली मानुषीय सरोवर की ओर उड़ चली। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ रहे हैं और एक हंस ने इस प्रकार कहा। पृष्ठ संख्या 140। चूंकि अनेक पक्षी उस सरोवर पर आते जाते थे, इसलिए शिकारियों का वह मन पसंद स्थान बन गया था। जब हंस टोली सरोवर पर उतरी तो हंसों के राजा के पांव आखेटक के जाल में फंस गए। यहाँ बाईं ओर एक चित्र है जिसमें उड़ते हुए हंस धरती पर उतर आए हैं। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा का पैर शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह, मैं तो फंस गया, हंसों के राजा ने कहा। अगर मैं अभी ही चिल्ला पड़ा तो मेरे साथी बिना कुछ चुगे ही उड़ जाएंगे। बेचारे, यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी लंबी उड़ान भरी है। जाल में फंसे हुए राजा हंस ने यह बात सोची। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस एक जाल में फंसा हुआ है और वह सोच रहा है और चुपचाप ही अपने पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मैं जितना खींचता हूँ जाल की रस्सी मेरे शरीर में उतनी ही अधिक फंसती चली जाती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस जाल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने शांति से

इंतजार किया। आह, अब वे पानी में क्रीड़ा और उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने पेट भर चुग लिया होगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस कुछ सोच रहा है और पास ही कुछ हंस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तब हंसों को संकट का संकेत सुनाई दिया। आह, खतरे का संकेत, चलो जल्दी वापस चित्रकूट चलते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों ने संकट का संकेत सुना और कहा, लेकिन पुकारा किसने था? यह पता लगाने का समय नहीं है। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहां से उड़ जाना चाहिए। यहां एक चित्र है जिसमें हंस उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टोली में केवल एक हंस ऐसा था जो उड़ जाने को तैयार न था, और वह था मंत्री सुमुख। मुझे महाराज मरालदेव दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वही तो घायल नहीं हो गए? यहां एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख कुछ सोच रहा है। चिंताग्रस्त सुमुख सरोवर पर लौट कर गया और उसने राजा को घायल और लहू लुहान अवस्था में पाया। पृष्ठ संख्या 141। चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपको बंधन से छुड़ाऊंगा। यहां एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख राजा हंस से कुछ कह रहे हैं। लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? देखो, शेष सब के सब उड़ गए हैं। मेरे जैसे फंसे हुए पक्षी के लिए आशा ही क्या बचती है भला? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस अपने मंत्री से कुछ कह रहे हैं। मैं आपको इस स्थिति में छोड़ने की अपेक्षा आपके साथ मर जाना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे इस बलिदान से हमारा या किसी और का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? हे पक्षियों में श्रेष्ठ, संकट की इस घड़ी में आपके साथ रहना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं। सचमुच ऐसा करना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तभी देखो, आखेटक इसी ओर आ रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर से आखेटक आ रहा है और दूसरी ओर हंस राजा और मंत्री उसे देख रहे हैं। वाह, क्या सौभाग्य है, आज मेरे जाल में एक साथ दो हंस फंसे हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर आखेटक है और दूसरी ओर दोनों हंस हैं। आसपास कुछ हरियाली है, लेकिन जब वह निकट गया, अरे तुम तो मुक्त हो, फिर दूसरे हंस की भांति उड़ क्यों नहीं जाते? यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक मंत्री हंस से कुछ कह रहा है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरे राजा होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी हैं। इन्हें मुक्त कर दो और हमें जाने दो। यहाँ मंत्री हंस का चित्र है। लेकिन तुम तो जब चाहो जा सकते हो। नहीं, मैं अकेले अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता। सचमुच मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक के हाथ में एक पिंजरा है और दूसरी ओर जाल में फंसे हुए राजा हंस और साथ में मंत्री हंस का चित्र है। मैं इनके समान ही आकार में बड़ा और मोटा ताजा हूँ। इनके स्थान पर अगर तुम मुझे पकड़ लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सौम्यता से किंतु दृढ़तापूर्वक बातचीत करके सुमुख आखेटक का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो गया। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस कुछ कह रहा है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद, तुम भी सदा सुखी रहो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हाथ में पिंजरा लिए खड़ा है और वह मंत्री हंस से कुछ कह रहा है। बड़ी कोमलता से आखेटक ने हंस के फंसे हुए पांव को छुड़ाया और उसके जख्मों को धोकर साफ किया। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक राजा हंस को जाल से छुड़ा रहा है और उसके जख्मों को धो रहा है। पास ही उसका मंत्री हंस है और कुछ दूर एक

गिरा रखा है। पृष्ठ संख्या 142। हे महाराज, इस आखेटक ने हमें छोड़कर हम पर बहुत उपकार किया है। यह चाहता तो हमें क्रीड़ा हंस बनाकर यहाँ के राजा को भेंट करके पुरस्कार पा सकता था, या हमें मारकर हमारा मांस बेच सकता था। आप इस आखेटक की ओर से यहाँ के राजा से बात क्यों नहीं करते? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस राजा हंस से कुछ कह रहा है, हमें अपने राजा के पास ले चलो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक अपना जाल समेट रहा है और पास ही राजा हंस और मंत्री हंस खड़े हैं। लेकिन ऐसा करना संकट से खाली नहीं है। राजा तुम्हें पालतू बनाकर बंधन में रख सकते हैं या मरवा भी सकते हैं। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, हो सकता है कि तुम्हारे राजा भी कठोर हृदय वाले ना हों। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हंसों से कुछ कह रहा है और दोनों हंस भी कुछ बात कह रहे हैं। आखेटक दोनों हंसों को राजा सकुल के पास ले गया। ये दोनों उत्तम हंस हैं महाराज, ये हंसों के राजा और उनके सेनापति हैं। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगे? यहाँ एक दरबार का चित्र है जिसमें आखेटक हाथ जोड़े राजा से कुछ कह रहे हैं, पास ही कुछ दरबारी हैं और राजा के समक्ष दोनों हंस खड़े हैं। तब आखेटक ने सारा किस्सा सुनाया। इन्हें सोने के आसन पर बैठाया जाए, इनके लिए शहद और मिश्री का प्रबंध किया जाए। यहाँ राजा का चित्र है जो कुछ कह रहे हैं। जब हंसों का खाना हो गया, हंसों मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंसों से कुछ कह रहे हैं और पीछे की ओर आखेटक खड़ा है। हे राजा, इस आखेटक ने कृपा पूर्वक हमें मुक्त किया, हम आपके पास इसे पुरस्कार दिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा मरालदेव आखेटक के राजा सकुल से कुछ कह रहे हैं। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें एक घर, रथ, भरपूर सोना दे रहा हूं और तुम्हारे लिए 100,000 की आय की व्यवस्था करता हूं। यहां राजा का कुछ कहते हुए चित्र है। राजा सकुल की अनुमति लेकर हंसों का राजा मरालदेव और सुमुख अपने झुंड में वापस आ गए। आप कैसे मुक्त हुए? यह सब मेरे सेनापति सुमुख की समझदारी और निष्ठा के कारण संभव हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा और सेनापति एक ओर हैं, दूसरी ओर अन्य हंस हैं। पृष्ठ संख्या 143। पढ़ने के लिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिटे जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहाँ इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर और दाईं ओर चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर एक लड़का तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है और दाईं ओर एक लड़की तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है।

पृष्ठ संख्या 144 शब्दकोश। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं। किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर आप यह अनुमान स्वयं लगाएं कि कौन सा अर्थ

देखेंगे। यह शब्दकोश आपको शब्दों के न केवल सही अर्थ जानने में सहायता करेगा, अपितु शब्दों की सही वर्तनी भी सिखाएगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका प्रसन्न मुद्रा में हैं और आसपास उनके अलग अलग अक्षर लिखे हैं। शब्द का अर्थ देने से पहले मूल शब्द के बाद कोष्ठक में एक संकेताक्षर दिया गया है। इन संकेतों से हमें शब्दों की भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं: अंग अंग्रेजी, अ अव्यय, अ अरबी, अ क्री अकर्मक क्रिया, पू पुलिंग, फा फारसी, वी विशेषण, संग संस्कृत, स क्री सकर्मक क्रिया, सर्व सर्वनाम, स्त्री स्त्रीलिंग। अब आपको शब्दकोश इस प्रकार दिया गया है जिसमें वर्णों के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समक्ष कुछ अर्थ लिखे गए हैं। अक्षर अ शब्द है अकाल, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सूखा अयोग्य या अनियत काल कुसमय अनवसर परमात्मा। शब्द है अदृश्य, विशेषण संस्कृत, अर्थ है जो दिखाई न दे जो देखा ना जा सके अगोचर लुप्त गायब। शब्द है अधर, विशेषण संस्कृत, अर्थ है होंठ नीचे का ओठ अंतरिक्ष पाताल दक्षिण दिशा। शब्द है अनोखी, विशेषण अर्थ है अनूठा अद्भुत अपूर्व नया सुंदर। शब्द है अनौपचारिक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है नियम आदि का पालन ना किया गया हो। शब्द है अभिवादन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रणाम करना छोटे की ओर से बड़े को नमस्कार स्तुति। शब्द है असफल, विशेषण संस्कृत, अर्थ है विफल नाकामयाब। शब्दकोश में अगला वर्ण है आ। आ से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं। शब्द है आखेटक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है शिकारी शिकार। शब्द है आग्रही, विशेषण संस्कृत, अर्थ है आग्रह करने वाला। शब्द है आजीविका, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है रोजगार रोजी धंधा। शब्द है आमोद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है हर्ष प्रसन्नता खुशी बिखेरने और फैलने वाली सुगंध सुरभि। शब्द है आवन, पुल्लिंग, अर्थ है आगमन। पृष्ठ संख्या 145। शब्द है आवरण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है ढकना छिपाना घेरना ढक्कन पर्दा बचाव ढाल चाहर दीवारी। शब्द है आवेश, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रवेश दबा लेना हावी हो जाना गुस्सा जोश घमंड लगन। शब्द है आश्चर्य, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अचरज अचंभा विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव। शब्द है आश्रय, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है आधार विषय शरण ठिकाना घर सहायता। शब्द है आहत, विशेषण संस्कृत, अर्थ है
घायल

आघात किया गया हो, जिस पर प्रहार, मारा हुआ, हटाया। शब्दकोश का अगला वर्ण है उ। शब्द है उपवन। शब्द है उपवन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है उद्यान, बगीचा। शब्द है उभय, विशेषण संस्कृत। अर्थ है दोनों, दोनों में से प्रत्येक। शब्द है उमग्यो, स्त्रीलिंग। अर्थ है उमंग, उल्लास, मौज, जोश, उभार, उमड़ा, आकांक्षा। शब्द है उमड़, स्त्रीलिंग। अर्थ है बाढ़, धावा, घिराव। शब्द है उर, विशेषण संस्कृत। अर्थ है हृदय, मन। शब्दकोश का अगला वर्ण है ओ। शब्द है औपचारिक, विशेषण संस्कृत। अर्थ है गौण, उपचार संबंधी, दिखाऊ। शब्दकोश का अगला वर्ण है क। शब्द है कटितट, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कमर। शब्द है कतार, स्त्रीलिंग अरबी। अर्थ है पंक्ति, पांत, क्रम, सिलसिला, समूह। शब्द है कपोत, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कबूतर, पंडुक, चिड़िया। शब्द है कसर, स्त्रीलिंग अरबी। अर्थ है कमी, न्यूनता, घाटा, वैर, विकार। शब्द है काक, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कौवा, एक द्वीप, एक माप, कान। शब्द है कुंज, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान। हाथी का दांत, नीचे का जबड़ा, गुफा। शब्द है कुढ़न, स्त्रीलिंग। अर्थ है खीज, कुढ़ने का भाव, जलन, विवशता आदि की अनुभूति से होने वाला मनस्ताप। शब्द है कुल, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है वंश, घराना, गोत्र, समुदाय, श्रेणी, घर, आवास, जनपद, सब, सारा। शब्द है कोकिल, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कोयल, अंगारा, एक तरह का सांप। शब्दकोश का अगला अक्षर है क्ष। शब्द है क्षुद्र, विशेषण संस्कृत। अर्थ है नन्हा, छोटा, तुच्छ, खोटा, ओछा। शब्दकोश का अगला अक्षर है ख। शब्द है खंजन, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो मैदानी प्रदेशों में केवल जाड़े में दिखाई देती है, लंगड़ाते हुए चलना। शब्द है खग, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है पक्षी, सूर्य, ग्रह, वायु, बादल, चंद्रमा, बाण, देवता। शब्द है थता, पुल्लिंग। अर्थ है क्षत, घाव। शब्दकोश का अगला अक्षर है ग। शब्द है गावन, स्त्रीलिंग। अर्थ है गाने का ढंग। पृष्ठ संख्या 146। शब्द है गुजारा, पुल्लिंग फारसी। अर्थ है निर्वाह, रास्ता, घाट, पुल या नाव से नदी पार करना। शब्दकोश का अगला अक्षर है घ। शब्द है घंटिका, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है छोटी घंटी, घुंघरू। शब्द है घनघोर, विशेषण संस्कृत।

है बहुत घना, जबरदस्त, गहरा, भयंकर। शब्द है घसियारा, पुल्लिंग। अर्थ है घास खोदने वाला, घास काटने वाला, घास बेचने वाला। शब्द है घुमड़, अकर्मक क्रिया। अर्थ है बादलों का इधर उधर से आकर जमा होना। शब्दकोश का अगला अक्षर है च। शब्द है चकित, विशेषण संस्कृत। अर्थ है विस्मित, हैरान, शंकित, घबराया हुआ, भीत। शब्द है चहूं, विशेषण। अर्थ है चारों ओर, चार। शब्द है चातक, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है पपीहा, सारंग। कवि संप्रदाय के अनुसार यह पक्षी केवल वर्षा बल्कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, फलतः सदैव बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। शब्द है चापलूस, विशेषण फारसी। अर्थ है चाटुकार, खुशामदी। शब्द है चित्त, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है अंतःकरण, मन, अंतरिंद्रिय। शब्द है चेटी, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है दासी, सेविका, सेवा टहल करने वाली स्त्री। शब्दकोश का अगला अक्षर है छ। शब्द है छटा, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है शोभा, छवि, झलक, दीप्ति, परंपरा, बिजली। शब्द है छुटपन, पुल्लिंग अरबी। अर्थ है छोटापन, बचपन। शब्दकोश का अगला अक्षर है ज। शब्द है जलाशय, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है झील, तालाब, जलाधार, समुद्र। शब्द है जीय, पुल्लिंग। अर्थ है जी, मन, जान, चित्त, जीव। पृष्ठ संख्या 147। शब्दकोश का अगला अक्षर है झ। शब्द है झर, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है झरना, सोता, जल प्रवाह की ध्वनि, ज्वाला, आंच, झुंड। शब्द है झलमल, पुल्लिंग विशेषण। अर्थ है झलमलाने का भाव, अस्थिर झलमलाता हुआ प्रकाश। देख लो क्या लिखा है, झिलमिलाते होना चाहिए ना। शब्द है झुंझलाना, अकर्मक क्रिया। अर्थ है खींचना, चिढ़ना, बिगड़ना। शब्दकोश का अगला अक्षर है ट। शब्द है ट्रैफिक, अंग्रेजी। अर्थ है यातायात। शब्दकोश का अगला अक्षर है ठ। शब्द है ठाठ, पुल्लिंग। अर्थ है शान, सजधज, सितार का तार। शब्दकोश का अगला अक्षर है ढ। शब्द है ढाल, स्त्रीलिंग संस्कृत। अर्थ है तलवार, भाले आदि के आघात को रोकने का लोहे या गैंडे के चमड़े का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। आगे की ओर क्रमशः नीची होती गई जमीन। उतार, ढंग, प्रकार। शब्दकोश का अगला अक्षर है त। शब्द है तात, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है पिता, आदरणीय व्यक्ति। शब्द है ताप, पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है गर्मी, ज्वर, दुख, मानसिक व्यथा, आधी, उष्णता। गर्माहट के लिहाज से किसी वस्तु की दशा, वह दशा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है।

है तालीम, स्त्रीलिंग अरबी, अर्थ है शिक्षा। शब्द है ताही, सर्वनाम, अर्थ है उसे, उसको। शब्दकोश का अगला अक्षर है द। शब्द है दम, पुल्लिंग फारसी, अर्थ है सांस, श्वास, पल, लहजा, क्षण, ताकत, जिंदगी, जोर। शब्द है दामिन, स्त्रीलिंग, अर्थ है दामिनी, बिजली। शब्द है दुर्जन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है दुष्ट मनुष्य, खल। शब्द है द्रोह, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है दूसरे का अनिष्ट चाहना, हिंसा, अपराध, वैर, विद्रोह। शब्दकोश का अगला अक्षर है न। शब्द है नभ, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है आकाश, आसमान, मेघ, जल, पृथ्वी आदि पांच तत्वों में से एक। शब्द है निर्भय, विशेषण संस्कृत, अर्थ है निडर, निरापद, जो किसी से भय ना खाए। पृष्ठ संख्या 148। शब्द है नूपुर, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है घुंघरू, पैर का एक गहना। शब्द है नैना, पुल्लिंग, अर्थ है नेत्र, आंख। शब्दकोश का अगला अक्षर है प। शब्द है पनघट, पुल्लिंग, अर्थ है पानी भरने का घाट। शब्द है प्रतीति, अर्थ है प्रतीति, ज्ञान, बोध, हर्ष, विश्वास। शब्द है पवन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है हवा, छलनी, पानी। शब्द है पैनी, विशेषण स्त्रीलिंग, अर्थ है जो भीतर की वस्तु को देख सके, जिसकी धार बहुत तेज हो। शब्द है प्रशिक्षण, पुल्लिंग, अर्थ है किसी व्यवसाय, कला, दौड़ आदि की व्यवहारिक रूप में लगातार कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा, ट्रेनिंग। शब्द है फरमाइश, स्त्रीलिंग फारसी, अर्थ है आज्ञा रूप में कुछ मांगना, आज्ञा, कोई चीज भेजने की आज्ञा, ऑर्डर। शब्द है फौरन, अव्यय अरबी, अर्थ है तुरंत, अभी, झटपट। शब्दकोश का अगला अक्षर है ब। शब्द है बघारना, सकर्मक क्रिया, अर्थ है छोंकना, तड़का देना, हींग, जीरा, प्याज आदि घी में कड़कड़ाकर दाल, तरकारी आदि में डालना। शब्द है बसन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है वस्त्र, आवरण, ढकने की वस्तु, निवास। शब्द है बानी, स्त्रीलिंग, अर्थ है वाणी, सरस्वती, सार्थक शब्द, वचन, जीभ, स्वर, प्रशंसा। शब्द है बिद्ध, विशेषण, अर्थ है बिंधा हुआ, छेदा हुआ। शब्द है बिसारी, सकर्मक क्रिया, अर्थ है बिसराना, भुला देना। शब्द है बेड़ी, स्त्रीलिंग, बंधन, कैदियों, हाथी, घोड़ों आदि के पावों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। शब्द है बेध, पुल्लिंग, अर्थ है छेद, मूंगे आदि में किया हुआ छेद, मोती। शब्द है बेवक्त, पुल्लिंग अरबी, अर्थ है कुसमय, किसी समय, हमेशा। शब्दकोश का अगला अक्षर है भ। शब्द है

भक्त वचल विशेषण अर्थ है भक्त को प्यार करने वाला, भक्त के प्रति स्नेह युक्त। शब्द है भक्षक। विशेषण संस्कृत अर्थ है खाने वाला, भक्षण करने वाला। शब्द है भनक स्त्रीलिंग अर्थ है धीमी अस्पष्ट ध्वनि, उड़ती हुई खबर। शब्द है भावन पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है निमित्त कारण, उत्पादन रुचिवर्धन चिंतन कल्पना स्मरण। शब्द है भाव भंगिमा स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है मन के विकार को व्यक्त करने वाला अंग संचालन या क्रिया। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है भौंर पुल्लिंग अर्थ है भ्रमर भौंरा मधुप जलावर्त। शब्द है भ्रमण पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है घूमना फिरना यात्रा अस्थिरता चक्कर। शब्दकोश का अगला अक्षर है म। शब्द है मंत्र पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है सलाह राय गुप्त वार्ता कान में कही जाने वाली बात कार्य सिद्धि का गुर स्त्रीलिंग समक्ष बुद्धि। शब्द है मनहर विशेषण संस्कृत अर्थ है मन को हरने चुराने वाला सुंदर। शब्द है मानधन पुल्लिंग संस्कृत विशेषण अर्थ है मान का धनी प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। शब्द है मुक्ति स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है आजादी छुटकारा मोक्ष। शब्द है मूर्ति स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है मूर्ति शरीर स्वरूप या शक्ल प्रतिमा। शब्द है मेह पुल्लिंग अर्थ है वर्षा बरसात झड़ी पड़ना बरसना। शब्दकोश का अगला अक्षर है र। शब्द है रस पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है स्वाद आनंद प्रेम द्रव जल मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव जो काव्य पाठ अभिनय दर्शन आदि से होता है। शब्द है रसाल विशेषण संस्कृत अर्थ है रसीला मीठा मधुर सुंदर शुद्ध। शब्द है राजती अकर्मक क्रिया अर्थ है राजना रहना शोभित होना विराजना। शब्द है रीसेस अंग्रेजी अर्थ है अल्पावकाश मध्यावकाश। शब्द है रीति स्त्रीलिंग संस्कृत अर्थ है नियम झरना टपकना ढंग प्रकार तरीका चलन। शब्द है रेवड़ पुल्लिंग अर्थ है भेड़ों का समूह पशुओं का झुंड गल्ला। शब्दकोश का अगला अक्षर है ल। शब्द है लहरा पुल्लिंग अर्थ है लहर मजा आनंद बाजों की संगत जिसमें ताल स्वरों की केवल लय होती है बादलों का कुछ देर जोर से बरसना एक घास। शब्द है लावन स्त्रीलिंग अर्थ है लावनी लावण्य सुंदरता। शब्दकोश का अगला अक्षर है व। शब्द है वर्ण पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है रंग भेद अक्षर शब्द स्वर। शब्द है वादक पुल्लिंग संस्कृत अर्थ है बजाने वाला बोलने वाला शास्त्रार्थ करने वाला। शब्द है विकार पुल्लिंग

संस्कृत, अर्थ है परिवर्तन, भावना, वासना, क्षोभ, रूप, धर्म आदि स्वाभाविक अवस्था का परिवर्तित होना। शब्द है विचरण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है घूमना फिरना, चलना, भ्रमण करना। शब्द है व्यापक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सर्वत्र फैला हुआ, दूर तक, जो किसी चीज के सारे विस्तार में हो। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है शाखा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है पेड़ की डाल, दरवाजे की चौखट, बाहु संप्रदाय। शब्द है शुक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सुग्गा, तोता, वस्त्र, पोशाक। शब्द है शैली, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है रीति, किसी काम के करने का ढंग, तरीका, पद्धति। शब्द है श्याम, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सांवला, काला, कृष्ण। शब्दकोश का अगला अक्षर है स। शब्द है सदय, विशेषण संस्कृत, अर्थ है दयालु, रहमदिल। शब्द है समुझी, स्त्रीलिंग, अर्थ है समझ, बुद्धि, प्रज्ञा, विचार। शब्द है साजिंदे, पुल्लिंग फारसी, अर्थ है साज बजाने वाला, सारंगिया, तबलची। शब्द है सिद्धि, स्त्रीलिंग संस्कृत विशेषण, अर्थ है सफलता, अभ्युदय, अनुमान, दक्षता, निपुणता, मोक्ष, लाभ। शब्द है सुखदाई, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सुख देने वाला। शब्द है सुधा, स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है अमृत, रक्त, रस, दूध, जल, शहद, गंगा, बिजली, पृथ्वी। शब्द है सुधी, स्त्रीलिंग, अर्थ है याद, होश, चेत, खबर। शब्द है सुर, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है स्वर, आवाज, देवता, सूर्य। शब्द है सुरभि, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सुगंधित, खुशबूदार, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विद्वान। शब्द है सूरति, स्त्रीलिंग, अर्थ है शक्ल, रूप, याद, स्मरण। शब्द है सोहता, विशेषण, अर्थ है मोहक, सुंदर। शब्द है सोहावन, अकर्मक क्रिया, अर्थ है अच्छा लगना, भला मालूम, सुंदर, शोभित होना। शब्द है स्वच्छंद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अपनी इच्छा, पसंद। शब्दकोश का अगला अक्षर है ह। शब्द है हसिया, पुल्लिंग, अर्थ है लोहे का धनुषाकार औजार, जिससे फसल, तरकारी आदि काटते हैं। शब्द है हठी, विशेषण संस्कृत, अर्थ है हट करने वाला, जिद्दी। पृष्ठ संख्या 151। ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें हिंदी वर्ण व गिनती को ब्रेल रूप में अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 152। पहेलियों के उत्तर। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें पाठ में आए हुए पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ एक, मां कह एक कहानी। प्रश्न, आज की पहेली। इन पहेलियों के उत्तर इस